0: ABC Radio, your music companion.
1: अच्छा, don't mind, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता? गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनो.
1: सुना.
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए, कोई दुआ ना लगे. दवा भी काम ना आए, कोई दुआ ना लगे. मेरे खुदा, किसी को प्यार की हवा ना लगे. आदाब.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: तो प्यार जवां होता है, दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: You're listening RM Free Radio.

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर

मुझको न जानने वाले बुद्धिहीन इंसान समझते हैं कि मैंने ये रूप और व्यक्तित्व धारण किया है। अपने अल्पज्ञान के कारण वो मेरे परम उत्तम अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। मुझे हर जन्म में मां की जरूरत पड़ती है और तुम उसी मां से मेरे जाति के सूत्र जोड़ने लगते हो, विवादों में पड़कर परिभाषाएं रचने लगते हो कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख, ईसाई, बौद्ध अथवा जैनी हूं। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मानव हूं। मानवता मेरा धर्म है, तुम्हारा कल्याण मेरा कर्म है। मैं गीता का ज्ञान हूं, कुरान की तालीम हूं, बाइबल की शिक्षा, गुरु ग्रंथ साहब का आदर्श हूं। जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही प्राप्त हो जाता हूं, क्योंकि मैं संपूर्ण जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं इस संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं, और तुम्हारे लिए मैं एक फकीर साई बाबा हूं। मैं तो तब भी था जब तुम नहीं थे, तब भी हूं जब तुम हो, और तब भी रहूंगा जब तुम नहीं रहोगे। एक बार जो भी जबान से मुझे नाम लेकर पुकारता है, मैं माया मोह, पाप दोष, कष्ट, लोभ, अहंकार से उसकी रक्षा करने के लिए सक्रिय हो जाता हूं, क्योंकि मैं साईं हूं, साईं बाबा, अल्लाह हमारा।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। सावन प्रभात की इस पुण्य वेला में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के और तत्वावधान में प्रस्तुत इस कार्यक्रम में हम भगवान शिव और इस श्रावण मास के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। भगवान सदाशिव जिनके विषय में कहा गया है कि ध्यान

अल्पोज्वलांगं परशु मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समं तास्तुतममरगणेर् व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। जो चांदी के पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रमा को और आभूषण रूप से धारण करते हैं, रत्नमय अलंकारों से जिनका शरीर उज्ज्वल है, जिनके हाथों में परशु तथा मृग वर और अभय मुद्राएं हैं, जो प्रसन्न हैं, पद्म के आसन पर विराजमान हैं, देवता गण जिनके चारों ओर खड़े होकर के स्तुति करते हैं, जो बाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भयों को हरने वाले, जिनके पांच मुख और तीन नेत्र हैं, उन महेश्वर भगवान का हम प्रतिदिन ध्यान करते हैं। मुक्ता पीत पयोधि मौक्तिक गजा वर्णे मुखे पंचभिः त्यक्षेरांचितमीशमिन्दुमुकुटं पूर्णेन्दुकोटिप्रभम् शूलं टंक कृपाण वज्रदानान नागेन्द्र घंटांकुशान पाशं भीतिहरं दधान मतिला कल्पोज्वलं चिंतयेत। जिन भगवान शंकर के पांच मुखों में क्रमशः जो ऊर्ध्वमुख गजमुक्ता के समान और हल्के लाल रंग का, और जो पूर्व का मुख है वो पीत वर्ण का, दक्षिण का मुख सजल मेघ के समान नील वर्ण का, और पश्चिम मुख मुक्ता के समान कुछ भूरे रंग का, और उत्तर मुख

0: जवा पुष्प के समान प्रगाढ़ रक्त वर्ण का है, जिनकी तीन आँखें और सभी मुख मंडलों में नील वर्ण मुकुट के साथ चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं, जिनके मुखमंडल की आभा करोड़ों अपूर्ण चंद्रमा तुल्य आलादित करने वाले हैं, जो अपने हाथ में क्रमशः त्रिशूल टंक तलवार आदि धारण कर रहे हैं, जो अत्यंत कल्प वृक्ष समान कल्याणकारी है, उन भगवान शंकर का हम निरंतर वंदन कर रहे हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। धर्मार्थ काम मोक्षस्याम पुरुषार्थ चतुर्विर्ध्वा सिंधयन्ति नात्रं संदेहो रसराज प्रसादत। अर्थात इस जीवन के धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष चतुर्विध्यर्थ पुरुषार्थ ही परम लक्ष्य है। जो भगवान परदेश्वर की पूजा अर्चना से स्वयं सिद्ध हो जाता है, साथ ही कोटि कोटि पुण्य की भी प्राप्ति होती है। पारद शिवलिंग पर कई ग्रंथ रचे गए हैं। वेद पुराणों में पारदेश्वर प्रधान सिद्धिदायक मानी गई है, परंतु हजारों लाखों शिव मंदिर में एक दो शिवलिंग ही पारे से बने हुए मिलेंगे। मंदिर में स्थापित करके उसकी पूजा अर्चना करने वाले पारद निर्मित शिवलिंग का भार कम से कम 100 या 1000 ग्राम होना चाहिए, जिसका मूल्य लगभग 10 लाख रुपए होता है। इस प्रकार से पारद लिंग है। मॉरिशस में भी पारद लिंग है। हिंदू महासभा के मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है उसका नाम ही है पारद लिंग। और पारद लिंग में पूजा करने से 1000 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से कहा गया है कि बाजार में पारद शिवलिंग के नाम पर बहुत से गलत गलत शिवलिंग प्राप्त होता है, लेकिन पारद लिंग बहुत महंगा होता है क्योंकि वो पारा से बना हुआ होता है। तर्क वितर्क कई बार पढ़े लिखे बुद्धिमान वशिष्ठ ज्ञानी तार्किक विचारधारा वाले एवं अत्यधिक समझदार लोग तर्क करते हैं कि पारद शिवलिंग का है क्या, कुछ भी नहीं है। ऐसे तर्क करने वाले अति बुद्धिमान में भी सिर्फ इतना ही निवेदन करूँगा कि स्वास्थ्य के संशय को कोई स्थान नहीं है। जानना चाहिए, कई बुद्धिमान लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि अमेरिका वाले कौन सा पार

0: शिवलिंग बना करके पूजन करते हैं, तो उसी प्रकार से पारद लिव का पूजन सबसे उत्तम है। ओम शांते शांते इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

ईश्वरम् श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री रामदूताय नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में आज थर्सडे 13 अगस्त में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सती माता जहां देखें उनको भगवान राम लक्ष्मण जी और सीता जी दर्शन में देखने को मिलते हैं। केवल इतना ही नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं

सीताराम जी लक्ष्मण जी के साथ साथ सती माता ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। सती माता ने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं।

0: उन्होंने अंगिनत, अनुपम, सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। ये सारा दृश्य माँ सती के सामने थी और माँ सती ने ये सारा दृश्य अपने मन में दर्शन कर ली। मानो जिस प्रकार अर्जुन को कुरुक्षेत्र किरण भूमि में विराट रूप का दर्शन हुए थे, उसी प्रकार माँ सती को भगवान श्री रामचंद्र जी की सर्वव्यापकता स्वरूप देखने को मिला। सभी ओर केवल सीताराम जी नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड श्री राम जी के साथ उनकी सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे दृश्य सती माता के सामने परी हुई है। तुलसीदास जी इसी दृश्य का और भी विस्तार से वर्णन करते हैं, जिसकी हम चर्चा हम कल करें। आज इसको यहीं पर विराम दूं। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम।
2: आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मंत्र की व्याख्या, मैं प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री। श्रोता हो, ये यजुर्वेद के 23वें अध्याय का 19वां मंत्र है। गणपति के पूजन के समय में प्रायः करके इसका मंत्र का हम उच्चारण करते हैं, पर इसके वास्तविक अर्थ को हमें समझना है, हमें दिग्भ्रमित नहीं होना है। यहाँ गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे कहा है, अर्थात ईश्वर कैसे हैं, तो गण कहते हैं प्रजा को, पूरी जो प्रजा है उस प्रजा के पति, पति का मतलब है स्वामी, पालन करने के कारण से ईश्वर को गणपति कहा गया है ना। ये बात हमको बहुत समझनी चाहिए, गणपति, गण कहते हैं, स्वामी जी ने लिखा है महर्षि दयानंद ने, गण का अर्थ है सारी प्रजा, और उस सारी प्रजा के उत्पादक हैं, पालक हैं, रक्षक हैं, इसलिए उसको गणपति कहा गया है। और फिर दूसरा शब्द आया है प्रियाणाम त्वा प्रियपति, प्रियपति का अर्थ है मेरे सारे जितने पदार्थ हैं उनके परमात्मा आप पालक हो, ऐसी मैं भावना रखूं। फिर कहते हैं निधि नाम त्वा निधिपतिम हवामहे, निधि कहते हैं खजाने को, खजाने का मतलब है संसार के अंदर जितनी भी निधि है, पेट्रोल है, डीजल है, हिरण्यगर्भ के अंदर ये सारे पदार्थ विद्यमान है, इसलिए वो खजाने के क्या हैं, स्वामी हैं, इसलिए उनको निधिपति हम जाने। वसोहो, सब जगत को जिस सामर्थ्य से परमात्मा ने उत्पन्न किया है और उसी का वो धारण और पोषण करने वाला, ऐसा हम जाने। आप सबके कारण हैं, आपका सामर्थ्य है, यही सब जगत का धारण और पोषण परमात्मा करते हैं। जीवादि जगत तो जन्मता है, मरता है, परंतु आप

सदैव अजन्मा हो अमृत स्वरूप है। आपकी कृपा से हम लोग अधर्म अविद्या दुष्ट स्वभाव आदि को अजानी अजानी का अर्थ है हम दूर फेंक दें, इनको दूर करें और हम लोग हवामहे आपको ही हम पुकारा करें। सो आप हमको जितना जल्दी हो सके शीघ्रातिशीघ्र आप प्राप्त होजिए। आप प्राप्त होने में थोड़ा भी विलंब करेंगे तो हमारा कुछ भी कभी ठिकाना न लगेगा। श्रोताओं, इस मंत्र के भाव को समझना है और केवल गणपति की वंदना करने में ही इसकी सार्थकता न समझें। प्रत्येक व्यक्ति ये जाने कि परमात्मा गणपति है, परमात्मा निधि का पति है। निधि कहते हैं खजाने को। मैंने जैसे बताया सूर्य चंद्रमा जितने भी जड़ जगत है या जो भी सब कुछ पदार्थ हमारे लिए हैं, उन पदार्थों का वो निधि का खजाना है, इसलिए उसको निधिपति भी कहा गया है। गर्भधम आजानी, और समस्त संसार को अपने मानो गर्भ में रखता है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: श्रावणी महोत्सव की हार्दिक शुभकामना आप सभी को। राजपूत महासभा की ओर से पंडिता सुनीता रोजन बुदोई का सादर सप्रेम नमस्ते और आज का विशेष कार्यक्रम में स्वागत। हम तपस्वी आयुष्मान और सुमेधावी बने। ओम अग्ने तपस्तप्यामहे उपतप्यामहे तपः श्रुतानि श्रृण्वन्तो वयम् आयुष्मन्तः सुमेधसः। प्रस्तुत अथर्व मंडल सात अध्याय इकसत्वा मंत्र दो। ऋषि अथर्वा देवताग्नि छंद अनुष्टुप। हे परमेश्वर, तुम में जैसे अन्य गुणों की पराकाष्ठा है, वैसे ही तप की भी पराकाष्ठा है। तुम्हारे ही तप से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है और तुम्हारे ही तप से इसका संचालन हो रहा है। परमेश्वर और आचार्य के आदर्श को सम्मुख रखते हुए हम भी तप करते हैं। तप के बहुत से रूप लोगों ने आविष्कृत किए हुए हैं। सामान्यतः शरीर को कष्ट देना ही तप माना जाता है, परंतु वस्तुतः ये तप तब तक एकांग्री है जब तक आत्म साधना के लिए नहीं किए जाते, दिखावे के लिए या दर्शकों को प्रभावित करने के लिए सहन किया गया शरीर कष्ट तप नहीं। हम हर्ष शोक मान अपमान सुख दुख शीत आतप आदि द्वंद्वों में यमचित रहने के अभ्यास रूप तप को तथा मन और इंद्रियों की एकाग्रता रूप तप को साधते हैं। हे परमेश, हे आचार्यवर, हम तुम्हारे सान्निध्य में तप का अनुष्ठान करते हैं, जिससे तप में होने वाली त्रुटियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते रहे। हे परमात्मन तथा हे आचार्यवर, जैसे तुम तपस्वी हो वैसे ही महाज्ञानी और परम मेधावी भी हो। हम भी तुम्हारे संदेशों को तथा तुमसे प्रदत्त वेद ज्ञान को सुनते हुए ज्ञानी और मेधावी बने। तुम्हारे समान हम आयुष्मान भी बने। शरीर से तो आयुष्मान या पूर्ण आयु जीने वाले बने ही, साथ ही यश से भी आयुष्मान बने। ऐसे हम यशस्वी बने कि इस नश्वर शरीर के नष्ट हो जाने पर भी हमें जनता स्मरण करती रहे तथा हमारे गुणों से शिक्षा लेती रहे। हे ज्योतिर्मय ज्योतिष तपोनिष्ठ विज्ञानवान आयुष्मान मेधावी परमा

आत्मन तथा आचार्यवर, तुम हमें सच्चा तपस्वी, सच्चा श्रोता, सच्चा आयुष्मान और सच्चा मेधावी बनाओ। श्रोतागण, आइए इस मेधावी गुणों को अपनाते हुए अपनाने की कोशिश करें और इन्हीं विचारों के साथ हम अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इति ओम शांति शांति।

जो कन्या दुहिता बनकर सूर्य की किरणों के समान अपने पति के घर को प्रकाश से युक्त करती हैं, प्रगति के मार्ग पर चलती हैं, वह घर धन धान्य से ओतप्रोत हो जाता है। विद्या, सेवा, उत्तम आचरण एवं विनम्रता से अपने पति को आनंदित करती हैं, वह उत्तम स्त्री कहलाती है। ऐसी स्त्री अपने घर परिवार के लिए सुख का स्रोत होती है। जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर संसार को अपना प्रकाश देकर सबको सुखी करता है, वैसे ही उत्तम स्त्री अपने घर को श्रेष्ठ आचरण, विद्या, सेवा, सत्कार, संस्कार आदि से सुखी रखती है।

0: सुतम।
1: सुख की भावना रखने वाले मनुष्य अपने खान पान एवं व्यवहार ठीक रखें। जो कुछ ग्रहण करें वे प्रकृति के नियम के अनुकूल होना चाहिए। औषधियों के रसों का पान कर हमेशा स्वस्थ रहें। निरंतर प्रशंसा के योग्य कर्मों को करते रहें। प्रशंसनीय श्रेष्ठ कर्म में ही जीवन की सार्थकता है। तभी मनुष्य सूर्य एवं बिजली के समान शक्तिशाली बनकर जगत का कल्याण कर सकता है।

0: हे सरस्वती, दिव्य गुण संपन्न विद्या की अधिष्ठात्री शक्ति, आप हमारे जीवन को गुण संपन्न बना, हमारी बुद्धि की रक्षा कर, बलों के द्वारा हमें बलशाली बना, अन्नों के द्वारा हमें अन्न से परिपूर्ण कर, विज्ञान के द्वारा विज्ञानवान बना, विद्या हमें प्रशस्त अन्न बल विज्ञान प्राप्त करावे, विद्या से बुद्धि की रक्षा हो। हे परमात्मन, आप हमारी बुद्धि को उत्तम प्रेरणा प्रदान करें, ताकि हम विद्या को प्राप्त कर समुद्र के समान गंभीर शब्दमय तेज और सामर्थ्य प्राप्त कर सकें।
1: ओम।

0: सभी को नमस्कार आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से अदिति आपको नमस्कार
1: नमस्कार पूनम श्रोताओं को भी नमस्कार बैंक ऑफ मॉरिशस ने की रेट 4.75% पर बरकरार रखा है संस्था की गवर्नर डॉक्टर पुसिला मतवाताको की अध्यक्षता में कल लगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया जियोपॉलिटिकल तनाव और वैश्विक स्तर पर बढ़ते इन्फ्लेशन के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक सतर्कता बरत रहा है मॉरिशस में हेडलाइन इन्फ्लेशन की दर जून में 4.1% से घटकर जुलाई में 4% हुई है जबकि वार्षिक अंतराल के लिए महंगाई की दर 4.4% तक पहुंची है हालांकि बैंक ऑफ मॉरिशस ने 2026 के लिए इन्फ्लेशन का अनुमान मई के 5.5% से घटाकर लगभग 5% किया है भारतीय नौसेना की चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन 10 से 13 अगस्त तक मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा पर हैं जिसका मकसद है दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और मजबूत करना 31 मई को पद संभालने की बात से ये उनकी पहली विदेश यात्रा है उन्होंने कल पोर्ट लुइस में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामुलाम के साथ रस्मी मुलाकात की मुख्य रूप से प्रशिक्षण तकनीकी सहायता हाइड्रोग्राफी और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा हुई अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन द्वारा किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों में रशिया के दो बड़े अनाज एक्सपोर्ट टर्मिनल्स को भारी नुकसान पहुंचा है साथ ही ब्लैक सी पर मौजूद रूस के आखिरी बड़े नेवल बेस पर भी हमला हुआ है कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है जिनमें एक बच्चा भी शामिल बताया जाता है और 24 अन्य लोग घायल हुए हैं आखिर में स्थानीय मौसम का हाल आम हालत हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं अगले 24 घंटों के लिए अनुमान पूर्व से आ रहे बादलों के कारण आज सुबह के दौरान दक्षिण और पूर्व तथा सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर रह रहकर हल्की बारिश हो सकती है देर दोपहर बाद पश्चिम उत्तर पश्चिम और सेंट्रल प्लेटू पर भी बादल घिराएंगे और रह रहकर हल्की बारिश होगी शाम के दौरान भी उत्तर पश्चिम में बारिश की संभावनाएं हैं रात के दौरान आसमान साफ रहेगा हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 15 से 18 अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस साहिली इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22 अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा सुबह

0: अब 5:06:33 पर सूर्योदय, शाम को 5:56 पर सूर्यास्त होगा। तो ये
1: RM3 Radio.

मोहतरम सामीन, कुरान करीम की तिलावत। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। कुरान पर ईमान, उसकी तिलावत और उस पर अमल बंदे को अल्लाह ताला के करीब करता है और आखिरत में उसकी शफाअत का सबब बनता है।

नमाज फजर और असर की पाबंदी। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दो ठंडी नमाजें फजर और असर अदा करेगा वो जन्नत में

मोहतरम सामीन, सुबह का आगाज़ नमाज फ़ज्र से करें, दिन का अख्तिताम अल्लाह ताला की याद पर करें, गुनाहों पर शर्मिंदगी महसूस करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, हर नमाज के बाद जन्नत की दुआ और जहन्नम से पनाह मांगें, कुरान की तिलावत को मामूल बनाएं, हर नेकी को मामूली न समझें। अल्लाह ताला हर छोटे अमल का भी अजर देता है, आखिरत की तैयारी ही असल कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम सामीन, सबर खैर प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है, आइए आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं और इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा, फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

94.5 Wave RJ Sundaram from 7 a.m. to 8 a.m. Danny Sayaranga.

0: सुंदरम
1: Your request.

0: वो हमारी साथ है।
1: श्रोता मित्रों, भगवान शिव ने समर्पित श्रावणनो आ मास, अने आ मासमां कहेवाय छे के आपणे जेटलू श्रवण करीए एटलू आपणा माटे ए बहु ज फायदाकारक साबित थाय छे। अने भगवान शिव ने श्रावण मास खूब ज प्रिय छे, एटले आ महीनामां शिव पूजानुं एक अलग ज महत्व छे। श्रावणनो दरेक दिवस खूब ज खास होय छे। सोमवारथी रविवार सुधी दररोज करवामां आवती शिव पूजा अथवा शिव अभिषेकनी पूजा अलग अलग शुभ फळ आपणने आपे छे। अने आ महीने दर बीजा के त्रीजा दिवसे कोई शुभ तिथि, त्यौहार अने उत्सव आवतो ज होय छे। एटले ग्रंथोमां श्रावण महीनाने एकदम पावन पर्व मानवामां आवेलो छे।

भक्ति में शक्ति। सभी श्रोताओं को अनीता का नमन स्वीकार कीजिए। अभी आप रेडियो मनोरंजन सुन रहे हैं, जिसके माध्यम से भक्ति में शक्ति कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। भक्तों, एक सुंदर विचार इस प्रकार है कि किसी वंश या जाति में पैदा होने से कोई महान नहीं होता। मनुष्य महान होता है अपने कर्म से और अच्छे गुणों से। तो इसी शुभ विचार के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

भक्तजन, विष एक बहुत ही अद्भुत पदार्थ है। यदि अचानक रक्त प्रवाह में सम्मिलित करा दिया जाए तो घातक बनकर प्राण ले सकता है, परंतु इसी विष से बनी विष रोधक औषधि अर्थात दवाई सैकड़ों के प्राण बचाने में अमृत का कार्य करती है। अर्थात अच्छाई बुराई किसी वस्तु में नहीं अपितु उसके उपयोग करने वाले भाव में होती है। इसलिए जीवन में यदि सुरक्षित रहना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो सामने वाले के भाव को पहचानना, उसे पढ़ना सीखना चाहिए, क्योंकि भाव से बड़ा कोई शस्त्र नहीं और भाव से बड़ी कोई ढाल नहीं।

प्रियजन, विचार कहने को तो केवल एक छोटा सा शब्द है, परंतु इसमें असीम शक्ति और संभावनाएं छिपी है। किसी भी कर्म की सफलता और उसके सिद्ध होने का बीज यही विचार ही तो है। इसलिए जब भी अपने भविष्य के लिए अपने ही मन में कोई विचार आए तो उसे उसी क्षण दृढ़ विश्वास के साथ सींचें। जब एक विद्यार्थी अपने मन में विचार धारण करता है कि उसे परीक्षा में सफल होना है, तब वही विचार उसको परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। अतः विचार को रोकिए मत, वरन सुदृढ़ कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी।

श्रोताओं, पीछे मुड़कर देखना व्यर्थ है। कदाचित सृष्टि ने इसलिए तो आंखें आगे की ओर दी हैं, ताकि हम अपने आने वाले मार्ग का आंकलन करके आगे बढ़ सके। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपने अनुभव को भुला दें, अपने अतीत को भुला दें, क्योंकि जो हमारा अनुभव है, सीख है, इतिहास है, वही तो भविष्य के लक्ष्य की धारा बनता है। तो आगे पीछे का संतुलन करके चलना ही जीवन है।

प्रियजन, जीवन के कठिन समय में जब कोई गिरता है तभी यह स्पष्ट होता है कि वह अंदर से कितना सशक्त है। गिरना कोई हार नहीं होती, हार तो तब होती है जब हम दोबारा उठने का साहस छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास बनाए रखता है उसका साथ स्वयं भगवान देते हैं। इसलिए कभी ना रुके तथा ना झुके, क्योंकि जो ठक कर भी चलता रहता है वही अंत में सफल होता है।

भक्तजन, बहुत ही सुंदर रूप से कहा गया है कि गुण नहीं तो रूप व्यर्थ, भूख नहीं तो भोजन व्यर्थ, सदुपयोग नहीं तो धन व्यर्थ, साहस नहीं तो तलवार व्यर्थ, परोपकार नहीं तो मनुष्य व्यर्थ, श्रद्धा नहीं तो पूजा व्यर्थ, अर्थ नहीं तो शब्द व्यर्थ, प्रेम नहीं तो जीवन व्यर्थ, बुद्धि नहीं तो ज्ञान व्यर्थ और विनम्रता नहीं तो विद्या व्यर्थ। अतः एक अहंकारी से बड़ा मूर्ख इस पूरे संसार में और कोई नहीं होता। प्रतिभा एवं अहंकार कभी साथ नहीं।

हो जाएंगी। दुनिया की परेशानियां उतनी नहीं होती जितनी हम अपने मन में बना लेते हैं। सोच को नियंत्रित करना सीखिए, क्योंकि जो मन को जीत लेता है वही जीवन को जीत लेता है। आपके साथ एवं ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता की ओर से नमस्कार।

0: सुनते हैं अभी के लिए संक्षिप्त समाचार आपके साथ अदिति। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीषमा श्रोताओं को भी नमस्कार। सरकार देश के उत्तर में बड़े पैमाने पर डीसैलिनेशन प्लांट के लिए फिजिबिलिटी अध्ययन की तैयारी कर रही है। वहीं उपभोक्ता संगठन असीम की तरफ से मांग की जा रही है कि सबसे पहले नेटवर्क में होने वाले नुकसान की समस्या हल की जाए। असीम के महासचिव जयंत चिलम के अनुसार मॉरिशस में उपलब्ध पानी का लगभग 60% हिस्सा उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाता है। ये आंकड़ा नेशनल ऑडिट फोर्स ऑफिस की रिपोर्ट से मेल खाता है, जिसके अनुसार पिछले 5 सालों में नॉन रेवेन्यू वाटर का औसत स्तर लगभग 60% का रहा है। सरकार ने इस दर को 2026-2027 तक घटाकर 58% और 2028-2029 तक 50% तक करने का लक्ष्य तय किया है। होम सोलर परियोजना के सबसे प्रथम लाभार्थी

0: ही अब अपने सौर्य इंस्टॉलेशन के मालिक बन रहे हैं। इवेंट में कल ऊर्जा मंत्री प्रतिकाशिया बादन की मौजूदगी में सीबी ने 1000 घरों के प्रथम ग्रुप को प्रोप्राइटरशिप के दस्तावेज सौंपे। ये बजट 2026-2027 में घोषित किया गया एक कदम है। ये लाभार्थी अब से अपने सौर्य सिस्टम से पैदा की जाने वाली बिजली के 50% से बढ़ाकर 100% के मालिक बनेंगे। एमिरेट्स अपने यात्रियों के लिए तारीख बदलने, रिफंड करने और उड़ानों में रुकावट से जुड़े कई नए उपायों के लिए सुविधाएं बढ़ा रहा है। अगर फ्लाइट्स में अस्थिरताएं होंगी तो एमिरेट्स की तरफ से प्रभावित यात्रियों के लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी। एयरलाइंस का मकसद है यात्रियों को बुकिंग के समय से लेकर गंतव्य तक पहुँचने तक ज़्यादा फ्लेक्सीबल सेवाएँ प्रदान करना। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio. Mana.

0: अजी दोस्ती की है निभानी तो पड़ेगी, इसीलिए तो आते हैं हम आपका साथ देने के लिए आपके अपने रेडियो मनोरंजन पर।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: सभी हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत है रेडियो मनोरंजन आरएम3 पर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है और आप हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ गए हैं। थैंक यू सो मच। हमारा टिकटॉक थोड़ी देर में लाइव होने वाला है। मैं विदिता स्वागत करती हूँ। घड़ी मिलाते चलिए 12:09 हुए हैं। चलिए इसी के साथ अगले गाने की ओर बढ़ते हैं और इंतज़ार करते हैं हमारे बाकी दोस्त हमें ज्वाइन करें।

0: चले जी, यहाँ पर आप विनीता का साथ दे रही हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं आपके लिए सुहाना सफ़र, और सुहाना सफ़र में सफ़र सुहाना हो इसलिए हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कुछ ऐसे खूबसूरत गाने ले आए जिससे आपका मूड बन जाए। तो चलिए यहाँ पर गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे हमारे इन तमाम दोस्तों के लिए जो समय टिकटॉक के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और व्हाट्सएप पर अगर आप मैसेज भेजना चाहते हैं नंबर है 5250-6200, और साथ में यहाँ पर अगर आप चाहें तो हमारे टिकटॉक पर हमारे इस लाइव के साथ भी जुड़ सकते हैं। सो वी हैव गीता सीयू, रेखा गोपाल, सुनंद, संदील, सुकन, नीलिमा और यामीन जो हमारे साथ जुड़े हैं। तो चलिए आप सबों के नाम पेश है अगला गाना।
1: RL Free Radio.

रवि साहब की आवाज़ में चलिए खूबसूरत सा गाना था आपके लिए। अभी सेबास्टोपोल से मनोज हमारे साथ हैं। वी हैव रोहित जो कहते हैं कि भाई आज काम पे नहीं जाना, आज तो बस आपका प्रोग्राम सुना है। थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स वी हैव दिशा, नवरता, दीपक सिरपाली जो रोज इन से हमें सुन रहे हैं, सविता, रुचया और साथ में है माधुरी, करती हुई आ गई एक दो तीन। लच्छम सी गोबिन सूबी विमी परी हमारे साथ है। मम्मी का बर्थडे है आशु, रोविन, अक्षय, नीलम और अहाना की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। स्मिता को कहेंगे थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके पापा का बर्थडे है सो हैप्पी बर्थडे। विमी आपके बेटे पृथ्वी यादव जो कनाडा में है साथ में बहू येशा के लिए, और मालिनी, बबीता सब हमारे साथ हैं। थैंक यू।

0: ना सफर हाँ ना सफर
1: रुक जाने का मतलब ये है कि रुक कर हम अगला गाना जो है डेडिकेट करते हैं हमारे इन दोस्तों के लिए जो साथ दे रहे हैं हमारे कौन है चलिए जानते हैं वी हैव डैनी रोजा दुर्गा संध्या रोशन साथ में है कल्याणी हरी समीता और संजय के लिए मदन पंचू साहिल रोजीदा सरामा आशा मीला रामा मिस्टर नुरेदीन बुराही शर्मिली वरुणा रामधारी सुल्ताना खंदाई वृंदा और हमारे साथ हैं तरुण राम जो कि हमारे गीतों को एंजॉय कर रहे हैं पूनम आपका हम स्वागत करते हैं थैंक यू सो मच चलिए हम भी कीप कूल ही रखते हैं और यहाँ पर नाजमा इमामदीन के लिए गाना डेडिकेट करते हैं रमेश हमारे साथ है और आपके लिए गाना होगा और साथ में ये गाना हम डेडिकेट करते हैं पूजा के नाम और यही गाना होगा उन तमाम दोस्तों के लिए जिन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा लेकिन फिर भी हमारे साथ हमारे टिकटॉक के साथ हमारे लाइव में जुड़े हुए हैं आप सभी को एक बार फिर से थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हमारे रेडियो मनोरंजन पर
2: RM3 रेडियो

सुहाना सफर, सुहाना सफर। चलिए हम भी अपना लड़कपन छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के साथ। और अगला गाना जो होगा चाहता है वो आप सभी के नाम। वैसे तो कई सारे मैसेजेस आए हैं, नाम आपने लिखे नहीं हैं, सॉरी। नेक्स्ट गाना धनेश्वर फैमिली के लिए जाता है और साथ में गाना जाएगा आपके पापा के लिए। ये है पूजा की तरफ से। सरोज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और गाना होगा हरि दत्त के लिए जिनका आज बर्थडे है। जितन दुलवा नमस्ते, आप भी हमेशा खुश रहिए, हम यही चाहते हैं। वरुण रामधारी आप के लिए गाना होगा। जी हाँ, आपका नाम जो है ना जुड़ा हुआ है तो समझ में नहीं आता, सॉरी। वरुण रामधारी आपके लिए। और ये प्रिया से बालक के नाम गाना होगा। आंजी आर्मगम वनकम, कैसे हो जी। इंदिरा रामधुनिया आपका भी स्वागत है। और दुर्गा अपनी पूरी फैमिली के लिए गाना मांग रही है। वहीं पे कविता अनु के लिए गाना होगा। सिस्टर विमला, इस सैटरडे को उनका हैप्पी वाला बर्थडे है उनके लिए, अभी वो सुन रही है तो आपको इन एडवांस वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे विमला। और चलिए उत्तम जी का स्वागत है एंड साथ में स्वागत करते हैं आपका। जी हाँ, अपनी सास करुणा को नेक्स्ट गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ। ये है नीलम, और नीलम अक्षय आशु और आहाना। वीना जी नमस्कार, और साथ में सिमला बिजादर नमस्ते, कैसे हैं आप, वेलकम, स्वागत है आपका। चलो नेक्स्ट गाना होगा आप सभी दोस्तों के लिए। नीलेश फकीर, सी वासन समुगम, आपकी पूरी फैमिली के नाम। और सैंडो हमारे साथ हैं। गाना कौन सा होगा भाई? गाना वही होगा जिसे सुनने के लिए हम भी बेकरार हैं। ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे ऐसे दुनिया में, प्यार ही प्यार है जहाँ, और वो प्यार है हमारे रेडियो मनोरंजन पर, क्योंकि सारे दोस्त मिल जाते हैं ना। चलिए सारिक आपके लिए भी नमस्ते, स्वागत है आपका। तो दुनिया के किस कोने से आप हमें सुन रही हैं हमें बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हमारा टिकटॉक अभी लाइव चल रहा है। माया राम दोस्त नमस्कार, स्वागत है आपका।

0: वही तो ले जाने आए हैं आपको उस दुनिया में जहां बस प्यार ही प्यार है, हम हैं, आप हैं और हमारा एक सफर है जो कि सुहाना बनता है आपके होने से।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा गाना जो होगा डेडिकेट करेंगे हम शांता सुकालिंगम के लिए और साथ में यही गाना जाएगा शवि के नाम जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए सोनाली और कवि वेलकम, आपका स्वागत करते हैं और जी हाँ आज ये लाल परी आपका वेलकम करती हैं प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच। बबीता कैसी हैं और लो भाई आयशा भी आ गई, क्या बात है। जी हाँ अभी ग्रीन ग्रीन तो कभी लाल लाल, चलो आयशा आ गई हमारे साथ। शर्मिला राम भरत का हम वेलकम करते हैं, कहते हैं लंच ब्रेक है और क्या कमाल के गाने चल रहे हैं, थैंक यू सो मच। हेलो मिस्टर रामा, कैसे हो आप, स्वागत है आपका। और चलो जी तो यहाँ पर कोई मोतार ब्लॉन्श की ओर चल रहे हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं, सो थैंक यू। हाय पूजा, स्वागत है आपका। शांति आपका भी हम वेलकम करते हैं। वैसे आप लोग ना नाम लिख दिया करो, मुझे समझ में नहीं आता कंपनी का नाम है, आपका नाम है या ऐसे ही आपने एक निकनेम डाला है, तो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। प्लीज़ असली नाम भेज दिया करो ना। और इसी के साथ हम दीप्ति गंदौरी जी का स्वागत करते हैं, प्रीति और राकेश, शर्मिला बुदन और सानवी। और आज का दिन बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमारे प्यारे से दोस्त रोहन मना रहे हैं अपना बर्थडे और उनको हम कहेंगे हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, आपको बहुत बहुत सारा प्यार है एंड हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं।

0: बात दिल में आई है कहूं या ना कहूं। तो चलिए जी, यहां पर मेरे दिल में बहुत सारी बातें चल रही हैं। वैसे जैसे हमारी एक छोटी सी गुंडी और है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट गाना अर्शिता के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, जिससे वे हमारे साथ हमारे गाने एंजॉय करिए। थैंक यू स्वीटी, आई लव यू, थैंक यू। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट गाना होगा फॉर उर्वी एंड तन्वी, सरिता थापा, प्रेमिला बाई राम जी, नलेश भोजराज, संजू फ्रॉम मिलान, श्यामा महराली, उषा साथ में है, मिस्टर सुरेश, रघु, उषा और वंदना के नाम।
1: RM3 Radio.

चलिए जी, इस प्यारे से मौसम में कुछ प्यारे प्यारे गाने आपके लिए हम पेश कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए, नेक्स्ट गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे प्यार के साथ हमारे इन सभी दोस्तों के नाम साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। और गाने को पसंद करने के लिए भी, हमारे प्रोग्राम को पसंद करने के लिए थैंक यू प्रिया। एंड चलिए इसके साथ अभी जितने भी हमारी दोस्त ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए गाना होगा, और साथ में ये गाना पूजा और केल्विन के नाम नमस्ते शीला सिधारी, आपका हम वेलकम करते हैं। और फ्लाक में जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं आप सबों का हम स्वागत करते हैं।

तो हम इसी गाने के साथ बढ़ने जा रहे हैं एक बजे के समाचारों की ओर, उसके बाद सुहाना सफर प्रोग्राम के साथ वापस आते हैं। तो घड़ी बिलाते चलिए, समय दिन के एक बजा है।

0: सुनते हैं अभी के लिए संक्षिप्त समाचार रात के साथ सुमेरा नमस्कार आपको।
1: नमस्कार रादा। मॉरिशस टेलीकॉम नई टेक्नोलॉजी अपनाकर नई तरक्की ला रही है। कई हफ्तों से कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक चैटबॉट का परीक्षण करना शुरू किया। उसे केविन नाम दिया गया। ये चैटबॉट क्रियोल में बात करने की काबिलियत रखता है। कंपनी के लिए ये एक पहल है। ग्राहकों के फोन कॉल्स का संचालन करने के लिए या उनकी शिकायतें लेने के लिए ये एक शुरुआत है। कल फैसला लिया सुनाया गया, यानी परसों इकुडियापॉक मामले में करप्शन के लिए मनीष गोबिन पर मुकदमा चलाया जाएगा। डीपीपी दफ्तर ने औपचारिक रूप से सुप्रीम अदालत के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के सामने उन पर इल्जाम दर्ज किया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पुका के तहत पुराने अटॉर्नी जनरल के साथ साथ पुराने पीपीएस राजा नादालिया और एसआईटी लैंड होल्डिंग्स के पूर्व चेयरमैन हरिदत्त राम नारायण पर भी मुकदमा चलाया जाएगा। 10 अगस्त से दुबई जाने वाले मुसाफिर अपनी यात्रा की तारीख में मुफ्त में बदलाव कर सकते हैं, वो भी जितनी बार वो चाहें। ये कदम इकोनॉमी क्लास में सफ़र करने वालों के लिए हैं और बिजनेस क्लास के यात्रियों से भी ताल्लुक़ रखता है। एमिरेट्स दुबई की उड़ानों के रिफंड को भी कम कर रही हैं। इकोनॉमी और बिजनेस क्लास के चंद तारीफ के लिए $50 और फ्लैक्स टैरिफ के लिए $25। विदेश में चीन के पुराने प्रधानमंत्री झू रोंगजी की कल 97 साल की उम्र में निधन हो गया। चीन की आर्थिक प्रगति में उनका बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने ही 1990 के ज़माने में चीन को विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा बनाया। बीमारी की वजह से विचल बसे,

0: वे 1998 से सन 2003 तक चीन के प्रधानमंत्री रहे हैं। और यूरोप में आज बहुत ही शदीद गर्मी है। फ्रांस, इटली और स्पेन में करीब 92 मिलियन लोगों को 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उच्च तापमान की वजह से प्रभावित होने का खतरा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। लोटस रोड शिमागोनी में 64 साल के 64 years old श्री चंद्राया लक्ष्मुदु जो देवदास के नाम से ज़्यादा जान जाते थे और सुयाक अस्पताल में नर्स थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज शाम चार बजे इनके घर लोटस रोड शिमागोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौम्बुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। सिमेट्री रोड प्लेनमानियों में 75 साल की 75 years old कुमारी सांती जो ललित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज शाम चार बजे इनके भाई महेन बुधन के घर सिमेट्री रोड प्लेनमानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमानियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। अलीजाक लिस्कालिये में 84 साल की 84 years old श्रीमती कोसिला आनंदी पैदायशी नाम दुली जो लीलो के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके भाई दयानंद दुली के घर अलीजाक लिस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बैसेकारोंग लिस्कालिये की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: RM3 Radio.

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: चलिए जी, खूबसूरत पुराने गीतों का ये सफर है। 1:08 हुए हैं और हमारा अगला गाना किसके लिए होगा ये भी जान लेते हैं। तो अभी माया रामदीन जी, माया रामदोस जी आपको कहेंगे, आप जल्दी से ठीक हो जाएं, गेट वेल सून और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, गाना होगा अमरेन शाह के लिए, उनकी मम्मा सुराई के लिए और साथ में लाल माटी में जितने भी लोग हैं उनके लिए। तो गाना होगा और साथ में यही गाना होगा हमारे प्यारे से दोस्त के लिए जो साथ दे रहे हैं एंड काम कर रहे हैं, जो लोग उनको कहेंगे बों को गाज। और नाम अगर आप लोग जब मैसेज भेजते हैं, प्लीज़ सेंड मी योर नेम्स, मुझे आपके नाम याद नहीं रहते, आपके जो निकनेम्स होते हैं वो अजीब से होते हैं और वो नाम नहीं होते, सो प्लीज़ सेंड मी योर नेम। ओके प्रिया, चले एक रोमांटिक गाना आपके लिए हम ज़रूर पेश करेंगे। और यहाँ पर माधुरी जी, क्या हो गया जी बड़ी देर से आपने कमेंट किया, वेदना काटरबोन से है गाना आपके लिए होगा। सलीमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वी हैव सन, कहते हैं नमस्ते दीदी जी, नमस्ते बेटा जी, कैसे हो जी, सब बढ़िया। गाना विश्वानी, दिलवंती दिवागर और प्यारी सी कर्सी के लिए एंड हमारे जो फिजी बॉय हैं। ऑलराइट, सो वी हैव पीपल लिसनिंग टू अस इन फिजी, फिजी आइलैंड में जितने भी लोग हैं, वैसे बहुत सारे लोग हैं सुनते हैं, सो प्लीज़ आप लोग हाजिरी दे दीजिएगा। एंड हेमंत कुमार जी का गाना तो हमने अभी अभी चलाया था, आपने सुना, आपको अच्छा लगा, नहीं ये तलत महमूद थे, और हमने किशोर जी का, मन्ना डे जी का, मुकेश जी का, सबका गाना चलाया, होप आपको पसंद आया होगा। चलिए अभी थोड़ी देर में देखते हैं अभी और कौन से गाने होंगे। ओके, फिजी बॉय लेकिन वो कनाडा में है, क्या बात है, हमने फिजी का याद किया और आप कनाडा पहुंच गए, अच्छी नहीं है बातें, चलो अच्छा है कि आपने याद तो कर लिया। और कनाडा में अभी पता नहीं आप लोगों के सोने का टाइम हो गया होगा, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ हैं। हाय AK, कैसे हो। चलिए जी, गाना होगा आपके लिए और सभी हमारे दोस्तों के नाम।
2: RM3 रेडियो।

0: सुहाना सफर
1: मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं हमारी नजर ना लग जाए। भाई हमारी नजर नहीं लगती, हमारी नजर तो आपको ढूंढती है। चले तो यहाँ पर हमारी नजर ने ढूंढा इनको, संगीता सुकारी, साकुन विनय, साथ में मनीष महजबीन गुडलैंड से साथ दे रही हैं, जया लक्ष्मी, विमला माता पलथ लीना है और इसबेल से, एंड वी हैव शिरीन और साहिल और एजे के लिए स्पेशली आज आयशा ने गाना मांगा है, संजय जिन्हें हम प्यार से कहते हैं संजू, अभी वो ड्राइव करे एंड लिसनिंग टू रेडियो मनोरंजन। हाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चलिए अगला गाना अंजलि के लिए, जो कैटरबोन से है, उनकी दादी माँ को याद करी है, फॉर लोलिता, लैला मुदारन, रेशमा उत्तम, शर्मिला रामबरत कहते हैं जस्ट लव योर प्लेलिस्ट, थैंक यू सो मच। इंदिरा जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। जैविक नमस्ते, आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पर राजेश और प्रकाश के लिए गाना होगा, वहीं पर वैदे ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ये गाना जो होगा हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए सरोज, और इतने सारे खूबसूरत गाने हैं आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो ऐसे में अगर हम एक ऐसा गाना जोड़ दें जो हमारी ज़िंदगी को दर्शाता है तो थैंक यू क्वीन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चलिए करुणा राम हमारे साथ हैं, उनको कहेंगे राम राम। अगला गाना आपके लिए

0: तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं लेकिन हम तो सवाल करते नहीं हम तो सीधे यहां पर गीतों के साथ जुड़ जाते हैं
1: सुहाना सफर सुहाना सफर
0: भाई इससे ऐसे गाने की फरमाइश आती है और थैंक यू सो मच इस गाने की फरमाइश दो दिन पहले आई थी आज हमने वो गाना चला दिया गाना भी मूड देख के चलाना पड़ता है ना कभी कभी हाँ तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट गाना चलाते हैं आशा सुबह की तरफ से उनकी बेस्टी सीता शिवदयाल के नाम रेशमा राव की सुन साथ में अवनीश अ क्लासमेट फ्रॉम लॉन्ग टाइम अगो हाय अवनीश हाउ यू डूइंग कैसे हो आप चलो थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए टू माई लवली फ्रेंड सुल्ताना ये है शयाना की तरफ से और राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहीं पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कौन चलो तो यहाँ पर गाना होगा विक के लिए कहते हैं कि व्हाट अ सुपर सॉन्ग या इट इज़ एक्चुअली फ्रॉम द मूवी मासूम इस गाने की फरमाइश हर बार आती है इसलिए काफ़ी दिनों के बाद ये गाना हमने आज फिर से चलाया तो यहाँ पर गाना होगा आपके लिए करुणा जी थैंक यू एंड अश्विन कहते हैं ये पहला गाना था जो मैंने कराओके में गाया था पुराने दिन याद आ गए हैं ना अच्छा लगा चलो ठीक है तो यहाँ पर आयशा सिद्दीका हमारे साथ हैं एंड आयशा चलो आपके लिए गाना होगा एंड साथ में यही गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए श्रीन राम जोन और यहाँ पर किसी ने नाम नहीं लिखा क्या बात है हाय श्वेता कैसी हो चलो आपके लिए विद्यानंद गोपल आपके नाम भी डेडिकेट करते हैं हमारे इस प्रोग्राम का वो गाना जो मुझे भी बहुत पसंद है एंड आई जस्ट लव सिंगिंग दिस सॉन्ग फिल्म का नाम है कालिया हमारे साथ जुड़ी हुई नीरू रामसन उनका वेलकम है मॉडर्न कॉलेज के जितने भी दोस्त हैं उन सब के लिए अवनीश की तरफ से

0: love यानी lots of love to each and everyone जो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे रेडियो मनोरंजन के साथ.
1: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
0: चलिए अगला प्यारा सा गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे अवनीश की तरफ से मॉडर्न कॉलेज क्रू के लिए. संध्या, चंदा, प्रकाश, सरोजा, देव, विक्रम, कल्याणी, कविता, और कहा कि भाई ये हमारे वो दोस्त हैं जो HSC में 1994 में हमारे साथ थे. चलिए इसी के साथ नेक्स्ट गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे आप सबों के लिए, एंड ये हैं हमारे रॉबर्ट वुड पांडे एंड शेना साथ दे रहे हैं. वी हैव करेश फ्रॉम लाफलोगा एंड गिरवर फ्रॉम सुरीनाम. वेलकम, स्वागत है आपका.

0: के साथ साथ इंसान जो होता है कभी कभी मूडी भी हो जाता है, कोई बात नहीं, इसलिए तो पुराने गीतों का प्रोग्राम लेकर आते हैं ताकि आपके मूड के साथ हम यहाँ पे छेड़खानी करें और बीते दिनों को याद करें।
1: सुहाना सफर।
0: चलिए जी, सुहाना सफर में नेक्स्ट होगा विमला लक्ष्मण के लिए, वीर सिंह विद्या लीलू नेरेका, साथ में बबीता बंधु, नूर फतिमा, विवेक, थैंक यू इमरान, नितिशा, किशन, वेदना, मीमी, सभी हमारे साथ हैं। और चलिए कुमार को कहेंगे हाय, और साथ में मुन्नी, कैसे हो मुन्नी। चलो जी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सीता पदारत को कहेंगे नमस्ते। रेखा जी कैसी हैं, आपकी बेटी करिश्मा के लिए आज उनका बर्थडे है, और आशना गुड आफ्टरनून टू यू। और यहीं पे गाना होगा आपके लिए जी हाँ, ललिता जी कैसी हैं आप, वेलकम, स्वागत है आपका। अब इसी बात पे लक्ष्मी जी आ गई हैं तो हमारा कल्याण हो गया, आगे गाना चलेगा लीना के लिए और वीमा पेंटिया के नाम, फिल्म का नाम चलते चलते। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजा सी शंकर, नमस्ते, वेलकम। ये है रेडियो मनोरंजन, बबीता बंधु, गाना आपके लिए भी।

दर्द दिल दर्द जिगर आई, लेकिन एक टाइम पे आ जाता है वो वक्त जब हम दिल के बजाय दर्द कमर की बात करते हैं। सो कमर सीधी कर लीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए और

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: चलिए अगले गाने के साथ आगे बढ़ती हैं। निरुल सुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको गाने बड़े अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। और चलिए इसी के साथ गाना होगा किसके नाम, वह उनके लिए जो काम के बाद घर वापस जा रहे हैं। राजेश आपका स्वागत करते हैं, वेलकम, कैसे हो जी? चलो जी यहाँ पर मयूरी के लिए गाना होगा स्पेशली, और देविका सुब्रन के लिए जो साथ दे रहे हैं हमारे।

0: RM3 Radio.
1: चलिए अगला गाना द्रवीन केवार प्रिया पुरन के नाम डेडिकेट करते हैं और थैंक यू फॉर लविंग द सॉन्ग से ये गाना जाएगा नीला समिनादन के लिए हैप्पी बर्थडे आपको आपकी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से

अपनी अपनी से लगी हमें और यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे अपने हैं जो जुड़े हुए हैं, बबीता नेमन, नदीशा फड़ा, ये सब जुड़े हुए हमारे साथ, हमारे प्रोग्राम के साथ, जो कि हैं सुहाना सफ़र। और आज, जी हाँ, आज 13 अगस्त को हम मना रहे हैं जन्मदिन श्रीदेवी जी का। और श्रीदेवी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि वो थी बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार। जी हाँ, उनके कमाल की अदाकारी के हम सब दीवाने हैं। उन्होंने 1972 में शुरू किया था चाइल्ड आर्टिस्ट, फिल्म का नाम रानी मेरा नाम, और फिर जूली में नज़र आई थी 1975 में, और उनका जो पहला रोल था सोलवा सावन में 1979 में, हिम्मत वाला में वो नज़र आई, जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। एंड देन जस्टिस चौरी, मवाली, तोहफा और मकसद, मास्टर जी, कर्मा, जांबाज, वक्त की आवाज़, नगीना, ऐसी कई सारे फिल्में आई। और फिर मिस्टर इंडिया, जहां पर उन्होंने आज चार्ली चैपलिन का किरदार निभाया, और चांदनी में उनको कौन भूल सकता है, उनकी ब्यूटीफुल साड़ियां, अरे वाह क्या बात है। चालबाज हो या तो फिर हो डेफिनेटली यश चोपड़ा की फिल्म लम्हे, खुदा गवाह, अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, रूप की रानी, चोरों का राजा, गुमराह एंड लाडला, जुदाई हुई, फिर उसके बाद इंग्लिश विंग्लिश में नज़र आई, और मॉम के बाद वो एकदम कहीं ना कहीं खो गई हम सब की आंखों से दूर, लेकिन हमारी यादों में हमेशा रहेगी, और अपने गीतों के ज़रिए, अपनी फिल्मों के ज़रिए।

0: आगे आगे चलूं मैं, आप पीछे पीछे आ जाओगे ना। चलो तो इसी के साथ देविका सुब्रन अगला गाना आपके लिए। हाय करुणा, थैंक यू दीप्ति जी। एंड चलिए सरोज जाने का टाइम आ गया है और अगले हफ्ते मिलने का हम प्रॉमिस करके जाते हैं। आरती रेणुका मोहन फ्रांस से सुन रही हैं एंड कहती इट्स सो गुड टू फील लाइक होम। एंड राजीव, हिमेश, मनीषा, जगदीप सिंह और राखी जो फ्रांस से सुन रही हैं, हमें स्वागत है आपका।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
0: तो बोनस के तौर पे एक और श्रीदेवी जी का गाना, जांबाज फिल्म में वो नजर आई थी, डांस करती हुई नजर आई थी, गाती हुई नजर आई थी, और हमेशा ये जो उनका खूबसूरत सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें हमेशा में याद रहेगी, और उनके जो किरदार उन्होंने अपने फिल्मों में निभाया है, नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वाली, फिल्म फेयर के कितने सारे अवार्ड जीतने वाली, ये तो ठीक है, लेकिन सबका दिल जीतने वाली, हमारे बीच नहीं है लेकिन फिर भी अपने गीतों के जरिए हमारे साथ, हमारे बीच में है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आज 13 अगस्त को विजयंती माला और योगिता बाली जी का भी बर्थडे है, तो उनके सभी फैंस के लिए चलिए अगला गाना सोनिया, थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर।

0: श्री सुनते संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा नमस्कार।
1: नमस्कार और आदाब। कुदिया पाक मामले में करप्शन के लिए मनीष गोबिन पर मुकदमा चलाया जाएगा। डीपीपी दफ्तर ने औपचारिक रूप से सुप्रीम अदालत के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के सामने उन पर इल्जाम दर्ज किया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पोका के तहत पुराने अटॉर्नी जनरल के साथ साथ पुराने पीपीएस राजाना दालिया और एसआईटी लैंड होल्डिंग्स के पूर्व चेयरमैन हरिदत्त राम नारायण पर भी मुकदमा चलाया जाएगा। मॉरिशस टेलीकॉम नई टेक्नोलॉजी अपनाकर नई तरक्की ला रही है। कई हफ्तों से कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक चैटबॉट का परीक्षण करना शुरू किया। उसे केविन नाम दिया गया। ये चैटबॉट क्रियोल में भी बात करने की काबिलियत रखता है। कंपनी के लिए ये एक पहल है ग्राहकों के फ़ोन कॉल्स का संचालन करने के लिए या उनकी शिकायतें लेने के लिए ये एक शुरुआत है। चीन के पुराने प्रधानमंत्री जू रोंगजी का कल 97 साल की उम्र में निधन हो गया। चीन की आर्थिक प्रगति में उनका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ही 1990 के ज़माने में चीन को विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा बनाया था। बीमारी की वजह से वे चल बसे। वे 1998 से सन 2003 तक चीन के प्रधानमंत्री रहे हैं। यूरोप में आज बहुत ही शदीद गर्मी है। फ्रांस, इटली और स्पेन में करीब 92 मिलियन लोग 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उच्च तापमान की वजह से प्रभावित हैं। 10 अगस्त से दुबई जाने वाले मुसाफिर अपनी यात्रा की तारीख में मुफ्त में बदलाव ला सकते हैं, वो भी जितनी बार वो करना चाहें। ये कदम इकोनॉमी क्लास में सफ़र करने वालों के लिए हैं और बिजनेस क्लास के यात्रियों से भी ताल्लुक रखता है। इमिरेट्स दुबई की उड़ानों के रिफंड को भी कम कर रही हैं। इकोनॉमी और बिजनेस क्लास के चंद टैरिफ के लिए $50 और फ्लैक्स टैरिफ के लिए $25। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। नंबर 16, नंबर 16 वाल्मीकि रोड वाली दी प्रेत्र में 90 साल के 90 ईयर्स ओल्ड श्री रघुबर गीना जो राजा मौतों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े दस बजे इनके बेटे देवानंद गीना के घर नंबर 16, नंबर 16 वाल्मीकि रोड वाली दी प्रेत्र से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रुइले वाले दे प्रेत्र की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। आलेशाक लिस्कालिये में 84 साल की 84 ईयर्स ओल्ड श्रीमती कोसिला आनंदी पैदाइशी नाम दुली जो लीलो के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल 10 बजे इनके भाई दयानंद दुली के घर आलेशाक लिस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बासेकाहोंग लिस्कालिये

की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 एएम सिमेट्री रोड प्लान मान्यो में 75 साल की 75 years old कुमारी शांति जो ललित के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है अर्थी आज शाम 4 बजे इनके भाई महन बुदन के घर सिमेट्री रोड प्लान मान्यो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लान मान्यो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 4 पीएम शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है

0: आप सुन रहे हैं RM3। नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
1: और स्वागत करते हैं आप सभी का इसे विशेष कार्यक्रम में, नाट्य कला कार्यक्रम। यह कार्यक्रम रंगमंच का कार्यक्रम होता है, थिएटर का कार्यक्रम होता है, जहाँ पे रंगमंच की दुनिया में क्या चल रहा है, खास तौर पे हमारे इस मॉरिशसी और रंगमंच की दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ पे कौन सी कहानी लेकर हमारे कलाकार लोग, निर्देशक लोग स्टेज पर आ करके लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं। यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए और ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी रुचि होती है नाटक देखने के लिए, नाटक सीखने के लिए और नाटक के रस में अपने आप को डुबाने के लिए। स्वागत करते हैं एक बार फिर से नाट्य कला कार्यक्रम में। आज हमारे साथ है इंदिरा दुलभ जी और ईशा बालाजी। आप दोनों का हम स्वागत करते हैं। नमस्ते, नमस्ते। और नमस्ते। वैसे आप लोगों, इन लोगों के परिचय के बारे में दो शब्द कहूँ कि हाल में ही जो बूढ़ी काकी नाटक जो चला था हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा और साथ ही साथ वाक्वा रंगभूमि कला मंदिर के अभिनेताओं द्वारा, और इसके दो मंचन हुए थे और दोनों बहुत ही सक्सेसफुल थे। दोनों इस नाटक से जुड़े हुए दोनों कलाकार हैं, एक तो मुख्य का अभिनेता है और अभिनेत्री, और साथ ही साथ ईशा बालाजी आप एक नर्तकी के रूप में आई थी नाटक में। तो सबसे पहले इंदिरा जी आपसे हम शुरू करना चाहेंगे। सबसे पहले इंदिरा जी, बधाई हो आपको।
2: धन्यवाद।
1: इंदिरा जी, हम आपको बहुत पहले से जानते हैं, आपने बहुत नाटकों में भाग लिया है, बहुत किरदार, बहुत कैरेक्टर्स आपने निभाए हैं, लेकिन बूढ़ी काकी तो को देख कर इंदिरा जी दिल में मतलब एक रुदन आ जाता है, एक रोना आ जाता है, एक आंसू आ जाते हैं। आप क्या अनुभव करते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं इस नाटक के बाद?
2: इस नाटक के बाद सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ रितेश जी, क्योंकि हमें बार बार मौका मिलते हैं, मौका देते हैं आकर कुछ ना कुछ बोलने की।
1: नहीं, तो यह कार्यक्रम आप जैसे लोग कलाकारों के लिए है।
2: नहीं, धन्यवाद है आपको, क्योंकि जब हम लोग नाटक करते हैं तो आपने कहा कि हमने बहुत से नाटकों में काम किया है, पर इस बार हमने बूढ़ी काकी का जो किरदार निभाई है उसके बाद कैसे महसूस हुई। बूढ़ी काकी जो हम लोगों ने प्रस्तुत किया है वो हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से, तो डॉक्टर अंजलि जी को धन्यवाद, उन्होंने कार्यक्रम को शुरू किया, बहुत योगदान रहा उनका। और जब हम लोगों ने इसका मंचन किया तो सक्सेसफुल रहा बहुत अच्छे से। तो जब ऐसा लगता है, जब बूढ़ी काकी को हम, मैं ही उसका मंचन कर रही हूँ, तो जैसे कि मैं नहीं हूँ, वो बूढ़ी काकी हैं, जो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है बूढ़ी काकी। जब हमारे निर्देशक जो है आदर जी ने कहा कि आपको बूढ़ी काकी का किरदार निभाना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देखेंगे, कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे। जब काम शुरू हुआ तो लगभग एक महीने के बाद, दो महीने के बाद हम लोगों ने काम किया, उसमें रिहर्सल किया। जब हम लोगों ने वो कहानी को तैयार किया, प्रस्तुत किया, उसके बाद क्या महसूस हुआ, मैं कहूँगी सच, रात भर सोई नहीं। सचमुच मुझे नींद बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि जो उसमें था वो जैसे दिल को छू लेने वाली थी, कि कैसी बूढ़ी काकी किस तरह से उस घर में रह रही होगी, कैसे महसूस की होगी,
1: हमारी भूखी रही होगी। हमारे दर्शकों को दो शब्द बूढ़ी काकी के बारे में बताना चाहूँगा। बूढ़ी काकी जो है एक कहानी है और मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई बहुत ही सुंदर कहानी, बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी है। और कहानी की विषय वस्तु इस तरह से है कि एक बूढ़ी काकी होती है और उनके

0: साथ एक दंपति भी रहते हैं। तो बूढ़ी काकी एकदम कोने में हमेशा रहती पड़ी रहती है, और उन दंपति मतलब एक एक पुरुष एक नारी, पुरुष का नाम क्या होता है इसमें?
1: वो उसका नाम है बुद्धिराम।
0: बुद्धिराम और बुद्धिराम और उनके उनकी पत्नी दोनों साथ रहते हैं, लेकिन कभी उनको ठीक तरह से देखते नहीं है, समय पर खाना नहीं देते हैं। ऐसा समय ऐसा आता है कि घर में शादी होती है और बूढ़ी काकी जो है सब मतलब हर मनुष्य की इच्छा होती है कि पकवान बन रहा है, स्वादिष्ट खाना बन रहा है, जाहिर सी बात है मुंह में पानी तो आएगा ही। बूढ़ी काकी के मुंह में भी पानी आया, उनके मन में भी ये इच्छा हुई कि वो एक खाना खाएं, लेकिन उस समय खाना क्या, उसको समय पर खाना ही नहीं मिला और इतना समय निकल गया है, पेट में चूहे कूदने लगे, एकदम बूढ़ी काकी कमज़ोर हो गई थी। और कहानी के हिसाब से आपको बता दें कि एक समय ऐसा आता है जब मेहमान लोग आकर के खाना खा करके चले जाते हैं, जिस पत्ते में वो खाना खाए थे वो पत्ते पड़े थे कोने में, और बूढ़ी काकी चुपचाप चुपके से चली जाती है, उस झूठन पत्ते से चुन चुन कर अपना पेट भरती थी। और ऐसी होती है बूढ़ी काकी कहानी, प्रेमचंद द्वारा लिखित और उसका रूपांतर करके, एक नाट्य रूपांतर करके प्रस्तुत किया गया है हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा और वाक्वारंग भूमि कला मंदिर के कलाकारों द्वारा। और इंदिरा जी, आपके पात्र को देखकर वाकई आँखों से आंसू निकल आते हैं। एक बार फिर से कहता हूँ, जिस समय हम बैठे हुए थे आप थी मंच पर बूढ़ी काकी के रूप में, जिस समय जैसे कहते हैं ना कहानी की क्लाइमैक्स,
1: हाँ।
0: सब लोग रोने लगे, सब लोगों के आंख में आंसू आने लगे। एक काकी थी हमारे बगल में, बूढ़ी काकी थी हमारे बगल में, उनके आंख में भी आंसू आने लगे। तो जब आपने बूढ़ी काकी का कहानी पढ़ी है?
1: जी हाँ रितेश जी, बूढ़ी काकी की कहानी हमारे जब हमारे बहुत पहले पढ़ी थी, हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, कफन, ईदगाह, बूढ़ी काकी, जितने याद है अब तो कुछ भूलने लगे हैं बूढ़े हो रहे हैं तो भूलने लगे हैं, वो सब पढ़ी थी। परंतु मुझे बिल्कुल मालूम नहीं थी कि एक दिन मैं बूढ़ी काकी की किरदार निभाऊंगी, अंदाज़ा नहीं था, मालूम ही नहीं थी, क्योंकि हम लोग तो जवान है, बूढ़ी काके हाँ इसमें क्लासेस में है, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी, सुजान भगत जी की कहानी, लिखे हुए कहानी सब किया है, परंतु इतनी मालूम नहीं थी कि बूढ़ी काकी की कहानी में उसकी किरदार निभाऊंगी।
0: बूढ़ी काकी कैरेक्टर पात्र, उसकी तैयारी आपने कैसे की?
1: उसकी तैयारी जब हमको बताया गया कि आदर्श जी ने हमको बताया कि जानते हैं आपके लिए एक हमारा एक प्रोग्राम है, मैंने कहा ये देखो मुझे अच्छे रोल देना क्योंकि मैं रोना नहीं चाहती था, फिक्र मत करो अच्छा है क्योंकि वे लोग कहते हैं ज़्यादातर मैं बहुत रोती हूँ, तो कहा मैं नहीं रोऊंगी, नहीं अच्छा है चाची जी, मैं ओके मेरे को वही पात्र मिला वही बूढ़ी काकी
0: रोने वाला।
1: हाँ फिर रोने वाला, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे तो हमारे सब साथी हैं, तो उसकी तैयारी मैंने कहा ना 2 महीने से ज़्यादा हम लोगों ने तैयार किया, वो रिहर्सल तैयार किया, क्योंकि जितनी सरल नहीं थी उतनी जटिल भी नहीं थी, हाँ दोनों साथ हैं, जैसे कि 2 पहिए चल रहे हैं तो ऐसे कर क्या कि उसमें ढालना पड़ा हमको, जब हमने देखा कि बूढ़ी काकी को ऐसे करना है, कभी कभी तो अंजलि जी भी आती थी, वो हमारे जितने कुछ शब्द हैं जितने कुछ करैक्टर्स हैं उसको चेंज करना उसको सिखाना वो भी आती थी, मैंने कहा ना उनका बड़ा योगदान रहा है हमारे इस कहानी हमारे नाटक में, और हम सब ने मिलकर उसको तैयार किया।
0: बहुत ही सुंदर, इंदिरा दुर्लभ जी आप बाकवा से है और बहुत सालों से आप नाटक के साथ जुड़े हुए हैं,
1: यहाँ
0: लगभग आपके कितने नाटक हो चुके हैं?
1: जानते हैं मैंने कभी गिनती नहीं की, वैसे तो 50 से ज्यादा है।
0: 50 से ज्यादा?
1: हाँ ज्यादा।
0: शुरुआत कब हुई थी आपकी?
1: शुरुआत हुई थी बहुत

0: पहले जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, पहले तो हमारे घरों में जैसे टीवी नहीं थी, पोता नहीं थी, कुछ भी तो नहीं थी, बस बच्चे लोग हम सब लोग पढ़ने जाते थे बैठका में, वहीं से शुरू हुआ। गुरुजी ने हमको सिखाया सिर्फ नाटक ही नहीं, हमारे जितने जैसे कि यज करना, जैसे सभा में सबको साथ रहना है, महिला समाज पुरुष समाज, ये सब हमारे गुरुजी ने बांधते गए, हमको सिखाते गए। सिर्फ हमको नाटक ही नहीं सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। तो बच्चे जैसे अभी के तो बच्चे उतना, अब तो गुरुकुल बस है, अब फिर से शुरुआत कर रहे हैं, खुशी हुई कि जानकर कि आजकल के बच्चे गुरुकुल भी जाने लगे हैं।
1: बहुत ही सुंदर,
0: बहुत ही सुंदर। हमारे हमारे समय में तो बैठका थी बस वही,
1: बहुत अच्छा।
0: परंतु बच्चे अच्छे थे, हम लोग भी तो वहाँ से शुरू हुआ, सफर वहीं से शुरू हुआ नाटक की।
1: और नाटक के बाद लोग आने लगे, आपके साथ सेल्फी खींचने लगे। चलिए बूढ़ी काकी के साथ एक सेल्फी ले लेते हैं।
0: सेल्फी ले लेते हैं। तो वैसे ये चलते गए, जब हम लोगों ने, मैंने कहा ना, जिस दिन हम लोगों ने बूढ़ी काकी का जो नाटक प्रस्तुत किया था, बहुत सारे लोग आए थे, देखकर अच्छा लगा, हृदय को बहुत जैसे सुकून मिला। और जब हम वो खेल रहे थे तो अनायास, जैसे कि मैं ही बूढ़ी काकी हूँ, मुझे पर सब गुजर रहा है।
1: बहुत ही सुंदर। तो बूढ़ी काकी आपने कहानी पढ़ी नहीं तो पढ़ लीजिएगा, और इसका नाट्य रूपांतर, मतलब इसका रूपांतरित करके नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ज़रूर आप संपर्क रख सकते हैं हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा, और या तो वाकवा रंग भूमि कला मंदिर के कलाकारों द्वारा उनके निर्देश डायरेक्टर के साथ आप संपर्क रख सकते हैं, और उस कहानी को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वाकई बहुत ही सुंदर कहानी है। जैसे हमने कहा कि कहानी का नाट्य रूपांतर किया गया है, कहानी से लेकर नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और अवश्य जब हम नाटक में प्रस्तुत करते हैं तो बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे ऐसी बिंदुएं आते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो निर्देशक की ओर से, डायरेक्टर की ओर से, वे अपनी ओर से ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, ताकि नाटक बहुत ही सुंदर बने। नाटक में नृत्य नहीं होती है, नाटक में कहानी में नृत्य नहीं होता है, नर्तकी नहीं होता, लेकिन निर्देशक ने अपनी ओर से जो उन्होंने जिस तरह से जोड़ा गया, बहुत ही सुंदर था। और हमारे साथ है ईशा बालाजी। ईशा जी नमस्ते, आपका हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से, जैसे हमने कहा, इंदिरा जी को बधाई हो, आपको भी बधाई। नाटक बहुत ही सुंदर था। ये आपका पहली बार है नाटक में? नहीं
2: नहीं, उससे पहले मैंने मतलब वाकवा रंग भूमि कला मंदिर ने एक कार्यशाला का आयोजन किया था, तो उसमें मैंने भाग लिया। और उससे पहले शायद कॉलेज में मैंने एक बार एक नाटक में भाग लिया था, जहाँ पर मैंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, एक ब्रिटिश, एक कठोर ब्रिटिश अधिकारी का। उसके बाद मैं मतलब भाई आदर सितुहर को धन्यवाद, क्योंकि उस कार्यशाला के बाद उन्होंने मुझे लगातार दो नाटकों में भाग लेने का अवसर दिया। तो
1: हाँ। और पहला नाटक क्या था
2: जो मैंने कॉलेज में?
1: नहीं, आदर जी के साथ
2: वो एक एकोज ऑफ द माइंड, क्योंकि धर्मा सितुहर जी ने लिखा था। और वो जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर था,
1: और अंग्रेजी नाटक था।
2: अंग्रेजी नाटक था।
1: फिर उसके बाद बूढ़ी काकी।
2: उसके बाद
1: तो
2: काकी।
1: जो नर्तकी का रूप आपने लिया था, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो क्या करती है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है नाटक में?
2: वैसे तो मैंने कभी नृत्य ऐसे सीखा नहीं है, जो भी सीखा है वो फिल्मों से, गानों से। तो भाई ने कहा कि वो अंत में एक नृत्य डालना चाहते हैं, तो पहले हमें लगा कि मतलब ऐसे जैसे कि हमने गोपी के वेश, हम गोपी के वेशभूषा में, तो हमें लगा अच्छा सुंदर सा एक नृत्य करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक इमोशनल नृत्य, मतलब बागबान सॉन्ग, वो डालेंगे। तो मतलब कुछ लोगों ने हमसे कहा नाटक के बाद कि वो देखकर हमारी आँखों में से आंसू आ गए, क्योंकि वो जो गाना था वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था। और जो दूसरी सूत्रधार थी मेरे साथ, तो उसी ने वो नृत्य का कोरियोग्राफी किया। और

0: लगभग 1 घंटे में उसने मुझे सारे जो डांस मूवमेंट है वो उन्होंने सिखाई।
1: और नर्तकी के साथ साथ, नृत्य के साथ साथ कठपुतली का भी आपने रोल निभाया।
0: हम कठपुतली करने वाले थे, बाद में वो सूत्रधार या गोपी बन गई।
1: कठपुतली क्या है, करती क्या है, कि थोड़ा सा बताइए हमें।
0: कठपुतली मैं कहूँगी, पहले तो जब उन्होंने कहा कठपुतली,
1: कठपुतली का मतलब पपेट।
0: हाँ
1: ओके, आगे बताइए।
0: तो मुझे लगता है अगर हम कठपुतली बनते तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हमारे जो हाव भाव गतिविधियाँ, या हमें ऐसे ऐसे चलना पड़ता।
1: हाँ, ठीक है,
0: जैसे एक डोर हमें खींच रही है। तो भाई ने कहा नहीं, हम उसको एक सूत्रधार की भूमिका में बदलते हैं। तो वो सुन के बहुत खुशी हुई, क्योंकि कठपुतली बनना बहुत ही मुश्किल है, उसके लिए ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ता, ज़्यादा ध्यान देना पड़ता, और जैसे मैंने कहा मूवमेंट्स एक्सप्रेशंस वो हम नहीं दिखा पाते इतना। तो जब उन्होंने कहा कि हम एक गोपी या सूत्रधार का मतलब की भूमिका में उसको बदलने वाले हैं, तो बहुत ही खुशी हुई। और मेरा मानना है कि जो सूत्र हमारी जो भूमिका थी सूत्रधार की, वो कहानी और दर्शक के बीच में एक सेतु का काम करती है, क्योंकि हमें दर्शकों को पात्रों से परिचित करवाना था, उनको कहानी के अंदर लेकर जाना था, उनको हमेशा कहानी से जोड़े रखना था। तो ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी।
1: कह सकते हैं कि सूत्रधार अगर रोता है तो ऑडियंस भी रोते हैं। हाँ। सूत्रधार हंसता है, ऑडियंस, वो जैसे हमने कहा कि पुल का काम करता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा आप लोगों ने दिखाया। और आपके वर्कशॉप के बारे हम जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कैसे पता चला कि आप नौजवान है और आपके सामने आपके पूरा कैरियर है, पूरा पूरा जीवन है? आपको कैसे लगा कि हाँ मैं भी स्टेज पर चढ़ सकती हूँ, मैं भी स्टेज पर एक्टिंग कर सकती हूँ?
0: एक तो मुझे अभिनय करना बहुत अच्छा लगता है, बचपन से ही मैं थोड़ी सी ड्रामेबाज हूँ। मैं कहूँगी एक्टिंग करने का बहुत शौक है, बचपन से ही फिल्में देखती हूँ, खासकर हिंदी फिल्में, और हिंदी ही गाने, मतलब पुरानी हिंदी फिल्में, पुराने हिंदी गाने सुनती हूँ। तो हमेशा से मैं एक अभिनेत्री बनना चाहती थी, और मैंने यह देखा और सुना है कि जिन भी एक्टर्स की एक थिएटर बैकग्राउंड होती है, उनकी एक्टिंग में एक अलग ही गहराई और आत्मविश्वास होता है।
1: जैसे
0: जैसे कि जितने भी एक्टर्स हैं वो सब कहते हैं हमने थिएटर किया है, जो सीरियल्स भी करते हैं सभी कहते हैं।
1: नाम आप लेंगे उदाहरण के तौर पर?
0: जिन्होंने थिएटर की है बहुत सारे, अभी याद नहीं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे मंच पर जाना है एक बार।
1: बिल्कुल।
0: तो जब उन्होंने कार्यशाला का आयोजन किया तो मैंने सोचा हाँ करना है, बहुत सोचा, बहुत सोचती हूँ। तो मैंने 3-4 बार सोचा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैंने कहा एक बार करके देखते हैं। तो जब मैंने वो किया तो 3 दिन का एक कार्यशाला था, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब हमें सिखाने वाले खुद नेशनल NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, हमें एक्सरसाइज करवाए, वहाँ पे बहुत लोगों से मुलाकात भी हुई, और उसके बाद 2 नाटकों में मैंने काम किया।
1: बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर रूप से आपने प्रस्तुत किया है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाएंगे ज़रूर, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ज़रूर एक गीत के बाद।

ममा के कंच पकाए मची।

बेटी घरे का भाई हो बड़ी बेज बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो तो का भाई हो बोला।

0: मुख्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा।
1: एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं नाट्य कला कार्यक्रम, और नाटक पर कभी कभी हम को एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो कभी मोनोलॉग, मोनोलॉग मतलब अकेला एक्टर पात्र को निभाते हुए अपने डायलॉग्स को बोलते हुए या फिर एक्टिंग करते हुए अपनी कहानी को आगे ले जाते हैं। बात कर रहे हैं हम बूढ़ी का कि नाटक जिनका निर्देशन किया गया है आदर्श सित्योहल। हमारे साथ है भोड़ी काकी जी, मतलब इंदिरा दुर्व जी। इंदिरा जी, इस नाटक को लेकर हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं। एक प्रश्न आपसे हम पूछना चाहेंगे। आपका मेन पात्र रहा था बूढ़ी काकी।
2: जी हाँ।
1: आपसे हम जानना चाहेंगे बूढ़ी काकी कैसा पात्र है और क्या आजकल दिखाई देता है बूढ़ी काकी?
2: जी हाँ, बूढ़ी काकी एक ऐसी पात्र थी उसमें, वही तो यानी कि आत्मा थी, कहानी की आत्मा थी बूढ़ी काकी। तो शुरू करते हैं उसी से, क्योंकि बूढ़ी काकी एक ऐसी

0: यानी कि इंसान थी उसमें, जो कि वो चाहती थी कि अपने परिवार को जुड़ कर रखें, समेट कर रखें। अपना परिवार जो है उसके तो पहले से ही पति और बेटा गुजर जाते हैं, तो उसका जो भतीजा है वो बूढ़ी काकी उसको सब कुछ दे देते हैं, क्योंकि कहते हैं चलो वो तुम उसको उसका ख्याल रखेगा। तो ऐसे ही बूढ़ी काकी ने विश्वास के साथ भतीजा को अपने सारे जायदाद यानी सब कुछ देकर वो रहने लगी। जब वहाँ वो रहने लगी तो जाते जाते बूढ़ी काकी का हालत तो बिगड़ने लगी। खाना समय पर नहीं, न कपड़ा, न खाना, न अच्छा व्यवहार उसके साथ किया जाता था। तो बूढ़ी काकी अकेले रह जाती थी। बस उसके साथ उसकी सहानुभूति थी उसकी छोटी बेटी लाडली, उसकी पोती। जो लाडली थी वो बूढ़ी काकी को बहुत चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि बूढ़ी काकी दुखी है, उसको खाना नहीं मिलता है, मांगने पर भी नहीं मिलता। तो जो कुछ उसके बस में होती थी तो वो चोरी छुपे बूढ़ी काकी को देती थी। तो बस ऐसे ही बूढ़ी काकी घर में रहती थी, बल्कि घर में नहीं, एक छोटे से कोने में, एक छोटे से बरामदे में उसका कोना वहीं पर था। तो बूढ़ी काकी अपना सारा दिन रात वहीं गुजारती थी।
1: आप एक महिला है, आपने आप एक अभिनेत्री है और इस नाटक में आपने भाग लिया। बूढ़ी काकी को आपने जाना, उसकी आत्मा को छुआ आपने, क्या हम कह सकते हैं कि बूढ़ी काकी अभी तक है हमारे समाज में?
0: है रितेश जी, आज तक, अभी तक, अभी भी है, थी, है और रहेंगे। क्योंकि बूढ़ी काकी सिर्फ हमने कहानी में पढ़े हैं ना, परंतु सच्चाई तो आज के समाज में बूढ़ी काकी जिंदा है। कहाँ पर? होम में। क्योंकि आजकल के देखते हैं हमारे बड़े लोग, हमारे बच्चे को टाइम नहीं मिलते हैं बड़े लोगों की सेवा करने को, तो उसको कहाँ पर छोड़ते हैं? ज़्यादातर देखते हैं जो होम है, आजकल के होम है, उसमें छोड़ देते हैं, या कि घर ही पर उसको उसका इस तरह से व्यवहार करते हैं कि ना खाना समय पर। आजकल के तो हम बीमार रहते हैं, ना दवा ना कुछ। शायद ही बिरले हमारे कुछ बच्चे अच्छे काम करते हैं, अपने बड़ों को अच्छी तरह से देखते हैं।
1: अभी हाल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, हमारे देश की कहानी नहीं है लेकिन हकीकत चल रही थी किसी देश में। उन्होंने कहा, डॉक्टर ने फोन किया और कहा कि आपकी माँ मर गई है। तो बेटी ने कहा कि अभी समय नहीं है, मैं पैसे भिजवा देती हूँ, आप अंतिम संस्कार कर दीजिए।
0: सही है,
1: एक रूप में तो बूढ़ी काकी है,
0: क्योंकि ये हकीकत है हमारे देश में नहीं बल्कि चारों जहाँ भी देखो, जैसे कि बूढ़े लोग बहुत दुखी हैं। मैंने कहा बिरले ही ऐसे परिवार होंगे जो अपने बड़े लोगों की सेवा कर रहे हैं, खुश है अपने बड़े लोगों के साथ, बहुत थोड़ा है। ज़्यादा तो हमारे बूढ़ी काकी चारों तरफ है, वे लोग दुखी हैं। इस बात की मुझे खुशी है कि जो सीनियर सिटीज़न हैं इसलिए रखा गया है कि वे लोग साथ में एक ग्रुप बनाकर बातें, बातचीत, जैसे सभी जगह जाते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं, कहीं ना कहीं तो वे लोग शायद विजिट पर कहीं ना कहीं जाते हैं, तो ऐसे वे बातचीत करते हैं अपने से, उससे, तो उन लोगों का मन बहलता है। सीनियर सिटीज़न की बात कर रही हूँ, वे लोग जाते हैं अपना दुखड़ा उसको सुनाते, तो कुछ भूलते हैं, यानी कि जो स्ट्रेस है वो कम करते हैं। वे लोग जाते हैं, हमने देखा है कितने बुजुर्ग हैं हमारे जो दुखी हैं।
1: आपसे हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि कहानी अब बातों की गहराई में उतर गए हैं और हकीकत की दुनिया की बात हम कर रहे हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे ऐसी बूढ़ी काकी को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, वो क्या एक्सपेक्ट करती है?
0: वो जानते हैं रितेश जी, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं,

0: के सामने इतना खाना तो नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, या कि रोज अच्छे अच्छे खाना एक्सपेक्ट, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा मान,
1: बच्चों का समय,
0: बच्चों का समय। जैसे हम घर पर आते हैं काम से, तो सिर्फ यही पूछेंगे तो चाय पी लिया, खाना खा लिया। जब कभी भी आएंगे तो ये कहेंगे कि देखो ना, मैंने आपके लिए ये कुकीज ला दिया है, I'm sorry।
1: हाँ, तो एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद आप कहानी को, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
0: ओह माय गॉड, सॉरी रितेश जी।

0: चर्चा भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा, नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
1: बात कर रहे हैं हम बूढ़ी काकी के बारे में और हमारे साथ है इंदिरा जी। हम बात कर रहे थे आप के जो पात्र बूढ़ी काकी और उसकी हकीकत जो है जो आजकल समाज में दिखाई देती है। प्रश्न हमने किया था आपसे, क्या बूढ़ी काकी अभी तक है? आपने कहा कि हाँ है, हर समाज में, दुनिया के कोने, हर घर में नहीं लेकिन कई घरों में ऐसी कहानियाँ चल रही है। तो हमने आपसे पूछा था कि ऐसी बूढ़ी काकी ये लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं? ज़्यादा पैसे नहीं, ज़्यादा खाना नहीं, नहीं। थोड़ा बहुत प्यार बच्चों से,
2: थोड़ा बहुत समय, थोड़ा बहुत मान, थोड़ी बहुत इज्जत, बस बच्चे यही कह दे कि आपने खाना खा लिया, मैं एक छोटी सी चीज़ ला दूँ उनके लिए, छोटी एन एप्पल, एन एक छोटी सी चीज़ उनके लिए, तो जानते हैं वो कितनी खुश होगी, कितनी खुश होती है, शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो आशीर्वाद वो देंगे। मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ है हमारे लिए, तो जो समझते हैं वो अपने बड़ों का मान इज्जत करते हैं, लेकिन अभी के समय में तो ज़्यादातर लोग पैसे जायदाद मिल जाए तो अब जा सकते हैं, तो बूढ़ी काकी अभी तक है रितेश जी।
1: वैसे कहानी की एक ऐसी सच्चाई को हम सामने लेकर आ रहे हैं। ईशा जी, आप जैसे नौजवान के मुख से हम सुनना चाहेंगे, आपने पढ़ाई की है, अभी आपने कहा कि यूनिवर्सिटी पूरा हो गया है, क्या आपने ऐसी कहानी, ऐसा पात्र, ऐसी बूढ़ी काकी देखी है? नाम लेने की ज़रूरत नहीं है लेकिन समाज की हकीकत है ये, आपसे हम जानना चाहेंगे।
3: बूढ़ी काकी की जो कहानी है वो बहुत ही प्रासंगिक है आज के मतलब सोसाइटी में, समाज में। जो मैंने देखा है वो है ड्रग्स। बहुत सारे नौजवान ऐसे होते हैं जो ड्रग्स की वजह से अपने घर के बुज़ुर्गों पर, मतलब मैं कहूँ, अत्याचार करते हैं पैसों के लिए, तो ये हम देखते ही है। तो हाँ, मतलब यही
1: ऐसी बहुत सारी माएँ ऐसी हो, हाँ, है जो रोती है, रोज रोती है बच्चों को लेकर, खासतौर पे जो आपने कहा ड्रग्स है, ये भी समाज के एक बहुत ही बड़ा हकीकत है और जो मतलब बड़ा होता ही जा रहा है, उसको रोकना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है। ईशा जी, आपसे ही हम कंटिन्यू करना चाहेंगे, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपने हिंदी कहाँ से सीखी है?
3: स्कूल से, मैंने फॉर्म 5 तक हिंदी की पढ़ाई की है, उसके अलावा तो हिंदी फिल्मों से ही मैंने हिंदी सीखी है।
1: वहाँ पे तो हम इंग्लिश चलते हैं, अंग्रेजी चलते हैं, तो आपकी हिंदी काफ़ी शुद्ध है, उच्चारण भी बहुत अच्छा है।
3: धन्यवाद। एक तो मैं पुरानी फिल्में बहुत देखती हूँ।
1: अच्छा
3: जी हाँ। और मतलब जो बूढ़ी काकी का जो नाटक है उसके अंत के बाद मैं कहूँगी कि मिष्ठा और मेरे अभिनय के लिए बहुत सारे लोग, मैं कहूँगी 3-4 लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि क्या हम हिंदी पढ़ाते हैं? तो हमने कहा नहीं।
1: कॉम्प्लीमेंट के रूप था।
3: हाँ, एक बहुत ही अच्छी प्रशंसा है मैं कहूँगी। तो मुझे लगता है कि शायद हमारे बोलने का अंदाज जो है और हिंदी के उच्चारण से एक अच्छा प्रभाव लोगों पर डाला।
1: घर में हिंदी चलती है?
3: नहीं, हम बोलते नहीं हैं लेकिन सुनते रोज। हाँ,
1: टीवी के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से ना, करना चाहिए ना। बिल्कुल।
3: उच्चारण जब आप कह रहे हैं तो उसका श्रेय मैं खासकर बहन जी अंजलि चिंतामणि जी को भी देना चाहूंगी, क्योंकि बूढ़ी काकी का जो नाटक है वो मेरे ही संवाद से शुरू होती है। तो जब हम फिनिक्स गए थे और आप भी शायद वहाँ पे मौजूद थे, तो जैसे ही मैंने शुरुआत की मैंने कहा अरे अरे अरे, तो बहन जी ने वहाँ पे मुझे रोका और उन्होंने कहा कि अरे अरे अरे नहीं होता है, तो उन्होंने मेरी गलती को ठीक किया, अरे अरे अरे ऐसे। और एक दूसरा शब्द था, मैं बोल रही थी मजदूरों की पीढ़ा, तो उन्होंने यहाँ पे मेरी गलती को सुधारा, उन्होंने कहा कि मतलब उच्चारण सही किया, पीढ़ा नहीं होता है, पीरा, सफरिंग। हाँ, तो उस दिन उन्होंने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि बूढ़ी

0: काकी का जो नाटक था उसकी प्रस्तुति हिंदी में थी, तो उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से बहुत से दर्शकों में मतलब ज़्यादातर हिंदी को समझते हैं, बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब हम उच्चारण में गलती करेंगे तो दर्शकों का जो ध्यान है वो नाटक में से हट कर सिर्फ उस एक गलती पर चला जाता है,
1: सफेद चादर में एक दाग।
0: जी, हाँ, तो इस वजह से, तो ये जो बात है वो मेरे मन में हमेशा के लिए बस गई कि उच्चारण सही होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो इस वजह से मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो चलिए, समय आ गया है आप लोगों से एक वही नाटक का एक छोटा सा डायलॉग आपसे ही शुरू करते हैं, फिर काकी जी के साथ आते हैं। ईशा जी आप शुरू कीजिए।
0: ओके, एक संवाद है, जो आंखें बचपन में हमारे लिए रात रात भर जागी है, जो आंखें बुढ़ापे में हमारी रात देख रही है, उन्हीं आंखों से आज आंसू निकलवा रही है। जिसने कभी अपने हाथों से पूरे परिवार को खिलाया हो, जब वही एक निवाले के लिए तरस जाए तो केवल उसका पेट नहीं, इंसानियत भी चीख उठती है। इसीलिए अपने घर के बुजुर्गों को बोझ मत समझिए, जीवन का पहिया घूमता है। आज जो उनके साथ हो रहा है वही कल हमारे साथ हो सकता है।
1: बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा ईशा जी, और आपको बधाई एक बार फिर से। ऐसे ही आप नाटक में रुचि दिखाते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। तो काकी जी, इंदिरा जी, आपके ही नाटक का हम जानते हैं कि आपका बहुत ही बड़ा रोल रहा है, एक डायलॉग अगर हो जाए आपकी आवाज में।
2: मैं इस उम्र में किस पाप का प्रायश्चित कर रही हूँ, ऊपर ऐसा कौन सा काम था कि आपने बुढ़ऊ और मेरे बेटे को इतनी जल्दी बुला लिया। उसी समय मुझे भी बुला लेते तो क्या बिगड़ जाता। इस बुढ़ापे में न पति का सहारा न बेटे का, अगर उसी समय बुला लेते तो क्या बिगड़ जाता। मैं बोझ तो न बनती, हर रोज एक निवाले के लिए तरसती हूँ। इन बूढ़ी हड्डियों में दूध तक नहीं मिलता।
1: बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इंदिरा जी, जब नाटक आप खेलती है तो कई जगह पे आप अकेली होती है नाटक स्टेज पर, तो उस समय कभी कभी डायलॉग्स नहीं होते, आपको बैलेंस करना होता है, आप किस तरह से बैलेंस करते हैं अपने अभिनय के साथ?
2: हाँ, कभी वो तो बुरी काकी में ज़्यादातर मैं तो जहाँ पर थी वहीं पर अड़े रही अंत तक, तो उसको बैलेंस करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी कोई नहीं रहते हैं वहाँ पर, तो बस सिर्फ हम ही रहते हैं। तो जानते हैं कि अभी तो इस समय मंच पर कोई नहीं है, हम अकेले हैं, तो कुछ न कुछ करना पड़ता है कि वो जो बैलेंस अच्छी तरह से रहे।
1: कई बार ऐसा होता है कि मतलब डायलॉग छूट जाते हैं, अभी गलतियाँ हो जाते हैं या फिर लाइन्स हम भूल जाते हैं, तो उस समय आप क्या करती है?
2: उस समय ऐसा कोशिश करते हैं कि जब भूल जाएंगे तो उसको, जानते हैं वो तो आप लोग नहीं जानेंगे कि हम लोग भूले हैं।
1: हाँ, हम तो नहीं जानेंगे,
2: तो उसका सुधार थोड़ी से अच्छे कर देते हैं अपने आप, जहाँ पर चुक गए हैं उसको सुधार देते हैं दोबारा।
1: ऐसा कोई घटना अभी तक आपको याद है, आपने कहा कि 50 नाटक आपने कर चुके हैं, ऐसा कोई घटना अभी तक याद है जहाँ पे आप लाइन भूल गए या फिर कुछ गलती हो गए तो आपने किस तरह से सुधारा?
2: हाँ, एक बार ऐसे थे कि हम चावल फटक रहे थे, उसको चुन रहे थे, अब तो वो जो अन्य मेरे सामने वाले जो कलाकार है वो भी भूल रही है, अब हम दोनों सिर्फ वही कह रहे हैं नहीं हमको जाना है नहीं। जब ऐसा करते दो बार क्या, तो अब जाकर याद आया हाँ इसको कहना है, तो हमारे निर्देशक वहाँ से बैठकर देख रहे थे, कहा जब बाद में खेल लिया सब तो भूल गई थी, नहीं हम गई थी, हुआ है

0: क्यों नहीं?
1: मुझे मुझे याद है मैं एक नाटक खेल रहा था जहाँ पे मैं एक पति का किरदार पात्र निभा रहा था, तो मेरी मूछें थी, तो मूछ वो हमको चिपका गया था यहाँ पे, तो बीच नाटक में मूछ आधी लटक रही थी तो किस तरह से हमने संभाला हम ही जानते हैं। ईशा जी, इन दो नाटकों में ऐसा कुछ हुआ था जब जहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ कुछ आगे पीछे हो गया, गलती लाइन भूल गए, तो आपने क्या किया था?
2: अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी इम्प्रोवाइज करते हैं, और जैसे कि हम मंच पर जाएंगे तो वो कुछ ऐसा ऐड करेंगे, तो मुझे पता था कि उसके बाद मेरी लाइन है, तो मैंने पहले से ही मुंह खोल दिया, मैं बोलने ही वाली थी, लेकिन उसने इम्प्रोवाइज किया, तो मैं ऐसे, तो फिर उसका मतलब इंतज़ार करना पड़ता कि वह कब ख़त्म होगा उसका जो संवाद है, फिर मैं बोलूँगी।
1: हमारे गुरु जी दर्शन पुरोहित जी जो भारत से हैं, उन्होंने हमको नाटक सिखाया था, उन्होंने कहा था कि जब हम नाटक खेलते हैं तो एक तो ज़रूरी है हम खुद की लाइन कंठस्थ करें, याद करें, दूसरी बात जरूरी है कि हम अपने को एक्टर्स के लाइन भी याद रखें। ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब मान लीजिए अगर आपके साथ कुछ गलती हो गया, आप भूल गए हैं, तो मैं कहां से किस तरह से टेढ़े मेरे रास्ते से निकल के आपके साथ फिर से आ सकता हूं, इसको कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। तो ईशा जी, आप अभी क्या कर रही है, कौन सा कोर्स आपने किया है?
2: मैंने यूनिवर्सिटी में की है पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद मैंने मतलब छः महीने के लिए मैं ऑफ शो में थी, मैंने काम किया है, और अभी के लिए तो मैं नाटकों में भाग ले रही हूँ।
1: पॉलिटिकल साइंस, तो नाटक और पॉलिटिकल साइंस मतलब दोनों मेल नहीं खाते हैं या फिर मेल खाते हैं?
2: एक नेता और एक अभिनेता।
1: क्या बात है, क्या बात, एक नेता और एक अभिनेता।
0: आपने कहा ना, कभी कभी अपने को भी
1: प्रशंसा करनी चाहिए, तो आप बहुत आगे जाएगी नेता में और अभिनेता में, बहुत ही सुंदर। हमारे नौजवानों को कुछ आप कहना चाहेंगे नाटक के क्षेत्र में?
2: मुझे लगता है सभी के अंदर एक छोटा सा कलाकार छुपा होता है, जब हम झूठ भी बोलते हैं तो उसमें भी एक्टिंग होती है, तो यही कहूँगी कि अगर आपको पसंद है एक्टिंग, अभिनय करना थोड़ा सा भी, तो आप ज़रूर कोशिश करें। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं आशा भोसले जी की एक बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, उनकी भक्त हूँ मैं कहूँगी, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ कही कि जीवन में कभी कभी हमारे सामने एक नदी आ जाती है, हम चाहे तो उसमें मतलब जाकर दूसरे किनारे जाने की कोशिश कर सकते हैं, और शायद हम डूब जाएं, लेकिन अगर हम वो दूसरे किनारे तक पहुँच जाए तो शायद वहाँ पे एक बेहतर दुनिया हमारा इंतज़ार कर रही है, लेकिन अगर हम पानी में उतरने का साहस ही नहीं करेंगे तो मतलब मेरा मानना है कि जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो उसी में सबसे बड़ी हार है, तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए।
1: कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये होता है नेता और अभिनेता। क्या बात है। इंदिरा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हम सीनियर सिटीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं, उन लोगों के पास काफ़ी समय होता है लेकिन शक्ति उतनी नहीं होती है, लेकिन बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन्स को हमने देखा है नाटक भी लोग खेलते हैं।
0: जी हाँ, अभी मैं यही कहने वाली थी आपसे।
1: हाँ, तो उन लोगों के लिए दो शब्द संदेश के रूप में।
0: हाँ, वो जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे सीनियर सिटीजन जी वाले हैं, तो उन लोगों के लिए बधाई है, क्योंकि वे लोग भी अब चाहते हैं कि देखते देखते कोई ना कोई उन लोगों को प्रोत्साहन करेंगे, क्योंकि वे अब देखते हैं, मैं भी देखती हूँ उन लोगों को, कि वे लोग नाटक कर रहे हैं, उनको प्राइज मिल रहे हैं, बट वी आर प्राउड विद देम, क्योंकि अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, वो लोग अपना जो स्ट्रेस है उसको निकालना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं, तो इस माध्यम से वे लोग भी एक दूसरे से देखती हूँ कि वे लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई गाना गा रहे हैं, कोई म्यूज़िक कर रहे हैं, तो कोई नाटक कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी बहुत अच्छी बात है, जस्ट ये कहते हैं कि कीप इट ऑन, अच्छा है वे लोग इस प्रकार के प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे सिटीजन भाई बहन वे लोग भी इससे आगे बढ़ेंगे और जितने दुख है भूलते जाएंगे, क्योंकि समस्या तो

0: अभी जगह पर है, उसमें कोशिश करेंगे कि जैसे कि अभी ईशा ने कहा ना नदी है, तो अगर पानी में नहीं जाएंगे तो कैसे जानेंगे तैरना किसे कहते हैं, पानी में उतरेंगे तो जानेंगे कैसे तैर कर उस पर जाएंगे। तो उन लोगों को भी बधाई है कि वे लोग कोशिश तो कर रहे हैं।
1: बहुत ही अच्छा, इंदिरा दुलभ जी आप आई है और ईशा बालाजी आप आई हमारे प्रोग्राम में, इन सभी बातों के लिए दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको रितेश जी और आपके पूरे टीम को, MBC को बहुत बहुत धन्यवाद
2: कि आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया और हमें यह सौभाग्य दी कि हम अपने एक्सपीरियंसेस और व्यूज शेयर करें, और साथ ही जो लोग हमें देख या सुन रहे हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और आप लोग ऐसे ही नाटकों में भाग लेते रहिएगा। आप हमारे जो ख्वाजा माज है, सीनियर सिटीजन्स है, उन लोगों के लिए आप एक रोल मॉडल बनेंगे इंदिरा जी। आप ऐसे ही नाटक में भाग लेते रहिएगा। कई जो नौजवान या फिर कई जो हमारी चाची दादी लोग हैं आपसे ज़रूर प्रेरित होंगे, इंस्पायर होंगे,
0: उन लोगों को हम लोग प्रोत्साहन करेंगे।
1: बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: तो आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा पूरा लाभ उठाया अगले कार्यक्रम तक का।
3: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे सुमेरा। नमस्कार।
4: नमस्कार राधा। मुर्शिद के विशेष आर्थिक क्षेत्र पर बेहतर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय तटरक्षकों को बहुत जल्द एक नया गश्ती जहाज मिलेगा। इस गश्ती के लिए भारतीय सरकार के लाइन ऑफ क्रेडिट से वित्तीय मदद मिल रही है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने अपनी मुर्शिद यात्रा पर कल पोटलवी में नेशनल कोस्ट गार्ड के कार्यालय का दौरा किया। नौजवानों को अपनी बात कहने का मौका देना, खासतौर पर उनसे सीधा ताल्लुक रखने वाले फैसलों और प्रश्नों पर उन्हें अपनी राय देने का अवसर देना, ये नेशनल चिल्ड्रंस कमिटी का मकसद है जो चिल्ड्रंस एक्ट 2020 के तहत है। देश के चार कोनों से 15 से 17 साल की उम्र वाले नौजवानों को इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने की अपील की गई। वे अपने ख्याल पेश कर सकते हैं, अपनी मन की बात कह सकते हैं, अपने जज्बे भी आम कर सकते हैं तथा कुछ फैसलों पर सवाल भी कर सकते हैं और प्रस्ताव दे सकते हैं। कमिटी के सदस्यों का पहला कार्यकाल खत्म हो गया है जो 2 सालों का रहा। नए मेंबरानों के चुनाव से पहले आज एक समारोह लगाया गया। मॉरिशस टेलीकॉम नई टेक्नोलॉजी अपना रहा है और नई तरक्की भी ला रहा है। कई हफ्तों से मॉरिशस टेलीकॉम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक चैटबॉट का परीक्षण करना शुरू किया, उसे केविन नाम दिया गया। ये चैटबॉट क्रियोल में बात करने की काबिलियत रखता है। ये एक पहल है ग्राहकों के फ़ोन कॉल्स के संचालन करने के लिए और उनकी शिकायतें लेने के लिए ये एक शुरुआत है। विदेश में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर एक प्रतिरक्षा समझौते के तहत एक रणनीतिक और सैन्य प्रणाली कायम करेंगे। तीनों मुल्कों ने पिछले 7 अगस्त को मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। और यूरोप में बहुत ही शदीद गर्मी महसूस की जाने लगी है। फ्रांस, इटली और स्पेन में करीब 92 मिलियन लोग 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उच्च तापमान की वजह से प्रभावित हैं। आम जिंदगी तहस नहस है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
5: RM3 Radio आज की चर्चा।
6: आज की चर्चा प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। वैसे आज ये सोच रहे होंगे कि आज हमारा जो विषय है वो क्या है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी तीनों से जुड़ा है, सर्कुलर इकोनॉमी यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था। और आज की पारंपरिक व्यवस्था में हम अक्सर लो, बनाओ, इस्तेमाल करो और फेंक दो इसके मॉडल पर चलते हैं। इस्तेमाल करके हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी का सवाल है जो चीज़ हम बना रहे हैं क्या उसके रिसोर्सेज को दोबारा बनाया जा सकता है। तो इस मॉडल को मैं रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर और रिसाइकल जैसे कंसेप्ट, जैसे आइडियाज महत्वपूर्ण है। तो सर्कुलर इकोनॉमी की ज़रूरत क्यों है, इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं पर्यावरण मंत्रालय की एक अधिकारी है

0: श्रीमती सुदेवी सुब्रन जो डिविजनल एनवायरनमेंट ऑफिसर हैं। तो सुदेवी जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में।
1: नमस्कार श्रोताओं।
0: तो पहला हम आपसे यही पूछब जा कि अगर सरल भाषा में हमने के सब बताओ कि जिन सर्कुलर इकोनॉमी अगर मतलब का है। सुदेवी जी
1: सर्कुलर इकोनॉमी जैसे जान लो वो ढेर कोई नहीं जान लगे नुवो कॉन्सेप्ट है। ये कौन सी बोल जाए एगो व्यवस्था है एगो सिस्टम है जोन के हमने अपन सामान कोनो सामान के ओके कूड़ा करकट नहीं बनाई दे ला सर नहीं बनाई दे चाहेला तो ये कैसे करब सर हमने के जोन प्लास में फेंके के हमने के चाहेला ओके सेवी करे के बहुत लेता ले और ये एगो इकोनॉमिक मॉडल है जोन सस्टेनेबल कंसप्शन एंड प्रोडक्शन पर उमे डिजाइन हो लाते जमें हमने ओके शेयरिंग करब सर ओके सकब सर हाँ मटेरियल जोन फौजी है ओके लुए करब सर ओके रीयूज करब सर ओके रिपेयर करब सर तब सेवी करते जाब सर और ये बहुत लेते हमने के प्रकृति में रही ओके ओके कूड़ा करकट नहीं बनाओ सर।
0: अच्छा ये जो सर्कुलर इकोनॉमी एक पर नाम सरल भाषा में बताई ला खाली हमने के देश के नहीं ऐसा नहीं को अंतर्राष्ट्रीय इश्यू है।
1: हाँ ये एगो इंटरनेशनल इश्यू है काहे पस कि हमने के एगो एगो एगो प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल ओके बोल जाए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली वो एक रेजोल्यूशन ले रहा कि हमने के चाहला सर्कुलर इकोनॉमी बगल जाए के और हमने के सब पे ही लोग के बोला था जी कि हमके चला जाए के बस कि जब हमने है सर्कुलर इकोनॉमी करब सर तो हमने के बहुत लाभ हुई हमने के साउंड क्लिमाटिक विषय हुई हमने के बायोडाइवर्सिटी हमने के जोन प्रकृति हमने के वो अच्छा हुई हमने के जहाँ जीवत हैं सर और हमने के पोल्यूशन और वेस्ट कम बहुत कमती हुई सकी।
0: अच्छा तो जब सर्कुलर इकोनॉमी बोला था वह ये खाली रिसाइकलिंग पर सीमित है नहीं
1: वो रिसाइकलिंग पर
0: खाली सीमित है।
1: रिसाइकलिंग तो वो दयनीय है दयनीय एट लास्ट मोमेंट हमने के बहुत चीज चाला करे के।
0: अच्छा इम्पोर्टेंट बा हमने के खातिर की सर्कुलर इकोनॉमी काहे इम्पोर्टेंट बा जरूरी है
1: हाँ आगे पहुंचवा दे के आगे हमने बोला सर इंटरनेशनल फैक्ट्स एंड फिगर्स कौन सी बोला था जैसे जान ला एगो गापो प्रोजेक्ट होल बाते वो बोल जा सर्कुलरिटी गैप रिपोर्ट 2025 वो कौन सी बोले ला कि हमने खाली बहुत थोड़ा कौन सर्कुलर में जाते सर्कुलरिटी से खाली 6.9% सर्कुलर है सर हमने ग्लोबल में हर बरिस हमने 106 बिलियन टन मटेरियल सामान से अभी कर ला सर और इनमें से 99 बिलियन टन वो बेकार हो जाते वेस्ट हो जाते प्लस के 93% 106 बिलियन टन पर हमने के जो कच्चा माल है कच्चा माल हमने जैसे एल्युमिनियम जैसे फेरा ये सब एक्सट्रा कर ला सर ना ढेर चीज एक्सट्रा रोज हुए एक्सट्रा करके हमने तक ऑक्सीजन बना ला सर तो हाई सब मटेरियल ओकर डिमांड उगमौते हो ले जाता बरिस बर और ऐसे नहीं उगमौते होता एक्सपोनेंशियली उगमौते होता प्लस ग्लोबल में हमने खाली 11.2% रिसिक्लाज करी ला सर ओकर लेबर नेपोत कोनो रिसिक्लाज ओकर प्लास्टिक लेबर ओकर मेटल लेबर ओकर ग्लास लेबर खाली 11.2% देखबते हमने के हर कपार पर हर एगो आदमी 12.2 टन मटेरियल सेवी करे लाते हर बरिस ओके वेस्ट बना देवे लाते
0: अच्छा
1: सेकेंडरी मटेरियल मजा जब रिसिक्ले कर देबा तो एगो मटेरियल जैसे पेट बतुल लेबा ओके रिसिक्ले कर देबा तो फिर से एगो पेट हो जा अगर सेकेंडरी मटेरियल बड़ी थोड़े कुंद रेंत्रे होता हमने के ग्लोबल इकोनॉमी में 6.9% और हई सब प्रोसेस वन जो बल जाते जब हमने एक्सट्रैक्ट ले ला सर हमने के रिसोर्स हमने के प्रोजेक्ट कर ला सर और सेविंग कर सर तो हमने के ग्रीन हाउस गैस करे लाते 67% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस करे ला और जान ला ग्रीन हाउस गैस रह लाते तो कैसे हमने के साउंड मकली माचे हो लाते कैसे बाढ़ आवे ला कैसे ड्राउट हो लाते तो है सब प्रोसेस वन से इतना अथी हुए लाते कि हमने के पर्यावरण के हानि हुए लाते
0: बिल्कुल बिल्कुल और ये खातिर सके मतलब

0: कि उही से हमनी के इ सर्कुलर इकोनॉमी बहुत जरूरी पड़ल बा
1: इ खातिर हाँ जब हई सब सिफन मिल गए बात इंटरनेशनल देखलन सर कि बहुत बहुत जरूरी बा और ओकर को खास बात जन सर्कुलर इकोनॉमी की है वो एलिमिनेट करी वो कूड़ा कचरा के
0: गंदे करकट
1: के ओके एकदम से खत्म कर दे हमने के सामान और माल के ओके घुमा फिरा के सेवी करी और हमने के कुदरत वो दोबारा जी उठी
0: बिल्कुल बिल्कुल अच्छा हम हमने के सकब बोले काहे ये मोरिस खातिर जरूरी पड़गल बा ये हमने मोरिस खातिर काहे कि देखिला जा हमेशा सुननी जा हमेशा नहीं अभी हाल ही में सुना कि प्लास्टिक जो है ये नहीं चाहे सेवी करे के काफ़ी हमने के इस खाली सकते प्लास्टिक के नहीं एनवायरनमेंट के नहीं बहुत एग्रीकल्चर के भी मतलब कृषि कंस्ट्रक्शन ये वेस्ट इस सब आवे जा सकते में
1: हाँ
0: अच्छा ये लीनियर इकोनॉमी और ये सर्कुलर इकोनॉमी इनमें कौन अंतर है
1: अंतर है लीनियर इकोनॉमी वो कौन सी बोल जा
0: लेवा बनावा फेंका
1: तंजे की सर्कुलर इकोनॉमी बोला जब सामान लेबा तो ओके घुमा फिरा के ओके सेवी कर ओके इचलीजे कर जब मैं वो कूड़ा कर कतने हुई तो कौन सी है जब लीनियर इकोनॉमी वो हमने के मॉडल अब नहीं चाहना सेवी करे के बस कि पहले जब देखत ला हमने जब लीनियर इकोनॉमी सेवी कर ली सा तो जब हमने के वेस्ट हो जाते जैसे तू वो जाए तो हमने अब फेंक दे अब सा तो हमने की लैंडफिल में लैंपाक हो गल बात है वो तो भर गल बात है कहाँ अब डाल अब सा तो वो खातिन बोला था हमने के चाहला सर्कुलर इकोनॉमी बगल जाए के लीनियर इकोनॉमी वो वायबल नहीं बा जीतू वायबल नहीं बा बस कि कहीं नहीं बा वायबल बस कि हमने के रिसोर्स जो है हमने के कच्चा माल जो बात है वो फाइनाइट नहीं है जो बातें धरती में हवे हमने के एक्सट्रा करके चाह सेवे करके और हमने के पॉपुलेशन के चाहला दे के ओकर खाए पिए के ओकर कपड़ा ओकर बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान तो कैसे देवा जब रिसोर्स हुए नहीं रही था
0: अच्छा।
1: तो ओकर अंतर है मजा सर्कुलर इकोनॉमी वो सेवी कर ले जाए और सर्कुलर इकोनॉमी जैसे बोल घुमा फिरा के सेवी करब सर तो वो एगो नेफ एयर पर मौसम में बोल नेफ एयर पर आभारित है वह हम बोलब एक पॉइंट ओकर रिड्यूस रीथिंक रीयूज रिसाइकल रिपेयर रिफर्बिश रिमैन्युफैक्चर रिपर्पोज डेनिया वाला रिसाइकल अब एक एक एक ऊपर जाब पहला है रिफ्यूज हम इनके चल रिफ्यूज करे कि रिफ्यूज मतलब एक चीज नहीं नहीं नहीं ओकर इस्तेमाल नहीं होता तो रिफ्यूज कर दे फॉर एग्जाम्पल जब हमने जाएला से सुपर मार्केट में एक बार तो बुकाल बाते काशुनत बेचा था ते कि रेजें बेचा लाते तो हाँ बुकाल में से कुछ क्या सब ले ला से एक प्लास्टिक ले ला से उमें डाल के तब पेजे करब से तो हाई मोर्टालिटी वा सकब से सौजे करे प्लास्टिक पर बोल ला कि ओकर तो बहुत हानिकारक
0: बहुत हानि पैदा
1: होला को प्लास्टिक हो जाती तो कौन सी करब से यहाँ पर जब जाप से तो पहले कैसे जात ली से जब बुटीक जात ली से तो को उन्हें पापिये में
0: डाल
1: इसलिए हमने अभी तक कोने तो लेता नहीं जाके बनाए के तो कुछ कब से हमने कंटेनर से कब से ले जाए और कंटेनर वहाँ पैसे कर दे तब ग्रेन्स डाल दे तब फिर से पैसे करके खाली अपन ग्रेन्स वाके पे करके तब प्लास्टिक बहुत रेजुआ कर दे ली सर कितना प्लास्टिक देखबा से गोपुआ बालों चिब्बा हमने के रेसा बस सब चीज प्लास्टिक में आवेला तो हमने सकब से एगो हाई आदोपते करे हमने सब को हमने शुरू कब से तो हमने के अच्छा बात है
0: मतलब हमने के चाहे शुरू करे के ई तब आगे बढ़े
1: हां देन शेम हां वी थिंक हमने के चला सोचे के नया सोच करे के फॉर एग्जांपल देखबा तो घरे घरे सब कोई के माँ के गोलुते बा बाप के गोलुते बा लेखा लो के लुते बाते तो कुछ चाहना करके
0: तो बिसिकलेट इस्तेमाल कर अभी से इमे भी सके ना से भी करी
1: हयो हयो हा पस की हम ढेर ले सांस से भी करेला सा तो पोल्यूशन करे लाते तो बिसिकलेट से भी कब सा
0: छोटा छोटा जो जगह
1: लेकिन चले वो सकब सा हा वो हा और थ्वाजेम हा रिजूस हमने के रिजूया करे चाहे लाते फॉर एग्जाम्पल पकाएला से घरे पकाएला से तो अब जब पकाओ से तो देखो तो ढेर पक जलाती जब ढेर पक जा

0: अच्छा तू जब एगो शादी रह लाती तो ढेर पक जलाती तो अब घास प्याज हो लाती तो
1: फेंक देवे तब
0: फेंक के तो हम नहीं चाहे हमने के प्लान करके तब पकाए के घरे रोज के रोज जब पकाए से तो जब प्लान करके पकाए के नहीं तो जब कुछ करब जब एक्सेस रह जाए तो सकबा मॉन्डे
1: बिल्कुल
0: हाँ कथियम हमने के रियूज करे के दोबारा इस्तेमाल करे के फॉर एग्जाम अभी तो मॉडल पर मॉडल लुगा निकले लाते तो देख बात हर एगो मॉडल पर किनब तो रख दे लम्बो
1: न्यू ट्रेंड में आवे ला तो बस बस की इनोवे हो गल बाय इनोवेशन तो चाहे न्यू न्यू पर चाहे ला जाने के कैसे चाहे उसको उपयोग करे के अब
0: जाने चाहे हमने के कोनो गरीब आदमी बातें जन प्लस में जाए फेंक देब लुगवान मान जाए तो लम्बो भर के अब ने सेवी कर फेंक दो तो गरीब में बांट हेबल जलाते रीयूज अब आड़े गोह जन हैकेम है रिपेयर देखब हमने तो अभी तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में जी थे सर हमारे टेलीविजन राजो फ्रिजे सब बातें तो
1: जैसे काम नहीं करी तो
0: फेंक देव नहीं ओके फेंके नहीं चला ओके चाह ओके रिपेयर करके सेवी करके आड़े गोह बल जा रिफर्बिश ओकर सीसेम नया लुक देवे के वो कौन चीज करब सर हमने के एगो एगो एगो ऑफिस जो आउटडेटेड हो गल बात है ओके मॉडर्निजे करके तो कर जोली से ओकर निमन से डाल के अब जन जन ट्रेंड बाबी तो एपोक्सी फ्लोरिंग बात है कौन चीज बात है डाल के से भी कर तो जोली हो जलाते पूरा ओके नवा करके फिर से भी कर जैसे कैसे बातें हमनी हमने एक मतला आवे ले बा देख बा ढेर कोई फेंक ले रहा मतलब चारों बगल
1: कचरा में
0: तो नहीं वो कहीं तू ने कर दा जहाँ जन जन आदमी से किन ले हुआ ढेर जन मतलब बेचे लाते और लोग कुछ करियां सा हो जन मटेरियल बाते फॉर एग्जाम्पल उम्मीद फेराई रह लाते हो फेराई वास किन से रेस निकाल के रेस से भी करे हाई हम मैन्युफैक्चर से छे विच एम रिपर्पोज करी ला सर जैसे हमने मोरिसवे में बाते सें पिया बगल बा और लोग एक पुल आइए के बस की वहाँ तो अब ढेर आदमी लोग चलाल बार है पुल आइए नहीं सकत हम सब पुल से भी करे ओके रिपर्पोज करके ओके दोबारा काम करके ओके एक ऑफिस बना दिल हम जोली से रिपर्पोज कर दिल हम सब तो पुल थ्री के सकब ऑफिस बना दे वे हाउस के सकब मजा रहे के रेजिडेंशियल बना दे तो रिपर्पोज कर दे आर जो दैन्य दैन्य है जब सब है आठ गो एयर कर देब तो दैन्य जो है रेसिकले करब रेसिकले कौन सी है हमने अपन प्लास्टिक ले वब से हमने के मिटाल ले वब से हमने के ग्लास ले वब से वो लेके हमने देख बा ढेर कोई रमासे कर लाते हैं रमासे करके जाके रिसिकले लग दे दिया तो वो फिर से सक बूटे बनाए कि कुछ कौन सी बनाए तो बन के
1: रिसिकले कि जैसे प्लास्टिक वे की बात हो रहा वो लोग लेकर के मेप बनावे लग जा
0: हाँ
1: कर से मेप तो आज की चर्चा इस प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए हम जारी रखेंगे फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं

0: इस प्रोग्राम में आप सबका दोबारा स्वागत हम करते हैं और आज का हमारा विषय है सर्कुलर इकोनॉमी और पर्यावरण मंत्रालय से आई हुई हैं श्रीमती सुदेवी सोब्रन जी। तो अभी हमने बताई जा कि ये सर्कुलर इकोनॉमी जो है काहे जरूरी बा हमने के और मतलब का है और रिसाइकलिंग से आगे कौन ची चाहे करे के एट मतलब आठ गो प्रोस्पेक्ट पर बताई जा। तो अब हम खुजब जाने के सुदेवी जी देखिला जा कि मोरिस में रोज बहुत वेस्ट मटेरियल्स पुबेल में डालीला जा और बहुत बहुत कुछ जैसे जरूरी होगल बा हमने के मोरिस देश में ई और जैसे इंटरनेशनल में भी ये सर्कुलर इकोनॉमी की बात चला। तो सरकार देने से सर्कुलर इकोनॉमी के बढ़ावा खातिर कौन सी पॉलिसी कौन मतलब कौन कौन कदम अपनावा था कौन कौन चीज पर
1: जैसे बोलना है एगो चीज़ होल बा इंटरनेशनल में बहुत

0: तो मंगलवाती तो वो लोग जैसे बोल रही प्रीवियसली कि चाहे ला सब पे ही मैं अप्लीके करेगी सर्कुलर इकोनॉमी लीनियर इकोनॉमी तो भुला जा
1: बिल्कुल
0: भुला जाए चाहिए अब चाहे सर्कुलर इकोनॉमी बगल जाए के तो कुछ कर ली सर हमने एगो कौंसिलताशों करके गो रोड मैप बने ली सर ओके बोल जा सर सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप एंड एक्शन प्लान वो मोरिस के बने ले हैं सर कौंसिलते सब कोई के सब स्टेक होल्डर्स के कंसल्टे करके बनेली सा कौन प्रायोरिटी वह मोरिस
1: तभी प्रोजेक्ट में आल बा
0: हाँ प्रोजेक्ट में आल बाते वो डेवलप कर लेने सा एकर अगर जीरे हा 2023 à 2033
1: मतलब शुरू हो गल बा अगर 2023 से शुरू हो गल बा भी हो गल बा
0: हो गल बाते ओके जब बनेली सा हमने के नॉर्मल सब सब मिनिस्टर सब गवर्नमेंट के चला अप्रूवे करेंगे हर खापुआ अप्रूवे हो गल बातें गवर्नमेंट से और हमने अब इम्प्लीमेंटे करते हैं सर इम्प्लीमेंटे करते हैं सर नहीं मजे गो खापो करके इसने नहीं छोड़ ली सर हमने के इम्प्लीमेंटे बस कि देखा था बहुत इम्पोर्टेंट बातें इंटरनेशनल में इम्पोर्टेंट मोरिसो में इम्पोर्टेंट हमने तो छोटा आईलैंड सर सीट से सर तो हमने तो प्लीज अफेक्टेड हुई ला सर तो हमने बोली सर नहीं हमने के चला करे के कदम उठाए के
1: समाधान चाहे निकाले के
0: निकाले के ओके एम्पोटो में हमने के एम्बले में होते करे के तो इमें हई में कतो वे एक्शन हम मोरिस के रोड्रिगो के एक्शन में 30 एक्शन तो हमने मोरिस रोड्रिग दोनों के देख लें सर और हई जब हमने कंसल्टेशन कर ली सर वाइड कंसल्टेशन कर ली सर तो देख ली सर प्रायोरिटी सब चीज पगल तो नहीं जाप से जहाँ जस्ती वेस्ट फोजिया हुआ था हो सकते हुआ में कैसे हाउ निफ एवा डालप सर जब कर ली सर तो देख ली सर पहला प्रायोरिटी सेक्टर है एग्री फूड सेक्टर उमें देख ला सर हमने कि एग्रीकल्चर कैसे सर्कुलरिटी आनप सर ओकर में फूड वेस्ट जब फार्मर्स लोग जब देर देख बाले गेहूँ कर दे बेलाते कारों में छोड़ दे बेलाते सब बाजारों में छोड़ दे बेलान सर तो कैसे सर्कुलरिटी आनप सर देख बात कंस्ट्रक्शन एंड रियल स्टेट सेक्टर देशम प्रायोरिटी है यहाँ कंस्ट्रक्शन कैसे करप सर देख बा ढेर कोई हमने अपन बाची मोटूर के फिर से रिनोवे करत हुआ सर तो हाउ जन कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वे स्वाहा लैंडफिल वे में जाए स्वाद देख बा तो जाके फेंक दे सर बे लैंड पर पोल्यूशन करे लाते तो हे बगल देख ली सर देशम थ्वाजेम हा कंस्यूमर गुड हमने रोज के रोज जन जन सेविंग के ला सर सब चीज ओकर खाए के ले बकर इलेक्ट्रॉनिक ले बकर
1: डेली
0: यूज वो मैं देखा सर कैसे हमने सकब सर रिपेयर करके कैसे हमने रीयूज करके सेविंग करे है थ्वाजेम कैथ्रियम हा ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक है बगल देख बा गाड़ी हमने ढेर लुटो लुटो तो अब जितना कंजेशन हो रहा था जाए के काम करे तब वो बगल देखा थे सर कैसे माचे हमने सकब सर कॉस्ट शेयरिंग करे कैसे सकब सर बिस को मैं ले कैसे सकब सर जब जब हमने के लोते वो पुरान हो जाते तो कैसे सकब सर ओके रिसिकले करे अब नवा जो निकला पाते तो वो है इलेक्ट्रिक कार्स में एगो इलेक्ट्रिक बैटरीज है हो बैटरी हुआ कैसे निकाल के पास एगो नुवो क्वालिटी है कैसे निकाल के सकब से ओके फिर से इस्तेमाल करे और हाँ देनी है वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हम करते हैं सर कैसे रिसिक्लास बगल जाते हैं सर कैसे हम जमे सोटिंग करब सर हमने के
1: ट्रियाज
0: करे चाहे करे के ट्रियाज करे के फ्यूचर में देख पाते सब कोई के घरे फ्री बिन सिस्टम मिली तब हर फ्री बिन सिस्टम हमने सब रिसिक्लाब एक बगल डालब सर जन कंपोस्टे हो जन जन पत्ता फूल पत्ता हो वो एक बगल रही और एक में जन जन मजे जिप्सिल है अवसर रही तो हर कुछ करब सर एगो फैसिलिटी में डालब सर वो जाए तो संगे नहीं मिक्स हुई हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपोस्टमेंट में डालब सर तब वो में से लेके रिसिक्ले लोग जाके रिसिक्ले करे तो हई पाँच गो है जन बोल रही करते हैं सर हई पाँचों सेक्टर में हमने के चाहना हाउ निफ एवा अप्लीके करे के हमने के चाहना देखे कि हम इंडिविजुअल हैं हम एक फार्मर है हम एगो कंस्ट्रक्टर हैं आर्किटेक्ट
1: हैं जब बोला था हमने ये सब हमने पर लगे हम आम जनता पर
0: हमने पर
1: हमने शुरू चाहे करे
0: हमने के चाहना शुरू करके अब हई सेक्टर वाके कैसे ओके एक्सेलरेट करब सर तो हमने के गवर्नेंस है

हमने जब कथों में एक्शन और थॉन्ट एक्शन बाते तो हमने के पर हमने प्लेटफॉर्म दली सर आगे फूड में और वेस्ट में सैक प्लेटफॉर्म बाते वो लोग अपन अपन एक्शन देखा थों से कैसे इम्प्लीमेंट करने से हाँ जब पांच को देख लिया से तब लाहौर के स्टीयरिंग कमिटी है हाँ हमने पेस्ट चेयर कर लाते तब वो देखिए हाँ जब प्लेटफॉर्म चला

0: सकपस कि है सर्कुलर इकोनॉमी के हाँ अति करे हाँ निमन से चलावे है एगो गवर्नेंस दे जम ह अवेयरनेस अभी तो एगो अवेयरनेस करावत है सर सब कोई देखत हुआ आप समझत हुआ थोड़ा थोड़ा समझत हुआ कैसे करत हुआ आठ तो लोग के कोनो कैसे हो सब पूछे पूछे पस कि हमने पॉम्फले निकाल अब सर अथी निकाल सर जो है बगल एक पॉलिसी ब्रीफ कर अब सर जो बत कब हमने अपन वेबसाइट पर डाल सर और लोग सब बस ले और हमने प्रोग्राम कर अब सर आउरी
1: और लेकुल में भी सके लेकुल देने से उन लोग के जागरूक करे
0: हाँ और चला के शेयर करे कि जैसे हाँ कंस्ट्रक्शन वेस अब तो हाँ चला रिसर्च करे कि कैसे सकबा ओके रेचिलीजे करे अब ओके फिर से ब्लॉक बनाए कि कौन सी करे और पैट बगतुल पर सोलर पैनल देख बता ढेर
1: हाँ.
0: सोलर पैनल आवा तक हमने के त्वा पर तो ओके जब ओकर लाइफ टाइम फिनिश हो जाए तो कैसे ओके रिसाइकल कर कैसे ओके निकलबा रिसर्च हुआ और इनोवेशन बहुत अच्छा बात है और जब अब है सब जब कर दिली सा अब बना दिली सा रे सेकेंडरी मटेरियल तब कैसे इस्तेमाल करब सा देर कोई बोली आयो एगो एगो एगो बड़ी ऐप होता हूँ एग्जाम बात है पालेट देखा बहुत पालेट है और पालेट से जो जोली जोली मेप बन जलाते लिली बन जलाते हो करब तो सकब सेवी करे इतना ले जोली रह लाते तो गाँच नहीं काटत हो तो इसलिए देखब तो इनोवेशन है जब तू हमने बिजनेस के ओके सपोर्ट दे चाहिए तो मैं है सब रिसिकले करके कैसे सेवी करियन सर और जब वो लोग के एगो आउटलेट रही आदमी लोग बोलियन सर हाँ पापे ना ये पाले तुए कि हाँ बाकी रसोली बात तो हम कि नब नहीं बोलियन सर आइयो हम के चाहे ला टेकुए कि नहीं कि कौन सी कि नहीं के तो ऐसे है तो हमने के क्रॉस कटिंग है
1: अच्छा ये सब करे के एगो कैसे अवेयरनेस जागरूकता चाहे अपना के बतावे के ऐसे जैसे मीडिया की तरफ से एजुकेशन तो ये सब मतलब जैसे एगो चीज बनाए की आज बनावा कितना दिन रही से पा 10 साल तब उसके बाद से कब जब फेंके अगर एकदम से एक प्रयोग में लावल गलबा
0: हाँ हाई पर एगो लालवा बना था तक मजे जब एगो एगो एगो फौजिश मजे एक हम एम्पोती करते हैं फिजी दिया तो लालवा लालवा डाले चाहिए कि तू नहीं सकबा आने नेपोत कोनो पे से आनबा तो हमने आँख माजे दो दिन में टूट जाए फेंक देवा नहीं ओकर गाँची चाहला देखी और वो लोग के चाह एगो लालवा डाला था कि जब गाँची बातें टूट गल फिर से लेला और ओकर पीएसओ पीएस जब पीएस नहीं रह लाते तो कैसे बनेबा तो वो लोग पर हमने बोला थे सर कि प्रोड्यूसर लोग जो एम्पोतिया करते हैं पोते करते हैं सर वो लोग के चाहे ला पीएस आने के जब मैं रिपारे सके हुई तो ऐसे तो कर लाइफ पहले के देख पाते हमार लगे एगो सोनी के टेलीविजन हल की पहले के निमक निमन मक वो तो 20-30 बरिस ले चल जात लग अभी देख पाते उसे नहीं तो उसन वो कालिते के इलेक्ट्रोमिनाशे चाहे लाने के
1: और जैसे बोला इलेक्ट्रॉनिक हुए के चीज़ की बनाए की जिन्हें सकी हुए बनावे तो ओकर में से पेशवा निकाल के दूसरा चीज़ सकब करे
0: हाँ सकब बस की ढेर चीज मेटल रह लाते पापा सोना वो रह लाते जब कंप्यूटर में बोलना था तो जिफिल वो निकाल के तब रिसिकले करके सकब से भी करे
1: अच्छा मान ना कोई आम आदमी जैसे हमने के ऐसा आइडियाज बा मिनिस्टर वगैरह जाकर के अपने पोता से सके ना करे शेयर करे
0: हाई एजुकेशन हुआ हो खाली बोली से निकाले के हो चाहे एगो नॉलेज चाहे लाते एगो नॉलेज तो कैसे करते हैं सर देखा हमने के एक्शन में बातें हमने के चाहे ला टिबेट लेकोल से जो MIT दीपा वो लोग सब काम करते हैं वो लोग के बतलावे के हई नुभूतिया हुआ था कैसे सक डिसमांटल करे ट्रेनिंग मौजूद बनी
1: जमें
0: सब कोई जानी दे कल तो हर एगो इलेक्ट्रॉनिक एगो इलेक्ट्रिक का बात है उन वो होते आदमी लोग हाथ नहीं डाले खोजे लाते तो हमने के जन जनता बातें हमने के जन लड़का लोग बातें वो लोग के बोल दे वापस ऐसे सब बने ऐसे रिपारे करके तो लोग रिपारे करके तो दे दिए सब महंगा नहीं रही तब वो लोग के नॉलेज चाहला जाने के वो खातिर ट्रेनिंग चाहला दे के और वो लोग के जाने खातिर वो लोग के प्रोफेसर के चाहला जाने के तो हमने के पढ़ा ताते चारों बगल से देखे कि के सकी दूसर पे में करत हूँ सर तब हम नॉलेज वापस से करके

0: वे जैसे देखिला जा निमन निमन चीज पिखल जाला तो आपके तरफ से कौन कौन संदेश अकबर उलो के देवी की ने फेंके के
1: हाय संदेश देवी के आगे हम एक चीज बोलब कि हमार रोड मैप में गोल बाते कौन कौन टारगेट जाना जाएंगे
0: बोला
1: हाँ कर टारगेट जाने हमने के चाहेला जो जो रिसाइक्लेंस बाते अभी तक खाली चिगितुए 4% 5% बाते ओके 50% रिसाइक्लेंस पर आने के हमने के जो वेस्ट बाते जो 500,000 टन अभी प्रे बोली जो जाता लैंडफिल ओकर में 70% चला रिड्यूस कर दे के वो लैंडफिल के सीमा नहीं देखा ये बगल निकाल के रिसिकले ओके रियूज कर दे ओके जिमिनिय कर दे नया थी कर आर हमने के रिसाइकलिंग रेट बातें हमने के फूड वेस्ट बातें जन फूड वेस्ट जन कारों में रह लाते घर में रह लाते ओहो चला 50% पर जिमिनिय करे के तो हर जब करब से तो हमने ग्रीन जॉब्स क्रिए करब से तो हमने के चला ग्रीन जॉब्स वो क्रिए करके जब मैं उगमोते हो जाए हमने सर्कुलर इकोनॉमी बगल जब से
0: और सरकार दिनी से वो सोलर पैनल भी देवल जाता ताकि वो लोग के इलेक्ट्रिसिटी मतलब कम पड़ जाए
1: हाँ
0: ऐसे बोला जला कि इलेक्ट्रिक बल्ब भी वो सेवी करे के मतलब न कि जो अभी लोग के कुरान को जो बिजली जैसी होला
1: हाँ।
0: चाहे लेड ये सब ऐसे निको चीज चाहे से अभी करेंगे
1: हाँ, हमने के लेने ऐसी वो एक रिसोर्स है देख बा हमने के तक हम हाँ। हुआ था उतना बाकी कैप्चर नहीं करते हैं सा तो कौन सी हुआ था ते गवर्नमेंट देवा था ते इंसेंटिव उनको डिक्लेयर नहीं कि 75,000 रुपये लेगो जाना सकी मांगे जब इंस्टॉले करी तो है सकियन से सब तब कौन सी कबा हम हमने लेने ऐसी सोलर सेवी करके हमने लेने ऐसी अपन पूजा करते हैं सामने कि नहीं पड़ता जी कि आतान करे के हैवी ऑयल आयल तब हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाओ अब से तब से भी कर अब से हाई बातें एगो एगो दूसर बातें रेन वाटर हार्वेस्टिंग जानला क्लाइमेट चेंज से कौन से हो लाते कि हमने के सूखा हो जालाते ड्राउट जैसे बोला सा तो कैसे कर अब से हमने प्रमोट कर सा रेन वाटर हार्वेस्टर्स तो हमने मांग कर अब से सब कोई से कि जहाँ अपन घरे जब देख जो डालो बातें अथी बातें वहाँ पर एक रेन वाटर हार्वेस्टर डाल दे तो हो रेन वाटर हार्वेस्टर वहाँ कौन कर बह कर पानी वहाँ सेवी कर बह धोए हुए के लोते धो दे बह अंगना उंगना धो दे बह साली पहुँच दे बह और कौन सी कौन हम नेतवाई करके सब अपन टॉयलेट वो फ्लश करे
0: हो देख बह
1: तब पानी हम जन एक रिसोर्स है ओके
0: जब अभी कुछ दिन पहले हमने के बताया कि रोड मैप जो एक्शन प्लान 2023 से 2033 ले प्लान बते तो अभी हमने 2026 में है सा अभी शुरू हो गल बा इस ये जो
1: इम्प्लीमेंटेशन
0: तो कैसे ने स्टैटिस्टिक कैसे लोकल अभी कहाँ ले आलबा
1: है इनिशिएट कर लें सा और जो एक्शन है वो पॉलिसी एक्शन है सेम सेम एक्शन है एक वो एक्शन में सब दो तीन चार गो जाफे करे तो हमने शुरू कर लें सर हमने के मौसम बोली हमने के रोड मैप ईयू बगल से हमने के सहायता मिल रहा डेवलप करे के अब एम्प्लीमेंटे करे के वो ईयू बगल से एम्प्लीमेंटे करते हैं सर हमने के 3.5 मिलियन यूरो मिलल बाटे और ये कौन बगल कॉन्सेंट्रे होता है कंस्ट्रक्शन बगल और हमने एगो सर्कुलर इकोनॉमी बिल एगो लालवा बनाम से सर्कुलर इकोनॉमी में जो ढाई सैंक सीखती है सब चीज देखिए जो अगर 7 और सब वो लालवा बनाओ से प्लीज हमने ओकर कोते कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट देखब से कोते लेजिकेशन एगो सर्कुलर हबो एगो बात है उस सर्कुलर हब कौन सा वो सेक्टर प्राइवेट बगल से हाँ एगो सर्कुलर हब है जो आदमी लोग के जिसों कोते कंस्ट्रक्शन और सिटे कॉन्ट्रैक्टर लोग के लेके और लोग के कैपेसिटी और लोग के ट्रेनिंग दे तब बोली कैसे सेवी करे के कौन सी करे के कैसे इस्तेमाल में आने के कैसे सस्टेनेबल बिल्डिंग कर कैसे शेयरिंग कर उबल काम करते हैं हाई एगो है एगो लास्ट

0: Donc, deuxième assistance, on a British Council, bagatse milal bate. British Council ou TVET, ça veut dire Technical, Vocational and Education and Training School, ok? Sange kam karte hain sa, kon chikarab sa, e, boli kata hume action bate. Sab action mein ta,
1: bahut samay li.
0: Ta hamne commence kar le hain sa, efficient waste management of end of life. Jab ego lutu, end of life ho jaye ego vehicle, okar waste battery, okar waste tires. Kaise sakab sa hamne apan leka log ke training de wab sa, kaise o log sakyan sa recycle kare, jab lutu puran ho jaye, okar battery, okar la roue, ta ome training de wab sa. Troisième assistance John Miller Baté ou United Nations bagel c'est UNEP GF United Nations Environment Programme avec Global Environment Facility ou hamni ke ego stratégie banawata food waste bagel c'est hay kam shuru hogal baté food waste food loss kaise hamni food loss and kamti kar sa o me banawate sa aur pok me to bagel se hamni ke assistance milata African Development Bank bagel se ta dik bata हमने शुरू होकर बातें हाँ तब अभी फिर रोड मैप वार हल ना तब पर पैसा देखे के तब प्रपोजल बनाई ली सा तब अब मिला ताते
1: आर काम हो गया था
0: हो गया ताते आर आवरी काम कर अब सा आवरी आर प्लेटफॉर्म बोली ना कुमार स्पोम में सब सारे प्लेटफॉर्म बातें लग रही किल्चे कंस्ट्रक्शन वेस्ट तो सा तो वो लोगों अपन बगल से अपन एक्शन देखा था सा आर काम करा था सा
1: और हमने जन जैसे मोरिस की बात जब होला तो हमने सब आम जनता की आदत होला कि जैसे लुगा इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक ये सब वो लोग के कैसे बोला जा कि बदले के ऐसे ये सब जब से एजुकेशन अवेयरनेस परी ये सब तो आज से मानना कुछ बोले के चाहे ना उलो के कैसे अपन जो आदत उके चाहे थी सोचे करे के बदले के
0: हाँ उलो के आदत चाहे ना बदले के बस कि हमने करा थे सा अभी एगो पर से निकाल सर्कुलर इकोनॉमी पर कर ले सा उलो के अभी तो थोड़ा कुन उलो के नॉलेज हो गल बाते सेंसिटाइज कर ले सा आउडी कर सा तो उलो के बोला थे सा उलो के जैसे हमने एक्सप्लेन कर ली सा हम निफ एवा उलो के इस्तेमाल में डाल दिया सा तो नॉर्मल हमने सोसांजिस पूसा डाइवर्शन हो जाए हमने के वेस्ट डाइवर्शन फ्रॉम लैंडफिल
1: तो जी रिपेयर रीयूज को जो दरअसल कहाँ तक सर्कुलर इकोनॉमी में मतलब साबित बा जो जो रीयूज रिपेयर अभी जो इस अब उकर आदत मतलब हमारी जो रिपेयर और रीयूज की पुरानी आदत एक्चुअली सर्कुलर इकोनॉमी में होता
0: नहीं नहीं अभी बात है बहुत थोड़ा जैसे एक बार रीयूज फूड बगल से गो एगो एगो एगो एसोसिएशन बा फूड वेस्ट वो करा था फूड वेस्ट फूड होटल में से लेके तब जाला बहुत गरीब में हाई बातें आर और बातें जो लुका लेवल से हमने ले पासे में
1: आगे
0: ऑर्गेनाइज कर ले सर एगो लाफोर एंटी गास्पियाज बोल जलाते तो वहाँ पर आदमी लोग के बोले सर आना से सब चीज में हमने रजिस्ट्रिय कर अब से एगो एगो एनजीओ है वो रजिस्ट्रिय कर ले रहा और सब प्राचिक जो रहा एक्सपोजे कर ले सर बोल रहे हैं सर कैसे रिसिकले कैसे एक एक एगो जन स्टैंड रहा देख ला था लाबिया के बूते जब फूट कर रहा था कौन है लाहौल लागुल फूट चलाते था और काट के और गोबले बना के बेचा था थे हाउ होल्ड रहा था कोते कंपोस्टिंग देख बात है कंपोस्ट बना हुआ था सर हाउ जन पालेट वो देख बा पैलेट आठ कौन सुंदर आठ हो जब पैलेट बनाए ले रहा तो देख बात जब बेचावत लगता सब एक थोड़े घंटा में बेचा कर हल सब चीज तो देख बस सब एक्सपोजिशन सब करब सा था आदमी लोग के प्लीज जानकारी रही
1: लुगाम भी जैसे बोल रहे सके
0: लुगाओ के हाँ लुगा के हमने ढेर कोई हमने जब हमने के तो सकबा किने तो हमने मांग करते थे आदमी लोग के तब तो हर ढेर लुगाओ हो गल बाती जाके बांट आदमी लोग बात ढेर आदमी लोग बात जो नहीं सकेला किने तो लोग के दे दे बात खुशी हो जाती खाइवे के थोड़ा तो घरे पकैले रब जस्ती बाते तो देखबा एगो गरीब आदमी गाँव में तो बोलबा जी कि ले जा शादी में रहे

0: आज की चर्चा से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सर्कुलर इकोनॉमी सिर्फ रिसाइकलिंग का नाम नहीं है, ये एक पूरी सोच और सिस्टम में बदलाव है। कम वेस्ट जनरेट करना, प्रोडक्ट्स को ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करना, रिपेयर और रीयूज को बढ़ावा देना और रिसोर्सेज को इकोनॉमी में दोबारा सर्कुलेट करना। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ एनवायरनमेंट का इशू तो नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक रेजिलियंस, टूरिज्म, रिसोर्स सिक्योरिटी और फ्यूचर जनरेशंस का भी सवाल उठता है। तो सुदेवी जी, वैसे अभी कुछ दिन पहले आप बोला लुका जी सब हमने सकब सा रीयूज करे कैसे, तो एगो श्रोता के मांग है कि सकब ढेर कपड़ा बार लुका बाओ कर हिया, वो कहाँ सकी जाए दे हुए या कोनो जगह बा जी
1: सब एनजीओ लोग काम करत हों से जो लुका के है। एगो बा एंजेल, एंजेल वो एगो एनजीओ है, वो तोहर लुका ले, तोहर साक ले, तोहर लीप ले,
0: कोनो चीज मुझे
1: लेके वो जाके गरीब में जाके पहुंचा कर दे। और एगो दूसर है वो है गुड शॉप, गुड शॉप वो ले वेला लुका ओके थोड़ा के पाके करके ओके अमेलोरे कर

0: That's a key bit you did. I go to Stadam, a good shopper. Haita luga ar kapra ar sulie uha. Ego ha mafta, mafta, jaise janela humni ministry me papier dher sevi ke lasa. The papier dher sevi ke lasa ta. The papier dher sevi ke lasa ta okay, humni ke chala recycle kareke. Ta ego NGO ha mafta, mafta, u apan papier recycle karke. Le vela recycle karike ta different NGO ha ego lalis NGO jan ha o ha hum website minister me ta o sakba sa jaye ar dekhe
1: hamar dekhe me Sudevi ji aur ek program sakab ja kare matlab e jo ne ko part 1 sakab sa kare par bahut chij bab e vishay me bataye ki ta ant me humni ke kon chi kon sandesh diba
0: हमार है स्ट्रॉन्ग संदेश है सब कोई के चला हम नेफ ए अप्लीके करे के हमने के कचरा के ओके सोना में बनाए के ओके धन में बनाए के
1: अच्छा।
0: जब बना दे अवसर हमने के फ्यूचर वो सर्क्यूलर हो जाए है हमार हमार हमार मांग है सब कोई से कि नेफ ए चाहना ए चीज से करके हम एक्सप्लीके कर ली नहीं मन से तो एच लीज से कर बस हमने के मटेरियल वेस्ट नहीं हुई
1: तो इस रोचक बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं फिर मिलेंगे नमस्कार
0: नमस्कार

0: नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूँ पूनम और आप सुन रहे हैं RM3 रेडियो मनोरंजन। 4 बज गए हैं, कोई अभी काम में बिजी है, कोई घर लौटने की तैयारी में है और कोई बस थोड़ी देर आराम से रेडियो सुनना चाहता है। तो अगले एक घंटे 90s के प्यार भरे गीत होंगे और कुछ बातें सीधे दिल से। चलिए शुरू करते हैं दिल से।
1: सुनते हैं कार्यक्रम पीयूष धारा डॉक्टर शांति मुहाबिर के साथ।
2: प्रिय श्रोता भाई बहनों, पीयूष धारा कार्यक्रम में मैं आप सभी का सादर अभिवादन और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम का शुभारंभ आइए हम एक गीत से करते हैं।

श्रोताओ, माता अहिल्या से आशीष पाकर श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर मिथिला की यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जब महाराज जनक को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के आने की जानकारी दी जाती है, तब वे अत्यंत ही विनयपूर्वक अपने पुरोहित और ऋत्विजों के साथ विश्वामित्र जी के स्वागत और सेवा के लिए उपस्थित होते हैं। श्रोताओ, महाराज जनक सांसारिकता से विरक्त हो चुके थे। वे राजपाट अवश्य संभालते थे, परंतु उससे पूरी तरह अनासक्त थे। मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी उन्हें शरीर से कोई मोह न था। जनक जी विदेह कहलाते थे और मुक्ति की इच्छा से वे सदैव प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। 5 महायज्ञों को संपन्न करने में महाराज जनक अपना धर्म समझते थे। यज्ञ हवन, स्वाध्याय, शास्त्रों का पठन पाठन, सत्संग, प्रातः सायं संध्या वंदन, बड़ों और अतिथि की सेवा में उनका जीवन व्यतीत होता था। मिथिलावासी प्रतिदिन सुबह शाम अग्निहोत्र किया करते थे। मिथिला में बड़े बड़े महायज्ञों का अनुष्ठान किया जाता था। उपनिषदों पर आधारित शास्त्रार्थ किए जाते थे। इन यज्ञों और शास्त्रार्थों में ऋषि मुनि, साधु संत आदि महात्मा अतिथि रूप में पधारते थे। यज्ञों की पूर्णाहुति के पश्चात महाराज जनक अपने अतिथियों को उपयुक्त दान देकर और उनका सेवा सत्कार करके उन्हें तृप्त करते थे। राजा जनक शास्त्र सम्मत कार्यों को सिद्ध करने में ही विश्वास रखते थे। श्रोताओ, शास्त्रों के प्रतिकूल जाना वे पाप समझते थे। श्रोता भाई बहनों, साधु संतों ऋषि मुनियों की सेवा करना, अतिथि

0: राज्य कहलाता है। अतिथि का अर्थ समझाते हुए मनुजी महाराज लिखते हैं कि एक रात्रम तो निवसन्न तिथिर ब्राह्मणः स्मृतः अनित्यम ही स्थितो यस्मा तस्मा द तिथि रुच्यते। इस श्लोक के माध्यम से महान नीति शास्त्री मनुजी महाराज कहते हैं कि जिसके आने की कोई नियत तिथि न हो और जिसकी स्थिति भी निश्चित न हो वह अतिथि कहलाता है, अर्थात जिसका आना अनिश्चित होता है वही अतिथि कहलाता है। ऐसे विद्वान व्यक्ति की सेवा करना, उसे बैठने के लिए आसन देना, सोने के लिए स्थान देना, उससे मीठी वाणी बोलकर उसका सत्कार करना, उसे जल पिलाकर भोजन खिलाकर प्रसन्न करना और उसके चरणों में बैठकर उससे ज्ञान प्राप्त करना सभ्य मनुष्य का कर्तव्य होता है। सभ्य मनुष्य घर में आए हुए अतिथि को कभी लौटाता नहीं है। सभ्य व्यक्ति अतिथि सेवा को श्रेष्ठ कर्म मानता है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना, कोई इंसान जिंदगी में आता है और धीरे धीरे इतना खास हो जाता है कि उसकी छोटी सी बात भी याद रह जाती है। प्यार शायद यही है, बड़ी बड़ी बातें नहीं, बस छोटे छोटे पल जो सालों बाद भी चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं।

इस समय बहुत से लोग काम खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहे होंगे और दिल में बस यही होगा जल्दी से अपनों के पास पहुंच जाए। तो आराम से जाइए, घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है, तो उस एहसास को इंजॉय कीजिए और रास्ते में 90s के गीत हमारे साथ सुनते रहिए। RM3 रेडियो मनोरंजन पर, और मैं हूँ आपके साथ।

इस समय किचन में शाम के खाने की तैयारी शुरू हो गई है, तो हाथ अपना काम करते रहिए और कान हमारी तरफ रखिए। खाना बनाते बनाते थोड़ा गुनगुना भी लीजिए, क्या पता आपके हाथों के स्वाद में 90s के रोमांस का थोड़ा सा तड़का भी लग जाए। इंजॉय कीजिए अपना ही।

दोस्तों देखते देखते 5 कब बज गए पता ही नहीं चला, और दिल से मिले दिल हमारा ये साथ आज का सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है 90s के इन गीतों ने किसी प्यारी सी याद को फिर से जगा दिया होगा। अपने लोगों के करीब रहिए, उनकी केयर कीजिए और प्यार को छोटा मत समझिए। मैं हूँ आपके साथ पूनम, फिर मिलेंगे RM3 पे। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।

0: 94.6, 98.2। आप सुन रहे हैं ORM 3।
1: इस समय मॉरीशस में शाम के 5 बज रहे हैं।
2: राम रसधारा, रसधारा
1: ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम श्री सरस्वत्यै नमः राम रसधारा के सभी श्रोता भाई बहनों को भाई संजय की ओर से जय सिया राम जय जय हनुमान आप सबों को रेडियो मनोरंजन की लाइन पर हार्दिक अभिवादन है हार्दिक स्वागत है स्टूडियो में उपस्थित बहन माला बहन शिवानी बहन सीता और बहन सुनीता जी को जय सिया राम
3: जय सिया राम
1: आज के इस रामायण सत्संग की शुरुआत करते हैं श्री राम जी की स्तुति और श्री हनुमान जी की स्तुति के साथ
3: जय जय सियाराम

0: रसधारा
1: रेडियो मनोरंजन की लहरों पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राम रसधारा। देवी और सज्जनों, आज से हम श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। श्रवण मास हम सभी सनातनियों के लिए अति पवित्र माना जाता है और जिसमें शिव जी की भव्य रूप से पूजा अर्चना की जाती है, रुद्र अभिषेक किया जाता है और साथ ही साथ इस पूरे श्रावण मास के अंतर्गत रामचरित मानस का पाठ भी किया जाता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में लिखते हैं, रामचरित मानस में प्रमुख वक्ता शिव जी होते हैं और प्रमुख श्रोता माता पार्वती। गोस्वामी जी के शब्दों में, रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमयु शिवा मन भाषा। रामचरितमानस की कथा को शिवजी ने अपने मन में संजोए रखा था और उचित समय मिलने पर उन्होंने ये कथा माता पार्वती जी को सुनाई। शिवजी की जटा से एक गंगा बहती है और वो है भगीरथी पतित पावनी गंगा, और शिवजी के हृदय से बहती है एक दूसरी धारा, राम रस धारा, और स्वयं अति हर्षित होकर शिवजी ने इस धारा को नाम दिया रामचरितमानस। ताते रामचरितमानस बर धरहु नाम हिय हेरी हर्षि हर। जय सिया राम, हर हर महादेव।
2: जय सिया राम, हर हर महादेव।

0: रसधारा।
1: जय सिया राम, हर हर महादेव। देवी और सज्जनों, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के उत्तर कांड में शिव जी के रुद्र रूप के सम्मान में रुद्राष्टकम स्तोत्रम की रचना की, जिसे हर शिव अभिषेक के बीच गाया जाता है। आज इसी रुद्राष्टकम के 8 श्लोकों का गायन अध्ययन करेंगे राम रसधारा प्रोग्राम के अंतर्गत। शुरुआत करते हैं उत्तरकांड के दोहे 160 का से। जय सियाराम, हर हर महादेव।
2: जय सियाराम, हर हर महादेव।

0: गौरी। जय सियाराम हर हर महादेव।
1: राम रसधारा, रसधारा
2: छंद के रूप में रचित इस रुद्राक्ष रुद्राष्टकम स्तोत्रम के जरिए लोमश ऋषि शिवजी से अपने शिष्य के लिए क्षमा याचना करते हैं। सनातन धर्म में गुरु शिष्य का नाता अति पवित्र और महत्वपूर्ण होता है, जिस पर शिष्य का पूरा भविष्य टीका रहता है। इस स्तोत्रम में गुरु लोमश अपने इष्ट देव शिवजी से निवेदन करते हैं कि वे उनके शिष्य को उनके उन्हीं के अपमान के लिए क्षमा कर दें। जय सियाराम हर हर महादेव।
0: जय सियाराम हर हर महादेव।

जय सिया राम हर हर महादेव। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाश वासम भजेहम। हे मोक्ष स्वरूप विभुम व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। जिस स्वरूप में स्थित गुणों से रहित अर्थात सतो रजो और तमो गुणों से परे हे शंभो, भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर आपको मैं भजता हूँ। दिगंबर शिवजी का एक दूसरा नाम है, जहाँ वे पूरे आकाश को एक वस्त्र के समान धारण करते हैं।

0: निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार अर्थात वो परम ब्रह्म जो निराकार होते हैं, जिसका कोई रूप नहीं होता, जिसका कोई आकार नहीं होता, वही शिव जी के स्वरूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। ओमकार के मूल जिसे ऋषि ओम कहकर पुकारते हैं वही शिव हैं। तुरिया, हम साधारण मानव मनुष्य हमें सिर्फ तीन स्टेज की अनुभूति होती हैं, जागृत अर्थात वेकिंग, सोए डीप स्लीप और स्वप्न ड्रीम स्टेट। लेकिन जो ऋषि महर्षि होते हैं वे अपने ध्यान में अपने मेडिटेशन में एक चौथी व्यवस्था में भी पहुंच पाते हैं जिसे तुरिया कहा जाता है, और जिस स्थिति में आप प्रभु से शिव जी से कनेक्ट कर पाते हैं। गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरीशम, हे कैलाशपति जो हमारे इंटेलेक्ट से भी परे हैं, जिसे हमारी इंद्रियां हमारे सेंसेस, आप महाकाल हैं अर्थात काल के स्वामी, शिव जी महाकाल भी हैं अति विकराल स्वरूप, तो शिव जी कृपालु भी हैं, ओल्ड मर्सीफुल, गुणों के धाम, संसार के परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जय सियाराम हर हर महादेव।
1: जय सियाराम हर हर महादेव।

0: जय सियाराम हर हर महादेव।
1: राम रसधारा रसधारा
2: तुषारादि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम स्फुरन मौलिकल्लोनी चारु गंगा ललत भाल बालेंदु कंठे भुजंगा जो हिमालय के समान गौरवान है जो सफेद रंग के हैं प्यू अनटच्ड तथा गंभीर हैं जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है जिनकी ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है उस महादेव को हम नमन करते हैं। जय सियाराम हर हर महादेव।
0: जय सियाराम हर हर महादेव। चलत कुंडलम रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्ना

0: जय सियाराम हर हर महादेव
1: चलत कुंडलम भूत सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगादेश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे होते हैं जब वे चल रहे होते हैं, सुंदर ब्रिकुति और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं,

0: उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को हम सब भजते हैं। जय सियाराम हर हर महादेव।
1: जय सियाराम हर हर महादेव। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम्भानुकोटि प्रकाशम त्रयाशु

0: जय सियाराम हर हर महादेव।
1: प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम मजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपानिं भजेहं भवानी पतिं भावगम्यम। प्रचंड अर्थात रुद्र स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार से शूलों दुखों को निमूल करने वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। हर हर महादेव। जय जय सियाराम।
0: हर हर महादेव। जय जय सियाराम।

0: हरी,
1: जय सियाराम, हर हर महादेव।
2: राम रसधारा, रसधारा
3: देवी और सज्जनों, रेडियो मनोरंजन की लहरों पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राम रसधारा। और आज के राम रसधारा में हम अध्ययन कर रहे हैं, हम गायन कर रहे हैं उत्तरकांड में रुद्राष्टकम। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जना दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोह पहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद धन, मोह के रहने मोह को हरने वाले, मन को भय से दूर करने वाले, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसीद प्रसीद प्रभो मम थारी। जय सियाराम, हर हर महादेव।
1: जय सियाराम, हर हर महादेव।

0: सम जय सिया राम हर हर महादेव
1: रामरसधारा नयावत उमानात पादार विंदम भजंती हलोके परेवान रानम नतावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतां दिवासम। जब तक पार्वती जी के पति अर्थात शंभो आपके चरण कमलों का मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इस लोक और ना ही परलोक में सुख शांति की अनुभूति होती है और उनके तापों का नाश नहीं।

0: अतः हे समस्त जीवों के अंदर, क्योंकि शिव जी पशुपतिनाथ कहलाते हैं, हे शंभो सब जीवों में वास करने वाले, निवास करने वाले हे प्रभु, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जय सियाराम हर हर महादेव,
1: जय सियाराम हर हर महादेव।

0: जय सियाराम हर हर महादेव।
1: भक्त कहते हैं मैं न तो योग जानता हूं और तप, न तप जानता हूं न जप जानता हूं न पूजा आती है हमें। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपका ही नमस्कार करता हूं, मुझे सिर्फ आपके चरणों में शीश नवाना आता है, जिसे कहते हैं प्रपत्ति, कंप्लीट सरेंडर। हे प्रभो, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझे दुखी की से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपका नमस्कार करता हूँ। जय सियाराम, जय जय हनुमान।
0: जय सियाराम, जय जय हनुमान। रुद्राष्टक

0: ते। जय सिया राम हर हर महादेव।
1: भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्ट शंकर जी की तुष्टि उनकी प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जैसे हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत में आपको बताया था कि अपने शिष्य को क्षमा प्रदान करने के लिए ऋषि शिव जी से क्षमा याचना करते हैं इस स्तोत्रम के जरिए। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। जय सिया राम हर हर महादेव।
0: जय सिया राम हर हर महादेव।

0: राम रसधारा के अंतर्गत हम आपको सुना रहे थे उत्तरकांड, रामचरितमानस के उत्तरकांड के छंद रुद्राष्टकम, जहां पर ऋषि ने भगवान शिव जी के सम्मान में 8 श्लोकों का ये रुद्राष्टकम की रचना की। और रुद्राष्टकम के अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहे से समाप्ति की। सुनते हैं दोहा, जय सियाराम हर हर महादेव।
1: जय सियाराम हर हर महादेव।

0: रसधारा।
1: देवी और सजनों, इसी के साथ ही आज का हमारा राम रसधारा ये सत्संग यहाँ पर समाप्त होने को चला। चलते चलते स्टूडियो में उपस्थित चार बहनों को, माला जी को, शिवानी जी को, सीता जी को, सुनीता जी को कोटि कोटि धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। देवी और सजनों, अगले सप्ताह दो महान पर्व हमारे सामने आएंगे। एक तो है नाग पंचमी और दूसरा है पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती, और उसके पश्चात गुरुवार को हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी श्री राम जी के दरबार में। अंत में समाप्ति मंत्र और शांति पाठ चार बहनों के साथ। जय सियाराम, जय जय हनुमान, हर हर महादेव।
2: जय सियाराम, जय हनुमान, हर हर महादेव।

0: 102.2 आप सुन रहे हैं RM3 हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। हमने इन दिनों देखा था कि धरोहर के जो अलग अलग रूप बा ओकर पर ध्यान दिले आवत है सा, और इमें देश के साथ साथ विदेश के धरोहर भी बा। कुछ दिन आगे मोन्यूमेंट पर्वत यात्रा लीजा जोन विश्व धरोहर बा उनकर पर बतिया लीजा, और काल कागज पत्थर पर बतिया लीजा। आज बतियाब जा कैसे हमने के जोन पहनावा बा, हमने के जोन गहना गुड़िया बा, ये सब धरोहर के एगो बहुत बड़ा बहुत ज़रूरी भाग है। हमने के बुज़ुर्ग लोग ये बात मनियन जा कि उ लोग के जोन बड़ा आदमी लोग बा उ लोग के छोड़ल लुगा उ लोग के छोड़ल जोन गहना बा उ एगो धरोहर है, और ओकर जोन मूल्य बा ओके नहीं सक बनापे, और ओके उ लोग बेचे के भी नहीं खुशी रहे लंजा। कहे कि एकर संगे एगो बहुत ही भावनात्मक इमोशनल जोन भावना है जोन संबंध है उ जुड़ल रहेला। हमने के पहनावा हमने के वेशभूषा और गहना के महत्व बहुत गहरा बा। हमने के जोन पहनावा है हमने के जोन गहना है अच्छा से देखबा त ई एगो जन समुदाय के ओकर सभ्यता और ओकर संस्कृति के पहचान है, और जब भी कोनो परंपरागत परब रहेला त देखबा कि ई सब जोन लुगा फटाबा ई जोन पुराना गहना गुड़िया बा ई फिर से पहनल जाला। छोटा लड़का से बड़ा आदमी तक देखबा त परंपरा के हिसाब से अपन पहनावा पहने लंस, और गहना भी एकर में शामिल है। लड़का लोग के छोटे से सिखावल जाला कि कैसे पहने ओढ़े के, और आगे के ज़माना में छोकरी लोग के सिखावल जात रहल कि हाथ में हमेशा चाहे चूड़ी रहे के और काला बिंदी लगावे के ताकि नज़र नहीं लगी। और फिर समय के साथ देखत है जा कि ये सब अब फैशन के रूप ले हुआ था। और जब शादी ब्याह के मामला रहेला तो सुहागन लोग के जोन वेशभूषा है उन लोग के जोन सिंगार है ओकर पर बहुत जोर देवल जाला, और ये सब सीख ये सब गहना और एकर पीछे जोन परंपरा जोन संस्कृति जोन सभ्यता के बात बा उ बड़ा आदमी लोग अपन लड़का लोग तक पहुँचे ले जालन जा। अब आज देखत है जा कि ये सब जोन मान्यता बा जोन विश्वास बा जोन परंपरा बा ओके विज्ञान और कला के एगो संगम मानल जाला। साज सज्जा और देह के अलग अलग अंग में जोन गहना पहनल जाला ओकर अलग अलग असर है, और ये प्रमाणित भी हो गल बा कि जब कान छेदे बा तो ओकर असर नाभि के नीचे के विकास के जस्ती अच्छा से होई देवेला। और हर एगो स्थान के अपन एगो विशेषता है, जैसे अब हम गहना के बात करब जा तो परंपरा के अनुसार शादी ब्याह में अलग गहना पहनल जाला, ऑफिस से बता अलग गहना पहनबा, और जब ऐसे ही हल्का फुल्का कोनो शॉपिंग पर जेबा तो ओकर मुताबिक हल्का फुल्का जेवर भी पहनल जाला। देश काल और समय के अनुसार वेशभूषा बदल ले जाला। भले ही 16 श्रृंगार के चर्चा बा हमने के शास्त्र में, फिर भी हमने के बुजुर्ग लोग इतना गरीबी में जियल हवन जा कि अपन जोन योग्यता रहल उ लोग के जोन सामर्थ्य रहल ओकर अनुसार उ लोग अपन पहनावा और वेशभूषा के जारी रखलन जा। आज चूड़ी और मंगलसूत्र के संगे संगे ताली और कितने मेकअप मेहंदी और हेयर स्टाइल हमने के शादी के जोन प्रथा बा ओकर से जुड़ गल बा। आगे के समय में जब हमने के दादी लोग के सुनबा तो देखबा कि

सब श्रृंगार उस समय में नहीं हुए के मुमकिन रहल, कहे कि जो संभरता रहल ओकर ही हिसाब से उ लोग के जीवन भी चलत रहल। और आज देखत है जाकि जोन कला बा, जोन सजावट बा, उ एगो निवेश भी मानल जाला। सोना के जोन गहना गुड़िया बा, ई में जितना निवेश करबा आगे के समय में उतने ही काम आई। हमने के बुजुर्ग लोग भी बोले लंचा कि आगे के समय में जैसे थोड़ा पैसा मिले तो ओकर से गहना किन के रख देव तरा लंचा, ताकि आगे के समय में आगे चल के जब कठिनाई हो तो यही सब आपके काम आए। तो ई रहल आज के कार्यक्रम, जोन हमने के पहनावा, वेशभूषा, गहना गुड़िया पर आधारित रहल। और देख लीजा कि कैसे गहना गुड़िया हमने के सभ्यता, हमने के संस्कृति से जुड़ल है और एकर संगे एगो बहुत ही भावनात्मक संबंध भी जुड़ल रहेला। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।

हुकूमत ने अधिकारियों के साथ मौके पर स्थिति का लिया जायजा। संबंधित लोगों को जल्द नोटिस भेजे जाएंगे। COP31 से पहले मॉरिशस ने अपनी तैयारियां तेज की। जलवायु परिवर्तन से निपटने और ग्रीन फंड्स तक बेहतर पहुंच के लिए छोटे टापू देशों के साथ साझा रुख बनाने की कोशिश। एबेन में सरकारी, निजी और गैर सरकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श शुरू। मॉरिशस के समुद्री अधिकारों के विस्तार की दिशा में अहम प्रगति। रोड्रिग्स के आसपास 147,000 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेकर देश के दावे पर संयुक्त राष्ट्र के संबंधित आयोग ने सिफारिशों को मंजूरी दी। आर्थिक, वैज्ञानिक और समुद्री संसाधनों के लिहाज से कदम अहम है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुलाई 2026 इतिहास के सबसे गर्म जुलाई महीनों में शामिल। 2024 के स्तर के बराबर रहा तापमान। दुनिया के कई हिस्सों में सूखा और जंगल की आग। समुद्र के बढ़ते तापमान ने चिंता बढ़ा दी है।

0: नमस्कार रादाब, अतिरिक्त 147,000 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र हमारी समुद्री क्षेत्र से जुड़ गया है, जिससे मॉरीशस की क्षमता और मजबूत बन सकती है। संयुक्त राष्ट्र के कॉन्टिनेंटल शेल्फ के सीमा आयोग ने पिछले 30 जुलाई को मॉरीशस पक्ष द्वारा पेश रोड्रिग से मुतालिक सुझाव पर सहमति जताई। आर्थिक, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय चुनौतियों के मद्देनजर ये हमारे देश के लिए एक अहम विकास है। क्लोदे जोफागा दिवादु करुणा लालू।
1: 2009 में रोड्रिग्स के पूर्व में कॉन्टिनेंटल शेल्फ के विस्तार से संबंधित मामला कॉन्टिनेंटल शेल्फ की सीमाओं पर संयुक्त राष्ट्र के आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
2: 17 ans qui nous paye travail l'aura dossier là. En mai 2009, et c'est le premier soumission qu'ils nous font auprès des Nations Unies, ce commission, pour une extension de territoire de nos sous-sols marins au-delà de 200 000 nautiques. Hein? Alors, ce travail-là, il a besoin d'évidence et géologique, géophysique, même géochimie, et toute l'océanographie pour démontrer vraiment si on a une extension de haut territoire.
1: उस समय संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने उपलब्ध वैज्ञानिक परिस्थितियों और प्रमाणों को अपर्याप्त माना था। 2020 में इस प्रस्ताव में संशोधन किया गया। मॉरीशस की टीम ने विदेशी विशेषज्ञों के साथ मिलकर नए नमूने और भूवैज्ञानिक तथा भूभौतिकीय प्रमाण जुटाए, क्योंकि रोड्रिग्स का मामला काफी विशेष है।
2: L'île Maurice même, les trouvent au Saguenay, le plateau mascarin. Alors ce plateau mascarin là, lui-même il y a un fond marin. Et l'IPM et nous, ils donnent nous ça l'évidence, ça étend ce territoire-là au-delà de notre IIZ, comment nous dire. Right? Alors, dans le cas de Rodrigue, ce formation géologique, il y a un peu différent. Il y a six, c'est qu'on appelle une anomalie bathymétrique, il y a un sous-sol élevé. Right? Alors, ce sous-sol élevé-là, il permet de nous, comme si je dirais, étendre ce territoire de Rodrigue-là au-delà de 200 000 nautiques.
1: 147,000 vers kilomètres. ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है मॉरीशस के लिए। ये क्षेत्र मुख्य रूप से नई संभावनाओं का द्वार खोलता है। यहाँ समुद्री संसाधनों, वैज्ञानिक अनुसंधान, ऊर्जा और ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में काफी संभावनाएं प्रदान करती हैं।
2: D'après les Nations Unies, sous la loi, si vous faites référence avec l'article 76 et aussi l'article 77 de la Constitution de l'océan, on appelle UN Clause, alors il donne nos droits. Et juridique, on appelle le sovereign right, pour explorer et aussi pour exploiter les ressources qu'ils trouvent dans le seabed et le subsoil. Alors ça comprend une espèce sédentaire qui trouve le fond marin et aussi ressources non vivantes telles que hydrocarbures s'il existe et aussi minéral qui est capable critical minéral comment dire qui trouve dans cette zone là.
1: अब अगला कदम इस नए समुद्री क्षेत्र के प्रबंधन और उपयोग के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना होगा।
0: मॉरीशस के विशेष आर्थिक क्षेत्र पर बेहतर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय तटरक्षकों को बहुत जल्द एक नया गश्ती जहाज मिलेगा। इस कश्ती के लिए भारतीय सरकार के लाइन ऑफ क्रेडिट से वित्तीय मदद मिल रही है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने अपनी मॉरीशस यात्रा पर कल पोर्ट लुम्बिनी नेशनल कोस्ट गार्ड के मुख्यालय का दौरा किया। डासा अपाला सोमी की रिपोर्ट पर गीता सुनारान का विवरण।
3: दौरे की शुरुआत भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन द्वारा तटरक्षक बल के निरीक्षण से हुई। इस निरीक्षण समारोह में पहली बार एक महिला ने परेड कमांडर की जिम्मेदारी संभाली। भारतीय नौसेना 1974 से मॉरीशस की एक महत्वपूर्ण साझेदार रही है, खासकर पुलिस और नेशनल कोस्ट गार्ड की क्षमता बढ़ाने में। इसके लिए प्रशिक्षण, समुद्री नक्शे तैयार करने में सहयोग और तकनीकी सहायता दी जाती है। इसी साझेदारी के तहत मॉरीशस को जल्द ही एक नया समुद्री गश्ती जहाज भी मिलेगा। नेशनल कोस्ट गार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर विश्वनाथ विरासोमी कहते हैं, बहुत जल्द एक बड़ा MOPV जहाज प्राप्त होगा। भारतीय सरकार द्वारा एक लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत टेंडर प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये गश्त लगाएगा। अवैध मछली मार और ड्रग तस्करी के खिलाफ संघर्ष में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। इस दौरे के तहत मॉरीशस को एक साइड स्कैन सुनो और नए अपडेट किए गए समुद्री नक्शे भी दिए गए।
4: I've been seeing with a lot of admiration the excellent work that the National Coast Guard.
3: भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन कहते हैं, मैं नेशनल कोस्ट गार्ड द्वारा मॉरिशस की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने, उसकी रक्षा करने और उसे बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करता हूं। भारतीय नौसेना मॉरिशस के कोस्ट गार्ड और पुलिस के साथ अपनी साझेदारी को आगे भी बहुत महत्व देती रहेगी। हम उनके साथ मिलकर काम करते रहेंगे ताकि हमारी आपसी सुरक्षा के साथ साथ मॉरिशस की सुरक्षा भी और मजबूत हो सके। इससे पहले भारतीय नौसेना के प्रमुख ने 2015 में मॉरिशस का दौरा किया था।
0: पॉइंट डिस्नी में आज अधिकारियों ने पब्लिक बीच तक जाने में पेश मसलों का जायजा लिया। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद के साथ पुलिस, एसएसयू के अफसर, बीच अथॉरिटी के प्रतिनिधि, जिला परिषद के सदस्य और गैर सरकारी संगठनों के मेंबरान शामिल थे। वहां यानी पॉइंट डिस्नी में समुद्र तट तक आम लोगों की पहुंच में आने वाली रुकावटों पर अब कार्रवाई की तैयारी शुरू की गई है और संबंधित लोगों को जल्दी नोटिस भी भेजा जाएगा। सगाउनु करुणा लालू।
1: पॉइंट डिस्नी की इस यात्रा के दौरान अधिकारियों ने समुद्र तट के किनारे कई तरह के बाधाओं की पहचान की। बैरियर, रस्सियां, बोर्ड, झाड़ियां। तथा लकड़ी और कंक्रीट से बने ढांचे जिनके कारण आम लोगों के लिए समुद्र तट तक जाने वाले कई रास्तों से गुजरना मुश्किल हो गया है। इस दौरे का उद्देश्य ये जांचना था कि क्या कुछ निर्माण समुद्र तट तक सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने वाली 5 जियोमीट्री की सीमा पर किया गया है। मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा,
5: comprend que quand vous êtes propriétaire d'un campement et non le building line, après le building line, vous avez l'endroit Bali, c'est le domaine public, même si vous êtes le Heli, vous êtes capable de servir pour un besoin pour vous, mais pas pour construction, pas pour une structure permanente, ni vous êtes l'endroit, mais un panneau qui dit que c'est privé. Le Ministry of Housing and Land, le District Council, pour servir les papiers, l'urban structure qui est clairement illégale, donne vous la chance d'y aller vous-même, et en dernier recours, nous pour servir la loi pour faire aller. Cela ne doit pas envoyer un message aux membres du public qui vous êtes pensé, comment dire, c'est Western maintenant, qui vous êtes capable de venir devant du monde, votre campement, camper, mettre de la tente, mettre de la musique. Ça aussi, vous pensez que c'est quelque chose qui nous besoin de montrer nous responsables, nous tous besoin de montrer nous responsables.
1: वही मौके पर मिले परिवारों ने भी अपनी चिंताएं सामने रखीं। उन्होंने खास तौर पर शोर शराबे, समुद्र तट पर छोड़े गए कचरे और कुछ लोगों के व्यवहार की शिकायत की, जो उनके अनुसार उनके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता है। आहित कोकेन ला प्लाज संगठन का कहना है कि इन चिंताओं के आधार पर भी जनता के समुद्र तट तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने के अधिकार से समझौता

0: पता नहीं किया जाना चाहिए।
1: La bonne information est cruciale. Enforcement aussi pour une très très important parce que voilà pour nous réussir faire ça que l'important important qu'il y a le respect à la fois des usagers et de man list holders et qui nous capable justement avance d'une logique en se disant ben c'est la terre l'état c'est un patrimoine commun ben nous guetter comment nous ca partage li dans le respect
0: ab un kabzadhariyon ko notice jari kiye jane ki umeed hain jinki sanrachnaen niyamon ke anurup nahi payi jati unhe apni sthiti niyamit karne या संबंधित बाधाओं को हटाने का अवसर दिया जाएगा।
2: अगले महीने तुर्की में कॉप 31 सम्मेलन लगाया जाएगा। मुर्शस अपनी औपचारिक राय तैयार करने के लिए तैयारी और बैठकें कर रहा है। इसी मकसद से देश ने पैसिफिक टापुओं के संचालकों से मुलाकात की। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए ग्रीन फंड से लाभ उठाने के लिए सब अपने विचारों को लेकर आपस में सहमति जताना चाहते हैं। 5 से 8 अक्टूबर के बीच फिजी और टूवालू में मोशन डेलीगेशन और छोटे टापू देशों के प्रतिनिधियों के बीच एक मुलाकात लगेगी। 8 सुबह एबेन में सार्वजनिक निजी क्षेत्रों के अलावा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के दरमियान राष्ट्रीय सलाह मशवरा किया गया। नौजवानों को अपनी बात कहने का मौका देना, खासतौर पर उनसे सीधा ताल्लुक रखने वाले फैसलों और प्रश्नों पर उन्हें अपनी राय देने का अवसर देना, ये नेशनल चिल्ड्रंस कमेटी का मकसद है जो चिल्ड्रंस एक्ट 2020 के तहत है। देश के चार कोनों से 15 से 17 साल की उम्र वाले नौजवानों को इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने की अपील की गई। वे अपने ख्याल पेश कर सकते हैं, अपने मन की बात कह सकते हैं, अपने जज्बे भी आम कर सकते हैं तथा कुछ फैसलों पर सवाल भी कर सकते हैं। वो अपना प्रस्ताव भी दे सकते हैं। कमेटी के सदस्यों का पहला कार्यकाल खत्म हो गया है। नए मेंबरानों के चुनाव से पहले आज एक समारोह लगाया गया। आना बेलवुलबिया, गीता सुनारान।
3: दो साल के कार्यकाल के दौरान नेशनल चिल्ड्रंस कमेटी के 15 युवा सदस्यों ने अपनी आवाज़ बुलंद की। साथ ही उन्होंने एक ऐसा अनुभव भी हासिल किया जो कई लोगों के लिए सीखने और आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण अवसर रहा। कमेटी की अध्यक्षा एमा सिसिल कहती हैं, हम मॉरिशन बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और साथ में युवा पीढ़ी का भी। इस कमेटी और अन्य युवाओं से हुई मुलाकात के बाद इस फ्रेमवर्क से हमें लगता है कि हमारे बाद और भी लोगों का आना सुनिश्चित है। नेशनल चिल्ड्रंस कमेटी चिल्ड्रंस एक्ट 2020 के तहत बनाई गई एक व्यवस्था है। ये मंच केवल युवाओं को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं देता बल्कि उन्हें उन मुद्दों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर भी देता है जो सीधे उनसे जुड़े हुए हैं। ये पहल बच्चों के अधिकारों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते में मान्यता प्राप्त एक बुनियादी अधिकार के अनुरूप भी है, यानी बच्चों को अपनी राय व्यक्त करने और उनसे जुड़े मामलों में उनकी बात सुने जाने का अधिकार। नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल की कोऑर्डिनेटर नूरी ताकन कहती हैं, बोर्ड में आकर वे अपनी समस्याएं बता सकते हैं ताकि उनकी बात सुनी जा सके और हम समाधान ढूंढ सके। वे खुद समाधान के लिए अपने प्रस्ताव दे सकते हैं। सरकार युवाओं की इस भागीदारी को और बढ़ावा देना चाहती है क्योंकि युवाओं को समाज में हो रहे बदलावों का केवल दर्शक ही नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें ऐसे सक्रिय भागीदार भी होना चाहिए जो इन बदलावों में योगदान दें और उनसे जुड़े फैसलों में अपनी भूमिका निभाएं। उप प्रधानमंत्री आगिया नावामागी कहती हैं, एक लीडर का अन्य लोगों से बेहतर होना जरूरी नहीं बल्कि उसे अन्य लोगों की मदद करना आना चाहिए। इस नई टीम की यही फिलोसफी होते हुए देखना चाहती हूँ। प्रश्न करने से नहीं डरना चाहिए या अपने विचार देने से भी नहीं डरना चाहिए। अन्य लोगों की बातों पर ध्यान देना भी सीखना चाहिए जो आपकी तरह नहीं सोचते। नेशनल चिल्ड्रंस कमेटी की नई संरचना सितंबर में घोषित की जाएगी। अगले सदस्यों के चुनाव के बाद नई टीम भी युवाओं की आवाज़ को आगे बढ़ाने और इस मंच को संवाद, भागीदारी और सक्रिय जुड़ाव का एक मजबूत मंच बनाने की जिम्मेदारी निभाएगी।
2: यूरोप में आज बहुत ही शदीद गर्मी है। फ्रांस, इटली और स्पेन में करीब 92 मिलियन लोग 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उच्च तापमान की वजह से प्रभावित हैं। जुलाई 2026 इतिहास के सबसे गर्म महीनों में शामिल हैं। चीन के पुराने प्रधानमंत्री जू रोंगजी की कल 97 साल की उम्र में निधन हो गया। चीन की आर्थिक प्रगति में उनका बड़ा योगदान

0: योगदान रहा है। उन्होंने ही 1990 के जमाने में चीन को विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा बनाया। बीमारी की वजह से विचल बसे वे 1998 से सन 2003 तक चीन के प्रधानमंत्री रहे हैं। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर एक प्रतिरक्षा समझौते के तहत एक रणनीतिक और सैन्य प्रणाली कायम करेंगे। तीनों मुल्कों ने पिछले 7 अगस्त को मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। उधर जिम्बाब्वे में करीबा झील में पेश आई घटना के चलते बचाव कार्रवाई अभी तक जारी है। मरने वालों की संख्या 44 तक पहुंची है। उधर जाम्बिया में राष्ट्रपति चुनाव किए जा रहे हैं। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्नों की खुशी में भारत में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। रास्तों पर, दुकानों में, शहरों में, गांवों, नगरों में तिरंगे के रंग छलक रहे हैं और देशभक्ति की भावना उभर रही है। आस्था गोविंदमन।
1: हाथों में तिरंगा, सड़कों पर उत्साह और आजादी के रंग में रंगे लोग, भारत में स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान ने जोर पकड़ लिया है। अलग अलग राज्यों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों और ऐतिहासिक स्थलों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान के जरिए लोगों को राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ने और स्वतंत्रता के महत्व को याद करने का संदेश दिया जा रहा है। लेकिन तिरंगे के इस अभियान की एक अलग और दिलचस्प तस्वीर जम्मू कश्मीर के भदरवा से आई है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट जेल की चार दीवारी के भीतर कैदी अपने हाथों से तिरंगा तैयार कर रहे हैं।
2: जेल के अंदर इनमेट्स ने हुबन वतनी का एक बहुत ही अच्छा मुजाहरा किया, अपने हाथों से फ्लैग बनाए।
1: पुरुष और महिला कैदी इस काम में शामिल हैं। कोई कपड़े की कटाई कर रहा है, कोई सिलाई, तो कोई तिरंगे को अंतिम रूप देने में जुटा है। केसरिया, सफेद और हरे रंग को जोड़ते इन हाथों के लिए ये केवल एक काम नहीं बल्कि देश के स्वतंत्रता दिवस से जुड़ने का एक अवसर भी है। इस पहल का उद्देश्य कैदियों को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना और उनमें हुनर विकसित करना है। जिन दीवारों के भीतर आम जिंदगी सीमित है, वहीं तैयार हो रहा है तिरंगा अब आजादी के मायने को एक अलग संदर्भ देता है। जेल की चार दीवारी के भीतर तैयार ये राष्ट्रीय ध्वज बाहर स्वतंत्रता दिवस के उत्सव का हिस्सा बनेंगी।
0: और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत, हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात रह रह कर बारिश होगी। आज रात और कल सुबह मौसम में सुधार आएगा और कल दिन के दौरान मौसम अच्छा रहेगा। दोपहर बाद पश्चिम और सेंट्रल प्लाटो में रह रह कर बादल घिराएंगे और बारिश होगी और दूसरे इलाकों में घने बादल होंगे। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र चंचल रहेगा। 2 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी। दक्षिण और पश्चिम में कल दोपहर बाद ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान, सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 15 से 18, अधिकतम 22 से 25। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:32 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:56 पर सूरज ढल जाएगा।

तो ये थी अब तक की खबरें आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी लुडोविक जोहांगिया की मदद मिली है आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया नमस्कार आदाब शोक समाचार सुनिए

नंबर 16 वाल्मीकि रोड वाली दी प्रथम में 90 साल के 90 years old श्री रघुबर गीना जो राजा मोतों के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे इनके बेटे देवानंद गीना के घर नंबर 16 नंबर 16 वाल्मीकि रोड वालिद प्रत्र से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही बोले वालिद प्रत्र की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM आली जाक लिस्कालिये में 84 साल की 84 years old श्रीमती कोसिला दुली पैदाशी नामानंदी

जो लीलो के नाम से ज्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके बेटे दयानंद डूली के घर आलिजा क्लिस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बासेकाहोंग लिस्कालिये की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM रॉयल रोड लिस्या सेबास्टोपोल में 79 साल की 79 years old श्रीमती भुवनेश्वरी नीदू पैदायशी नाम झरिया जो तिंता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल दोपहर बाद एक बजे इनके घर रॉयल रोड लिस्या सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिस्या सेबास्टोपोल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM फ्लोरिडा लेन बॉशेरी में 63 साल के 63 years old श्री धनराज महादू जो गैब्रियल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल सुबह दस बजे इनकी पत्नी नालिनी महादू के घर फ्लोरिडा लेन बॉशेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घों बुआ की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM इंग्लैंड में 59 साल की 59 years old श्रीमती अमृता सिगुलाम पैदायशी नाम लक्ष्मण जो संगीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी शनिवार को उठाई जाएगी शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है

सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। शुक्रवार 14 अगस्त को सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक कोस्टल रोड और पॉइंटो कानूनी में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: सेंट्रल वाटर अथॉरिटी की ओर से विज्ञप्ति। आम जनता को सूचित किया जाता है कि हमारे जलाशयों में पानी का स्तर कम होता जा रहा है। इसके चलते सोमवार 10 अगस्त से खेतों में सब्जियों की सिंचाई, कार वॉश द्वारा पानी का प्रयोग, वाटर प्रेशर से घर, आंगन, गाड़ी की सफाई के लिए पानी का प्रयोग, पूल को नल के पानी से भरना वर्जित है। पुलिस इन सभी नियमों के पालन के लिए नजदीकी से नजर रख रहे हैं। CWA सभी से सहयोग की मांग कर रहे हैं और आपके समझ के लिए धन्यवाद देता है। श्रावण मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में गोष्ठीय रविवेद प्रचारिणी सभा शाखा नंबर 5 शुक्रवार 14 अगस्त को शाम 3 बजे गांधी भवन गोष्ठीय में एक यज्ञ का आयोजन कर रहा है। नाडेस रोड हाइलैंड्स के बाल शिक्षा मंदिर द्वारा श्रावण मास के संदर्भ में 3 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया है। शुक्रवार 14 से रविवार 16 अगस्त तक। समय है शुक्रवार 14 अगस्त को शाम के 4:30 बजे, शनिवार 15 अगस्त को शाम के 4:30 बजे और रविवार 16 अगस्त को रात के 8:30 बजे।
2: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं।

गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार और आदाब, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कैसे हैं जी, सब ठीक है? मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ। बस आप लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच। हम यहाँ पर आपका साथ देंगे रात की 9 बजे तक। इसका मतलब ये है कि हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर, हम लोगों ने एक्चुअली शुरू कर लिया है नई सोच कार्यक्रम रात की 7 बजे तक। फिर उसके बाद 7 से लेकर के 9 बजे तक हम दिलों की आवाज़ लेकर कार्यक्रम लेकर के आएंगे। आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, बस प्यार होना ज़रूरी है। आज की इस नई सोच में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग

रात बाकी है और बात भी बाकी है। नई सोच कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रही हैं अभी के साथ रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। इस वक्त शाम के 6:47 हो गए हैं और आज एक नई सोच, एक नया विचार जो मुझे लगता है आप लोगों की जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या अपने लिए आप समय निकालते हैं? समय निकालना बहुत ज़रूरी है, चाहे आधा घंटा क्यों ना हो, एक घंटा, दो घंटे या फिर पूरा एक दिन आप अपने लिए निकालिए। खुद के लिए जब आप समय निकालेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कि मुझ में भी वो ताकत है, मैं कुछ कर सकता हूँ या फिर मैं कुछ कर सकती हूँ। आप अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, इन सब के साथ एक ब्रेक ले करके अपने लिए आप थोड़ा सा वक्त निकालिए। वक्त निकालने के लिए आप बहाना ढूंढिए। आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं, आप शाम को भी वॉक के लिए जा सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जुम्बा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। ऐसी जो लिस्ट है बहुत ही लंबी है, लेकिन मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूंगा कि खुद के लिए समय निकालिए। आजकल हम लोग इतने माथापच्ची करते हैं कि टिफिन बनानी है, टाइम टेबल करना है, ये करना है, सुबह जल्दी उठना है, जल्दी सो जाना है ताकि सुबह उठने के बाद मुझे ये करना है, वो करना है। हम सब लोग कर रही हैं, हम एक भागम भाग की जिंदगी जी रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों के लिए ही जिए, अपने लिए भी समय निकाल करके कुछ करें, तब लगेगा कि अंदर में एक सुकून मिल रहा है।

जी हाँ दोस्तों, इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे दिलों की आवाज़ कार्यक्रम स्विस से कनेक्टेड वेव अभी, और हम आपको कहना चाहेंगे 5250 6200 पर आप मैसेजेस भेजना शुरू कीजिए।

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त रात के ठीक 7 बजे हैं।

मुझे बताएं कि मूड रोमांटिकली सेट हो गया है। इस वक्त रात के 7:07 हो गए हैं। नमस्कार और आदाब, वंस अगेन वेलकम बैक। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं दिलों की आवाज़ कार्यक्रम अभी के साथ रात के 9 तक। आप जहां पर भी हो, जैसा भर भी हो, बस प्यार होना बहुत ज़रूरी है। यस दोस्तों, अभी के लिए एक गाना हम आपके नाम चलाने वाले हैं जो हीरो मूवी से आए हैं और इस गाने की फरमाइश रेशमा ने की है उनके लवली पति ऋषि कपूर के नाम। मैंने कहा आप जोकिंग तो नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट क्रैकिंग जोक, आपका आपके पति का नाम ही है ऋषि कपूर। उन्होंने कहा हाँ, उनका नाम है ऋषि कपूर। मैंने कहा क्या बात है। सो जितने सारे गावना फैमिली हैं उनके लिए और रेशमा के 3 बच्चों के नाम भी, साथ ही साथ उनकी जिगरी दोस्त जिनका नाम है अर्चना, ये गाना खासकर आप लोगों के नाम।

और इस वक्त हमारे साथ अजय लोखन हैं, आपने इस गाने की फरमाइश की है अपनी पत्नी नीता लोखन के नाम, साथ ही साथ वी डू हैव आयुष और आहान।

जी हाँ बिल्कुल, ऐसे गीत सुनने के बाद डांस करने का भी मूड आ जाता है। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। रात के 7:32 हो गई है। अगर आप घर की ओर जा रही हैं, ड्राइव कर रही हैं, सो ड्राइव सेफली। थके हुए हैं मुझे पता है, चेहरे इतने मायूस क्यों है? इट्स ओके, जो कुछ हो गया है सो हो गया है ना। बस अपने फैमिली मेंबर से मिलने के लिए अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लेकर के आइए, एक नई सी ताजगी लेकर के आइए। मुझे पता है डिफ़िकल्ट है, और कह रहे यारे अभी तू कह रहा है रेडियो पर, तो मैं पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ। मुझे पता नहीं, और पता होने के बाद भी मैं यही कहूँगा इट्स ओके यार, दैट्स लाइफ। जी बिल्कुल, चलिए ये जो गाना अभी अभी हमने चलाया था ना, ये दैट वॉज मिस्टर विकी लखन के नाम, जिनका बर्थडे था कल। और बहुत बहुत सारे बेस्ट विशेज उनकी लवली वाइफ प्रीति दे रही है, साथ ही साथ उनके दो बच्चों के नाम, उनकी लवली सिस्टर हैं जिनका नाम है प्रिया, और साथ ही साथ हैं विदुला, और उनके जो जीजाजी हैं जिनका नाम है किशन गणेश, और जितने सारे लखन फैमिली है उनको बहुत सारा प्यार आशीर्वाद और बेस्ट विशेज दे रही है। तो चलिए अगला गीत स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे, जो मैसेजेस हमको मिल रही हैं ऑन 5250620। वी डू हैव आशा जानू फ्रॉम कोटेज, उन्होंने कहा उनके दोस्त धीरज बिहारी का जन्मदिन है, सो बहुत बहुत सारे बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम मामा और भाई दीपक हैं। साथ ही साथ वी डू हैव भाभी दीप्ति, सृष्टि और सभी बिहारी फैमिली, मामा कुमारी आशा की ओर से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। ओके, आपने एक बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश की है, ये गाना खासकर हम आपके नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। आप हमें फोन कर सकते हैं 4 0 2 8 0 7 0 पर।

चलिए इस गाने की फरमाइश की है उमा जो फोजिसा के रहने वाली हैं। उन्होंने कहा उनकी दो दीदियां हैं, दीदी मुनी और दीदी देवी के नाम। ये गाना आप लोगों के नाम। अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो हम यहाँ पर जिंदा हैं।

यस दोस्तों, अगर आप लोग साथ हैं तो हम हैं यहाँ पर, अगर आप हैं तो हमारी आवाज आप तक पहुंचेगी डेफिनेटली। दिल के तार को छोड़ने को छेड़ने के लिए हम भी यहाँ पर आ गए हैं। रात के 9 बजे तक हम आपका साथ देंगे। इस वक्त रात के 7:45 बजे हो गए हैं। थैंक यू सो मच टू बी आवर हम सफर, टू बी आवर हम कदम। इस वक्त हमारे साथ बाबू अनातवा हैं, जो कैथ्रोबोन के रहने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद उनसे बात हुई, दिल बल्ले बल्ले हो गया है जी। थैंक यू सो मच भाई बाबू अनातवा। आप कैथ्रोबोन के रहने वाले हैं, आपने एक बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश की है, टेकन आउट फ्रॉम द मूवी जॉनी मेरा नाम। सो विदेश आपका बेटा है, बहू है पूजा, उषा आपकी पत्नी, बेटी है भावना, दामाद है जेसन, और जितने सारे अनातवा फैमिली हैं उनके लिए हम डेफिनेटली ये गाना चलाएंगे। सो गाइस, 402-80-70 पर 402-80-70 पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे उसको हम यहाँ पर चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड यू मे ऑल्सो सेंड अस योर मैसेजेस हैपनिंग ऑन 5250-6200।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर ही मिला लीजिए, इस वक्त रात के ठीक 8 बजे हैं।

जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे नाम यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग उतावले हैं। तो चलिए, ललिता कुशल जो एग्जैक्टली त्रियोले के रहने वाले हैं, उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है जो अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है। वी ऑल्सो हैव दी दादी प्रभावती, भाई है आत्माराम और छोटी जो पॉलोजे के हैं। जो आने वाले गीत हैं हम स्पेशली डेडिकेट करना चाहेंगे विनय गोबिंद के नाम, जो इस वक्त हमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम कैनेडा बाय लॉगिंग ऑन freew.mbcradio.tv। उनके लवली वाइफ हैं गौरी, साथ ही साथ दो बच्चों के नाम यतीश और सानवी, और जितने सारे गोबिंद फैमिली हैं उन लोगों के नाम। हियर वी गो।

और आप लोग मिल गए, ऐसा लग रहा है जिंदगी मिल गई। थैंक यू सो मच ऐसे गीत की फरमाइश करने के लिए, और यहाँ पर दिल एकदम खुश हो गया है, और इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं।

ऐसा लग रहा है वी शॉल ब्रिंग यू डाउन द मेमोरी लेन ऑफ द गोल्डन ईरा ऑफ 90s. क्या बात है, आप लोगों के जो सॉन्ग सिलेक्शन है इज जस्ट सुपर्ब. नाइस सॉन्ग सिलेक्शन अभी, थैंक यू सो मच. प्लीज ये गाना मेरे लिए हो जाए. टेकन ऑफ फ्रॉम द मूवी बेकाबू. इस वक्त रात की 8:27 हो गई है. यारियां जब ही छोड़ के चले जाते हैं, हाय हाय उसे नींद कैसे आती होगी क्या पता. चाहिए ये गाना खासकर हम दागन, श्वेता, रवीश, परीशा, लवीशा सभी आपादू फैमिली के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे जो खुशनुआ के रहने वाले हैं. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं, किचन में हैं, बाथरूम में हैं, या फिर किसी एक जगह पर कुछ काम कर रही हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक में चल रही हैं हमारे गाने. सो डेफिनेटली ये गाना खासकर आप लोगों के नाम. अगर आप लोगों को 90s पसंद है सो डेफिनेटली आप लोगों को ये गाना पता चलेगा. यार यार.

जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ संजीव हैं जो यूएस से हमें याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो काम कर रहे हैं और माशुक का ये जो गाना है उसको बहुत बहुत पसंद आ रहे हैं। सो दिस इज फॉर यू संजीव, स्पेशली फॉर यू।

और इस वक्त हमारे साथ मोहतरमा हैं रेहाना, आपने इस गाने की फरमाइश की है और आपने कहा कि जलीला और जियाद के लिए ये गाना हो जाए जो उनको बहुत बहुत मिस कर रही हैं। दिस इज़ फ्रॉम रेहाना।

अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है, बी केयरफुल ऑन रोड, खासकर जो लोग इस वक्त ड्राइव कर रही हैं। इस गाने की फरमाइश की है पूजा, जो इस वक्त हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है फ्रॉम मोडुस खालिया, साथ ही साथ उनके सभी दोस्तों के नाम जिनकी छुट्टी समाप्त होने वाली है। बुक आज तो यू ऑल

So guys, it's time for me to sign off now. समय आ गया है जाने के लिए. थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया. टिल देन अभी की ओर से नमस्कार.

0: लोगों की हालत है, मैं ही तुम लोगों को वापस घर ले जाऊंगा।
1: कोई वापस नहीं आ रहा है, वो मर गया है, मर गया है वो।
2: 17 बार तुमने भागने की कोशिश की है और 17 बार हमने तुम्हारी खाल उधेड़ी है।
0: तो मेरा जिस्म तोड़ सकते हो एजाज, मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकते।
3: तुझे दिल में अपने आधार लूं।
4: शनिवार 15 अगस्त को MBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म दीवार 2004 की मूवी दीवार अमिताभ बच्चन और अक्षय खन्ना पर फिल्म आई गई।
3: दीवानी
5: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
6: रेडियो मॉरिशस
7: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
6: रेडियो मॉरिशस,
7: रेडियो मॉरिशस।
4: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।

आज 13 अगस्त 2026 के बिफे के रात था, रात के 9:05 होलबा और आप रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़ल हवा। हम किरण आप सबके के ई प्रोग्राम में स्वागत करत है, हमार सब प्रेम नमस्ते स्वीकार करा। आज के दिन आप सब कोई के अच्छा से बीतल और ई जोन सांझ के वेला बा उ भी अच्छा से शुरू होल बा, यही उम्मीद के साथ ई रात्रि वेला के ओर बढ़ब जा। आप सब कोई के नाम ई कार्यक्रम आपके मनपसंद प्रोग्राम और आपके फरमाइश पर चले होला प्रोग्राम। पहला गीत आप सब कोई के नाम एगो घर कुणाल हिरीलाल के आवाज़ में।

रात के 9:10 होलबा और आप सब कोई के भोजपुरी तर का प्रोग्राम में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत बा। आज ई सप्ताह के समाप्त होवे के एक दिन पहले जोन दिन है बीफे के दिन है सुख के दिन तो सप्ताह के आखिरी दिन है फिर सप्ताहांत चलावेला और ई जोन सप्ताह बा बहुत ही खास बा कहे कि लड़का लोग के छुट्टी के ई आखिरी सप्ताह है। लड़का लोग के साथ साथ जितना भी अध्यापक हवा जा आप सब कोई के भी आराम के और राहत के सांस लेवे के ई आखिरी सप्ताह है आखिरी बीफे है। काल सुख हो जाए सुख के दिन बहुत जल्दी बीत जाला। अब ओकर बाद ई जोन सप्ताहांत बा शुरू हुआ था एगो आम छुट्टी के दिन से और जोन सामदी के दिन रही खास दिन रही 15 अगस्त। 15 अगस्त हमेशा हमने खातिर बहुत खास है। पहला तो हमने के पूर्वज लोग हमने के जड़ी जहाँ से निकल के आ रहा भारत देश के स्वतंत्रता दिवस मनावल जाला और साथ ही साथ खास ई भी कारण से है कि ई बरिस ई छुट्टी की आम छुट्टी के दिन गिरा था लासोमशो के दिन है और देश भर में चहल पहल शुरू हो गल बा। हर तरफ दिखत हवा कि खरीदारी हुआ था और जोन एगो रस्म है वो दिन एगो नीला केक काटे के वो केक के भी बिक्री हुआ था। तो यही है हमने के देश के खूबसूरती जहाँ एक तरफ लासोमशो हुआ था भारत की स्वतंत्रता चला था उधर हर एगो कौम के जो तीरथ शुरू हो के बा चाहे गणेश चतुर्थी रही चाहे वो तेलुगु समुदाय के परब रही चाहे वो यमुना नबी की तैयारी रही ये सब तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चला था। और इधर श्रावण मास तक चलते ही बा रक्षाबंधन भी दूर नहीं बा हमनी से 28 के मनाओ जा रक्षाबंधन। तो बहुत ही सुंदर माहौल बा भले ही छुट्टी समाप्त हुई होला बा लेकिन हमनी के देश में परब मनावे के कोनो मौका कमती नहीं रहेला कबू नहीं रहेला। तो अगला गीत आप सब कोई के नाम खास तौर पर घों गोप के हमनी के सुनीता जी के फरमाइश पर उनकर बहिन विमाला के नाम जे कोंगुमा से हमनी के सुनत हवन और गीत रही अयोध्या के राज सिया मांगे अयोध्या के राज। सिया कहाँ कुछ मंगले रलन लेकिन आज के युग में जब कोनो छोकरी के इच्छा देखे चाहबा तो वो छोकरी के उपमा देवल जला सीता के और जोन बेहतरीन से बेहतरीन घर बा संबंध बा उके अयोध्या के उपमा देवल जला। तो चला देखे अयोध्या में कौन ऐसा बात बा कि सीता अयोध्या के राज मांगता खास तौर पर घोंगोप के सुनीता जी के नाम। अरे बा

0: भोजपुरी तड़का किरण संगे एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: वो लोगों ने आपको काम से निकाल दिया क्या?
2: ये पूछने के लिए इतनी दूर से आए हो?
1: नहीं, मैं आपसे एक काम की बात करने के लिए आया हूँ।
2: क्या काम की बातें?
1: यहीं खड़े खड़े कर लेंगे।
3: क्यों आजकल अक्सर कहीं उड़ जाता है।
0: रविवार 16

अगस्त को MBC 3 पर दिन के 12 बजे 7:30 फेरे मोर देन अ वेडिंग, दिन के 12 बजे 2007 की ये मूवी अभय देओल और गुलफनाक पर फिल्माई गई 7:30 फेरे मोर देन अ वेडिंग।

रात के 9:19 होल बा और अभी थोड़ा आगे बोलत रही कि इस सप्ताहांत के एगो खास दिन बा, एगो अंतर्राष्ट्रीय दिन बा जोन मॉरिशस से बहुत गहरा संबंध रखेला और वह भारत के स्वतंत्रता दिवस। तो जितना कोई भी भारत के इस स्वतंत्रता दिवस के खुशियाली मनाए चाहत हो जा, आप सब कोई के नाम ये अगला गीत दादा दादी के कहानी जो उनकी भारत से निकल के मॉरिशस आल, बिहार से निकल के मॉरिशस आल, कलकत्ता से होके मॉरिशस आल। और ये गीत के खास फरमाइश कर ले हवन शीला जी अपन पति के साथ सुरेन और दुना जना अभी सुनत हवा जा। ये गीत आप अपन सब लड़का लोग के नाम करत हवा, अपन नाती पोता के नाम करत हवा और आंसले के नाम करत हवा और जितना कोई भी अभी प्रोग्राम सुनत हुआ जा, आप सब कोई के ये खास दिन के बहुत बहुत शुभकामना जब भारत अपन स्वतंत्रता दिवस मनाए आवत सामने।

बसंत सुपुर के आवास में हैप्पी बर्थडे आप सब कोई के नाम जिकर घर में जन्मदिन के पार्टी चलता जन्मदिन मनावल जाता और बहुत खुशी बहुत चहल पहल छैले बा आप सब कोई के भोजपुरी तर का प्रोग्राम के ओर से जन्मदिन के ढेरों शुभकामना बहुत बहुत बधाई

10 बजे में अभी लगभग 40 लगभग 20 मिनट कमती बा और अभी से और 11 बजे तक हमने के साथ रहे हो लबा लगभग 1 घंटा और 20 मिनट और आपके साथ ऐसने रही तो प्रोग्राम भी और खूबसूरत बन ले जाए आपके फरमाइश से ये प्रोग्राम सजेला। अगला गीत लीलो सरिया ये गीत सुने चाहत हवन बिस्वानी दीपा के आवाज़ में ललिता जी और ललिता जी ये गीत मांगत हवन अपन बहन सुदेवी अपन बहन प्रभावती छोटी दादी ज्ञानी अपन सुखलाल मौसी मालाराम जावन और आत्माराम और हरीश भाई के नाम लीलो सरिया जेके भी ये गीत पसंद है। दो तीन दिन आगे ये गीत के फरमाइश काफ़ी आ रहा तो आप सब कोई के नाम जे हमने के सुनत हवा फ़ोन नहीं करत हवा लेकिन चाहत हवा कि ऐसा ऐसा गीत बजी तो चला ये गीत सुनी जा। सरिया के मौसम बा अभी श्रावण तक चलते बा लेकिन राखी में भी दिखत है जा कि ढेर तोहफा मिले होला बा और ढेर बहन लोग के भाई के ओर से साड़ी मिले होला बा।

0: मिला किरण संगे। एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: तुम हमेशा ऐसे ही बकवास करती हो या आज कोई स्पेशल ओकेजन?
2: तुम्हें उठाकर म्यूजियम में रखना चाहिए।
1: तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया?
3: जब कोई प्यार में होता है तो कोई सही गलत नहीं होता।
1: क्यों खेल रही हो अपनी जिंदगी के साथ?
3: क्योंकि मेरा फेवरेट गेम है।
0: रविवार 16 अगस्त को MBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म जब वी मेट, 2007 की मूवी, रोमांस से भरपूर मूवी, शाहिद कपूर और करीना कपूर पर फिल्म आई गई जब वी मेट। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

अगला जन गीत चली ई गीत के फरमाइश आलबा बुआशरी से कल्याणी जी आप ई गीत सुने चाहत हवा उही पंत घटिया पर लुगा धोवे जाइला संभावती दोमन के आवाज में और ई गीत कल्याणी जी करत हवन नाम सत्यानंद सालिक के।

चंद्रदेव जीबोधन के आवाज में बहना तू जाग हो भैया तू जाग हो ई गीत के फरमाइश कर ले हवन शांति जी त्यागूज से। और शांति जी ई गीत खास तौर पर आप बोला था कि हमार नाम कर रहा था, बहुत बहुत धन्यवाद शांति जी। साथ में आपके भगीना ओम जे अप दागुचिया से हवन और दागुचिया के आपके मराठी परिवार के नाम और जितना कोई भी अभी प्रोग्राम सुना था वजह आप सब कोई के नाम जब भाई बहन के नाम सुना ला तो ख्याल आवेला रक्षाबंधन के जो उनकी और एक सप्ताह में 28 अगस्त के वैश्विक उत के हमने मनावब जा आवत सुख के आप सब कोई के ये रक्षाबंधन के सब जितना भाई बहन हवा जा सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना।

0: जीवन संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music all day, all night.
4: NBC TV programs ki jhalkiyan.
5: मैं तुम सब लोगों की हालत है, मैं ही तुम लोगों को वापस घर ले जाऊंगा।
6: कोई वापस नहीं आ रहा है, वो मर गए। वो
7: 17 बार तुमने भागने की कोशिश की है और 17 बार हमने तुम्हारी खाल उधेड़ी है।
5: तो मेरा जिस्म तोड़ सकते हो एजाज, मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकते।
8: तुझे दिल में अपने आधार लूं।
0: शनिवार 15 अगस्त को NBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म दीवार 2004 की मूवी दीवार अमिताभ बच्चन और अक्षय खन्ना पर फिल्माई गई।

0: संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम 3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: योर काइंड ऑफ म्यूजिक ऑल डे ऑल नाइट राइट हियर।

0: सी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: वो लोगों ने आपको काम से निकाल दिया क्या?
2: ये पूछने के लिए इतनी दूर से आए हो?
1: नहीं, मैं आपसे एक काम की बात करने के लिए आया हूँ।
2: क्या काम की बात है?
1: यहीं खड़े खड़े कर लेंगे।
3: क्यों आजकल अक्सर कहीं उड़ जाता है।
0: रविवार 16 अगस्त को MBC 3 पर दिन के 12 बजे 7:30 फेरे मोर देन अ वेडिंग, दिन के 12 बजे 2007 की ये मूवी अभय देओल और गुलफनाग पर फिल्माई गई 7:30 फेरे मोर देन अ वेडिंग।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। भोजपुरी तड़का किरण संगे।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music all day.

0: एबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: तुम हमेशा ऐसे ही बकवास करती हो या आज कोई स्पेशल ओकेजन?
2: तुम्हें उठाकर म्यूजियम में रखना चाहिए।
3: तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया?
4: जब कोई प्यार में होता है तो कोई सही गलत नहीं होता।
2: क्यों खेल रही हो अपनी जिंदगी के साथ?
4: क्योंकि मेरा फेवरेट गेम है।
0: रविवार 16 अगस्त को NBC4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म जब वी मेट, 2007 की मूवी रोमांस से भरपूर मूवी शाहिद कपूर और करीना कपूर पर फिल्माई गई जब वी मेट। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
5: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
6: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
7: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sangi.

रात के 10:25 हो गल बा और लगभग आधा घंटा तक हमने के साथ रहे होला बा। अगला जनगीत चली गीत भोजपुरी भाषा पर सुने चाहता वन मेबर्ग से सुनीता जी। सुनीता जी ये गीत अपन पूरा परिवार के नाम करा था वन। जितना कोई ये बखत सुना था वजह ये प्रोग्राम के आप सब कोई के नाम करा था वन और ख़ास तौर पर आप अपन भगिनी गायत्री के नाम और बेटा अजय के नाम ये गीत करा था वा। तो चला भोजपुरी भाषा पर ये सुंदर गीत और ये गीत ख़ास तौर पर अनिता जी के नाम जे फ्लिकॉन फ्लक्स से मैसेज भेजे था वन और सब रेडियो मनोरंजन टीम खातिर आप ये गीत नाम करा था वा। और साथ में आप एक धार्मिक गीत सुनने चाहता वा। एकर बाद आपके जो पसंद के गीत बा वो ज़रूर चली अनिता जी।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your 109 station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

0: सी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: तुम हमेशा ऐसे ही बकवास करते हो या आज कोई स्पेशल ओकेजन?
2: तुम्हें उठाकर म्यूजियम में रखना चाहिए। किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया?
3: जब कोई प्यार में होता है तो कोई सही गलत नहीं होता।
2: क्यों खेल रही हो अपनी जिंदगी के साथ?
3: क्योंकि मेरा फेवरेट गेम है।
0: रविवार 16 अगस्त को MBC4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म जब वी मेट, 2007 की मूवी, रोमांस से भरपूर मूवी, शाहिद कपूर और करीना कपूर पर फिल्माई गई जब वी मेट। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
4: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
5: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
6: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। जी नमस्कार और गिनीशा का प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी दिल बस इतना चाहता है कि वक्त थोड़ा सा रुक जाए और हम लौट चले उन हसीन लम्हों में जहाँ हर गीत एक एहसास था, हर सुर एक याद था। और आज के इस खूबसूरत सफर में हम लेकर आए हैं वही अमर बॉलीवुड के नगमे जो सिर्फ सुनाई नहीं देते हैं, दिल के किसी कोने में महसूस भी होते हैं। तो बस आप तैयार हो जाइए गिनीशा का साथ देने के लिए इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।

दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते हैं? शायद इसलिए क्योंकि उनमें हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे बस जाते हैं। पहला प्यार, पहली मुलाकात, माँ की मुस्कान, दोस्तों की मस्ती, सब कुछ इन गीतों के साथ जुड़ा होता है। तो आज अपने दिल को बस ज़रा थाम लीजिए और दिल का दरवाज़ा खोल दीजिए और इन यादों को फिर से जी लीजिए हमारे साथ। मैं हूँ निशा जो आपका साथ दे रहे हैं और ये पुराने बॉलीवुड संगीत का एक और हसीन सफ़र लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के नाम।

मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, वैसे देखा जाए तो कुछ आवाजें ऐसे होती है ना जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत लगने लगती हैं। वो गीत जो हमारे माँ बाप ने गुनगुनाए होंगे किसी जमाने में, जो हमने बचपन में रेडियो पर सुने और जो आज भी दिल को उतने ही सुकून देते हैं। आज की ही रात उन्हीं अनमोल नगमों के नाम है। अगर आप कहीं सफर में हैं, घर पर हैं या काम पर हो, बस वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और दिल को इन सुरों के हवाले कर लीजिए।

हर गाना अपनी एक कहानी लेकर आता है और हर कहानी किसी ना किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। शायद आज जो गीत हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उससे जुड़ी कोई याद आपके दिल में है, बिल्कुल बसी हुई है आपके दिल में। हो सकता है वो किसी अपने की याद हो, किसी अधूरी मोहब्बत की या किसी खूबसूरत बचपन की। तो चलिए आज सिर्फ गाने नहीं सुनते हैं, अपनी यादों को फिर से जी लेते हैं इस खूबसूरत से शो में। ये है आपका सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।

रेडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है दोस्तों, एक गीत बजता है और हजारों दिल एक साथ मुस्कुराने लग जाते हैं। आज हम लेकर आए हैं वो गीत जिन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड को अमर बनाया बल्कि हम सभी के जिंदगी को भी सुरों से भर दिया है। तो जहाँ भी हैं बस कुछ देर के लिए दुनिया की टेंशन को साइड में रखें और इन हसीन नगमों के साथ अपने दिल को सुकून दीजिए।

चलिए जी, फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। इतने खूबसूरत खूबसूरत नगमे हमने आप लोगों को सुनाया है। अभी के लिए इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुड बाय टू यू। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे एक और सुनहरे पल के इस खूबसूरत सफर में ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: एमबीसी रेडियो वजह मुस्कुराने की।
1: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी,
2: तो क्या कहा आपने?
1: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू, सुबह सवेरे काम पे जाऊं आई लव यू।